आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: भक्ति गीत के बाद स्वागत पर रउआ सबके प्रोग्राम आपन दी आपन देखभाल में। दोस्त लोग, रउआ तो पता ही बा कि ई कार्यक्रम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले दीपाली की ओर से नमस्कार, सुप्रभात। ई हा रेडियो रिमझिम 90.4। अब चली कई जाओ आगाज आज के आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम के। दोस्त लोग, हम अपना कार्यक्रम के शुरुआत में बताएं सेहत खातिर आसान घरेलू नुस्खा। कमजोरी होके पे जौन लोग दुबलापन के शिकार होके, उ लोग के भोजन के साथ 2 या 3 चम्मच शहद खाए के चाहिए। और ये रात के सूते समय ठंडा फीका दूध में शहद घोल के पिए के चाहिए। थकावट होके पे 1 ग्लास ठंडा पानी में 1 से 2 चम्मच शहद घोल के पिए से शरीर में चुस्ती फुर्ती आवेला। अपच होके पे पालक के सब्जी खाई व टमाटर के रस पी। पैर के तलवा में जलन होके पर बड़ा बड़ा लौकी के टुकड़ा काट के उई पर घीसी। कब्ज ना हो एक खातिर दोनों समय खाना खाए के बाद थोड़ा सा गुड़ खा ली। बवासीर में नींबू काट के ओई पर खाई वाला कत्था लेप के रात के छत पर रख दी। आ सुबह सुबह एके चूसी, ऐसे बवासीर में लाभ हुई। खूनी बवासीर में अमरूद काट के नौसादर के लेप करी और रात भर खुला स्थान पर रखी। आ सुबह सुबह खा ली। खूनी बवासीर में ऐसे बहुत लाभ हुई। गुलाब जल में आधा नींबू निचोड़ ली। आए के सुबह शाम कुल्ला करे पर मुंह के बदबू दूर होके मसूड़ा व दांत मजबूत हुई। भोजन के साथ 2 केला प्रतिदिन सेवन करे से भूख में वृद्धि होला। आंवला भून के खाए से खांसी में फौरन राहत मिलेला। एक चम्मच शुद्ध घी में हींग मिला के पिए से पेट दर्द में राहत मिलेला। टमाटर के पीस के चेहरा पर एकर लेप लगावे से त्वचा के कांति और ये चमक दुगुना बढ़ जाला। मुहासा चेहरा के झाई और दाग धब्बा दूर करे में मदद मिलेगा। पसीना अधिक आवत होके तब पानी में फिटकरी डाल के स्नान करी। उबलत पानी में नींबू निचोड़ के पानी पिए से ज्वर के तापमान गिर जाला। सोते से पहले सरसों के तेल नाभि पर लगावे से होठ ना फाटेला। पचास ग्राम छाछ में 10 ग्राम गुड़ डाल के सिर धोए से अथवा नींबू के रस लगा के सिर धोए से रूसी दूर होल। श्रोतागण चली आप जानल जाओ सेहत के साथ ही गेहूं के अंकुरित दाना के घरेलू नुस्खा। अंकुरित अनाज सेहत खातिर काफी फायदेमंद होला। गेहूं के आटे से बनल रोटी तो सबसे सहज और पौष्टिक खाद्य है। अंकुरित गेहूं भी रउआ ढेर सारा विटामिन और पौष्टिक तत्व दे सकेला। गुड़ से भरपूर होके के साथ ही ई रउआ वजन में भी आसानी से समा सकेला। अंकुरित गेहूं शरीर खातिर शक्तिवर्धक टॉनिक के तरह ही है। अंकुर उगल होकल गेहूं में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होला। शरीर के उर्वरक क्षमता बढ़ावे खातिर विटामिन ई एगो आवश्यक पोषक तत्व है। यह ना इस तरह के गेहूं के सेवन से त्वचा और बाल भी चमकदार बनल रहेला। किडनी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के मजबूत और नया रक्त कोशिका के निर्माण में भी इसे मदद मिलेला। गेहूं में मौजूद तत्व शरीर से अतिरिक्त वसा के भी शोषण कर लेला। इतना ही ना अंकुरित गेहूं खाए से शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेला। इस शरीर में बने वाला विषैला तत्व के भी निष्प्रभावी कर रक्त के शुद्ध करेला। दाना के चबा के खाए से शरीर की कोशिका शुद्ध होला और इसे नया कोशिका के निर्माण में भी मदद मिलेगा। अंकुरित गेहूं में उपस्थित फाइबर के कारण एके नियमित सेवन से पाचन क्रिया भी सुचारू रहेला। अतः जे लोग के पाचन संबंध समस्या हो उ लोग खातिर भी अंकुरित गेहूं के सेवन फायदेमंद है। तो चलिए अब हम बता दें कि गेहूं के अंकुरित रुआ कैसे करें। गेहूं अंकुरित करे खातिर अच्छा गुणवत्ता के गेहूं ली आ गेहूं के साफ करके 6 से 12 घंटा खातिर पानी में भिंगा दी। गेहूं के दिन में 3 बार पानी से धोई। अब गेहूं के कपड़ा में बांध के रख दी। अंकुरित होके पर मनचाहा तरीका से एकर प्रयोग करी। बच्चा खातिर भी रउआ ऐसे पराठा सॉफ्ट पूरी सैंडविच जैसन चीज बना सकत नहीं।

0: खाए के चाहिए। दोनों समय के भोजन के बीच 7 घंटा के अंतर होके के चाहिए। खाना के साथ थोड़ा पानी पिए के चाहिए, ज्यादा ना। खाना खाए के बाद कुल्ला जरूर करी। खाना खाए के बाद 500 कदम चले के चाहिए। रात के खाना 6 से 9 बजे के बीच खाए के चाहिए। रात के 10 बजे के बाद कुछ ना खाएं। रात के सोते के पहले दूध जरूर पिए के चाहिए। खाना खाए के बाद बायां करवट आराम करे के चाहिए। रात की खाना सूते से 2 घंटा पहले खाए के चाहिए। रात के ब्रश करके सूते के चाहिए। खाना के समापन मिठास के साथ करे के चाहिए, यानी खाना के बाद अंत में एगो मीठा चीज जरूर खाए। तो दोस्त लोग ई रहल है आज के हेल्थ टिप्स, जौन के अजमा के रउआ पा सकतनी निरोगी काया। तो अब दी हमरा के, यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति। आ रखी रउआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: अजीब समझते हैं आप, अजीब। चलिए कहानी आज एक अजीब सी घटना से शुरू करते हैं। हुआ ये कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पाने के लिए राजमाता सत्यवती ने अपने बेटे व्यास को बुलवाया, अपने उस बेटे को जिसे वो कभी सामाजिक कलंक के डर से छोड़ चुकी थी। मैंने सत्यवती की लाचारी को बहुत करीब से देखा। मैं वो आंख हूं जिनसे संसार में घटने वाली कोई घटना नहीं छूटती। मैं आकाश हूं। स्वार्थ में हमें सही गलत का ध्यान कहां रहता है? अगर अपने पुत्र दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र अंधे थे, तो क्या सत्यवती अपने वंश को बढ़ाने के लिए अंधी नहीं हो गई? स्वार्थ हमें सत्यवती बना देता, और अपने स्वार्थ में हम किसी महर्षि, किसी अंबिका या किसी अंबालिका को साधन बना डालते हैं।

0: किसी अनजान पुरुष के साथ मैं सहज कैसे हो पाऊंगी? मैं बातें भी कैसे कर सकूंगी उनके साथ? मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है उन्हें, और राजमाता चाहती है कि मैं उनके साथ।
1: वे अनजाने नहीं है महारानी, आपके पति महाराज विचित्र वीर्य के भाई हैं। बस इतना है कि वो शुरू से ही सामाजिक जीवन से दूर वनों में तपस्या करते रहे। असल में तो उन्हें आपसे मिलने में संकोच होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक राजमाता के अलावा किसी स्त्री से बात नहीं की।
2: इदं सर्व

0: यत् भूतम् यत् च भव्यम् पुरुषे।
1: मैं जा रही हूँ महारानी, महर्षि आ गए हैं, आपको अकेले ही उनका सामना करना होगा।
2: विंता, विंता सुनो तो।
1: क्षमा करें देवी, मुझे जाना होगा।
0: देवी,
2: मुझे डर लग रहा है, आप चले जाइए यहाँ से।
0: शांति शांति।
2: नहीं,
1: महारानी अम्बालिका, कुछ देर में महर्षि आपके कक्ष में आएंगे। राजमाता का आदेश है कि उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कीजिएगा।
2: पर कौन कौन है वो महर्षि व्यास जिसे हम भेंट किए जा रहे हैं? हमें किसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है?
1: मैं तो बस एक दासी हूँ महारानी, मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे आदेश मिला है। बस इतना कह सकती हूँ आपसे कि राजमाता के उद्देश्य के पीछे कुरुकुल का हित है, वो इस वंश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बाकी आप जैसा समझे, आपकी इच्छा।
3: प्रणाम राजमाता।
4: तुम अभी तक

0: राजमहल में केवल फूलों की सेज नहीं, पथरीली राह भी होती है देवव्रत। अंबिका और अंबालिका को राजनीति विरासत में मिली है। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजनीति की समझ होगी और उसके राजसी गुणों के साथ व्यास के ज्ञान के संयोग से हस्तिनापुर को योग्य उत्तराधिकारी मिलेंगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: यदि आप ऐसा मानती हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है राजमाता। आपके विश्वास और आपकी मान्यता पर मैं कोई प्रश्न नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ।
2: राजमाता, राजमाता,
0: क्या हुआ विंता? तुम ऐसे?
2: अच्छा नहीं हुआ राजमाता, अच्छा नहीं हुआ।
0: ऐसा क्या हो गया? महर्षि कहाँ हैं?
2: वो अपने कक्ष में पहुँच गए हैं, पर महारानी अंबिका और अंबालिका,
0: क्या हुआ उन्हें?
2: क्षमा करें राजमाता, महारानी अंबिका उन्हें देखने का साहस भी नहीं कर सकी। उनका रूप देखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये संयोग अधूरा रह गया राजमाता। उन्हें महर्षि का आशीर्वाद तो मिला, पर भविष्य में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकती।
0: हे ईश्वर! और अंबालिका, अंबालिका का क्या हुआ?
2: मैं क्या कहूँ राजमाता, देवी अंबालिका ने उनकी ओर देखने का साहस तो किया, पर महर्षि को देखते ही डर से उनका शरीर पीला पड़ गया। एक बोल भी नहीं फूटा उनके मुख से।
0: तो तुम्हें क्या लगता है विंता, क्या इस संयोग में कुछ कमी रह गई?
2: मैं कैसे कहूँ राजमाता, मैंने तो दोनों महारानियों को आपका आदेश सुना दिया था। उन्हें मन कड़ा करके कक्ष में जाने को कहा, पर
0: जाने उन्हें महर्षि का आशीर्वाद मिला भी होगा या नहीं। कहा तो मैंने सोचा था कि जितने दिन तक महर्षि यहाँ रहेंगे दोनों रानियां उनकी सेवा करेंगी, पर यदि उनमें महर्षि का सामना करने का साहस ही नहीं है तो अब तुम महर्षि की सेवा में जाओ। महर्षि रुष्ट होकर महल से जाए तो ये ठीक नहीं होगा।
2: मैं कैसे? मैं तो दासी हूँ राजमाता।
0: मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, जाओ महर्षि के पास।
3: महारानी अंबिका की आंख बंद कर लेने के कारण महाराज धृतराष्ट्र अंधे ही जन्मे और डर कर पीली पड़ गए अंबालिका से तुम्हारे पिता महाराज पांडु का जन्म हुआ। वो जन्म से ही पीले थे, पांडु रोग था उन्हें, जबकि दासी विंता से महाज्ञानी विदुर का जन्म हुआ। भरत वंश आगे बढ़ा पर कौरवों के जन्म के बाद सत्ता के संघर्ष में उलझ गया, जिसका नतीजा तुम सबके सामने है।
4: हम इस संकट को भी काटाएंगे माते, आप तात विदुर के महल में सुख से रहें। वनवास और अज्ञातवास के बाद हम आपसे इसी हस्तिनापुर में मिलेंगे।
5: नहीं माँ, आपको इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाइयों को तो मैं नहीं जानता, पर मैं 13 वर्षों तक इंतजार नहीं करूंगा। मौका मिलते ही पापी दुर्योधन का अंत कर डालूंगा और मैंने जो प्रण किया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। पांचाली के खुले केश देख मां, क्या ये मुझे मेरा प्रण बोलने देंगे?
3: क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लेना पुत्र भीम, ऐसा ना हो कि एक संकट से निकलने के लिए तुम या तुम्हारे भ्राता किसी नए संकट में उलझ जाएं।
5: घबरा मत मां, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अपना प्रण तो मैं पूरा करके ही रहूंगा।
3: एक माता पुत्रों को ऐसे कैसे विदा कर सकती है? मेरा हृदय ऐसा डूबता जा रहा है कि जाने तुम सब के आने तक जीवित भी रह पाऊंगी या नहीं। पांचाली का ध्यान रखना, विवाह के बाद इसने इतने सुख के पल नहीं देखे जितने दुख उठाए हैं। हर क्षण तुम सबके साथ संघर्ष ही करती रही।
0: ये कहकर मुझे अपने पतियों से अलग ना करे माँ। यदि इनका सुख मेरा है तो इनके दुख भी तो मेरे हैं। बस हमें आशीर्वाद दीजिए।
3: हस्तिनापुर में मेरे दिन तुम सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बीतेंगे। बहु नकुल और सहदेव का ध्यान रखना, मुझे इनकी चिंता लगी रहेगी।
6: अब हम बच्चे नहीं रहे माते, आप हमारी चिंता मत किया कीजिए।
3: एक माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते पुत्र। अब जाओ, देर हो रही है।
7: हस्तिनापुर की प्रजा राजमार्गों पर निकल आई है। संकट की इस घड़ी में प्रजा आप सभी के साथ है। राजपुरे श्रीधाम में राज्य की सीमा तक आप सबको विदा करने जा रहे हैं।
8: पांडु पुत्रों, मैं ऋषि धाम में आप सभी की यात्रा की मंगल कामना करता हूँ। राज परंपरा के अनुसार मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि वनवास काल में हर क्षण सावधान रहें। कुमार दुर्योधन और उनके मामा शकुनी कभी भी घात कर सकते हैं। आगे रात्रि विश्राम गंगा के तट पर ही कीजिएगा।
5: कितनी पावन है देवी गंगा, जिनके दर्शन से ही शांति मिल जाती है।
0: पता है भीम, बचपन में पिताजी हमें देवी गंगा की कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि महाराज शांतनु के पूर्व जन्म का नाम महाभिषक था। कठिन साधना और तपस्या से उन्हें देवलोक में स्थान मिला था। एक दिन वो इंद्र की सभा में बैठे थे।
9: पधारिए देवी गंगा, पधारिए।
10: देवी गंगा की जय। देवी गंगा की
9: जय। आसन ग्रहण करें देवी, यहाँ विराजमान हूँ
11: मैं। तो आपके आकर्षण में खिंची हुई आपके पास ही चली आ रही हूँ महाभिषक।
9: ये मेरी सभा है देवी, देवराज इंद्र की सभा। आप इस सभा का अनुशासन भंग कर रही हैं और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता।
11: ये क्या देवराज, मैंने ऐसा क्या किया जो आप क्रोधित हो गए?
9: आपने ही नहीं, महाभिषक ने भी इंद्र सभा का अनुशासन तोड़ा है। उन्होंने आपको अपने पास बुलाकर पूरी सभा का ध्यान भंग किया है और आप अपना स्थान छोड़कर महाभिषक के पास चली गई।
5: क्या सौंदर्य के प्रति आकर्षण अपराध है देवराज? क्या किसी से प्रेम करना अपराध है? हमने कौन सी भूल कर दी जिसके लिए आप क्रोधित हो रहे हैं?
9: बस बस कीजिए महाभिषक, ये सभा मेरे अनुसार ही चलेगी, आपके अनुसार नहीं।
11: ये आप क्या कर रहे हैं देवराज, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा विवाद?
9: मेरी सभा को आप छोटी सी बात कह रहे हैं? देवी गंगा, आपने देव आचरण का अपमान किया है और आपको इसका दंड मिलेगा। मैं देवराज इंद्र आपको और माँ भिषक को श्राप देता हूँ कि आप दोनों का जन्म पृथ्वी लोक में हो, दोनों धरती लोक में जन्म लें।
0: इंद्र के श्राप से देवी गंगा और महाभिषक को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। देवलोक के महाभिषक इस नए जन्म में महाराज शांतनु हुए, पर उन्हें पिछला जन्म याद नहीं था। इस जन्म में वो एक दिन देवी गंगा से मिले।
11: महाराज शांतनु, ये क्या हो गया है आपको? आप यूं अपलक मुझे क्यों निहारा करते हैं?
5: क्षमा करें देवी गंगा, जाने मेरे मन को क्या हो गया है। मैं जानता हूँ कि आप देवी हैं, साधारण मनुष्य से आपकी क्या बराबरी, पर फिर भी मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। आपके देखे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता।
11: इसमें आपकी भावना का कोई दोष नहीं महाराज शांतनु, प्रेम देव और मनुष्य के बीच कोई भेद नहीं करता। मैं आपके प्रेम का सम्मान भी करती हूँ, पर आपकी इस भावना से भला क्या हो सकता है?
5: मैं आपको हस्तिनापुर के राजमहल में महारानी का सम्मान देना चाहता हूँ गंगे,
12: आपसे विवाह करके अपने जीवन में आपके प्रेम की धारा बहाना चाहता हूँ देवी।
11: पर महाराज, मेरा ये रूप चंचल है, विवाह का बंधन मुझे बांध नहीं सकता।
12: आपको कोई बंधन नहीं होगा देवी, आप राजमहल में उन्मुक्त रहेंगी।
11: ठीक है, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ महाराज, पर उससे पहले आपको वचन देना होगा कि आपसे विवाह के बाद मैं जो कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
12: मुझे स्वीकार है देवी, आप राज परंपरा के अनुसार अपनी इच्छा से जीवन जिएंगी, आपके मार्ग में मैं कभी बाधा नहीं बनूंगा।
11: राज परंपरा का बंधन भी मुझे स्वीकार नहीं है महाराज शांतनु।
13: दरअसल शांतनु गंगा के प्रेम में ऐसे पागल थे कि उन्होंने उनकी सारी शर्तें मान ली और गंगा उनकी पत्नी के रूप में हस्तिनापुर आ गई। फिर कुछ समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, पर महाराज शांतनु अपने बच्चे को जी भर कर देख भी नहीं पाए थे कि गंगा उसे नदी में बहा आई। पर गंगा ने ऐसा किया क्यों, सवाल तो है।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388 89470 या 9198886970।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
1: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
0: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
1: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
0: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
1: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
0: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95999 27 982।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ। साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 97565 65750।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गंडक नदी का जमींदारी बांध टूटा, बैकुंठपुर के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। 10 साल के एक छात्र की हत्या कर शव को दाहा नदी में फेंका, पुलिस जांच में जुटी। 216 लीटर शराब के साथ 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचरा प्रबंधन को लेकर स्वच्छता कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में विजेता टीम को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज सुबह सुबह बैकुंठपुर क्षेत्र से एक बुरी खबर आई, गंडक नदी का जमींदारी बांध टूट गया। लगातार नदी के दबाव के कारण इस बांध के टूटने से लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और लोग सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने तुरंत मोर्चा संभाला। प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी लोगों ने जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में मोर्चा संभाला। NDRF की टीम को तैनात किया गया। राहत और बचाव कार्यों में जो लोग भी पानी से घिर गए और घरों में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाने लगा। वहीं 5 स्थानों पर सामुदायिक रसोई का संचालन भी देर शाम तक शुरू कर दिया गया, जिसमें रामपुर टेंगराही स्थित WPO के समीप, जगीरी टोला के मुंगारहा मध्य विद्यालय, मेहंदिया के हीरा पाकड़ स्थित शिव मंदिर के पास और कटघरवा के रामनगर तथा राजवाही में नितेश की दुकान के समीप सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू कर दिया गया है। यहाँ प्रभावित लोगों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बांध टूटने के बाद पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई तो उन्होंने पूरे स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा,
6: पिछले 3 दिन से ही जिले में पेट्रोलिंग चालू कर दी गई थी पानी का लेवल बढ़ते ही, और चौकीदार से लेकर के हमारे सीनियर ऑफिसर्स तक सभी लोग थाना अध्यक्ष तक मूव कर रहे हैं ताकि तटबंध पर किसी तरह की समस्या ना आए। लोगों का भी, गोपालगंज की जनता का भी और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं उनका बहुत अधिक सहयोग भी मिल रहा है। वो भी कष्ट की स्थिति में है लेकिन फिर भी अपने आवश्यक संसाधनों से जिला प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे की भी मदद कर रहे हैं। कई ऐसी लोगों के सामने संज्ञान आए हैं जहाँ पे लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद की और हम लोग भी घूम रहे हैं। पुलिस की भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, पेट्रोलिंग पार्टी अलग से बनाई गई है। अगले 4 दिन तक लगातार यहाँ पे फोर्सेस का मूवमेंट रहेगा जब तक कि पूरी तरह पानी नहीं निकल जाए। पानी की स्थिति अभी बेहतर हुई है, पानी अब कम होना चालू हो गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 10 से 12 घंटे में वाटर लेवल डाउन होगा जिससे जो लोगों को भी असुविधा हो रही है। अभी लोगों को ये सलाह भी दी गई है और लोग मूव भी कर रहे हैं जो ऊँचे स्थान है खास करके बांध पर लोग मूव किए हैं अपना अपना सामान लेकर के। उन्हें आवश्यक सुविधाएं और कम्युनिटी किचन चालू हो गए, वहाँ पर जो भी सुविधाएं दी जानी है पॉलिथीन वगैरह कम्युनिटी किचन सब चालू हो चुका है और हम लोग भी घूम रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना रहे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर लोगों से मिलकर मुलाकात करके सभी व्यवस्थाओं का हम लोग जायजा ले रहे हैं।
7: अभी जैसा आप लोगों को पता होगा सुबह ही 7 बजे के पहले ही यहाँ सीतलपुर में तटबंध टूट गया था। वो जमींदारी बांध था, एक्चुअल तटबंध जो है वो थोड़ा पीछे है तो उसके कारण जो पानी का बहाव निचले क्षेत्रों में आ गया है। 4 पंचायतें हमारे प्रभावित हुई हैं, वहाँ हम लोगों ने इमीडिएटली कम्युनिटी किचन चालू कर दिया है। लोगों को जो ऊंचे स्थल है वहाँ पर जाने के लिए सलाह दी गई है, लोगों को लेके भी जा रहे हैं। NDRF की टीम जो है एक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड टीम वहाँ पर लगी हुई है और लोगों को रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। मेडिकल टीम भी है, मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन भी चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी भी समस्याएं हैं लोगों को ना से कम हो। और एक अच्छी बात यह है कि पानी का जो लेवल है धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो गया है और जैसा कुछ हाईकोर्ट वाले एरिया है वहाँ पर तीव्र गति से अभी तक 45 सेंटीमीटर पानी जो है जो हाईएस्ट लेवल था उससे डाउन हो चुका है। तो संभवतः यहाँ भी 5 से 6 घंटे बाद ये लेवल पानी का डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों को थोड़ी राहत उससे मिलेगी और निचले स्तर से पानी निकलना चालू हो जाएगा।
8: 70 घाट सड़क पर भी पानी पड़ गया,
7: अभी हम लोग यही 70 घाट सड़क पर है, यही जो पानी अभी ओवरफ्लो हो गया है तो रोड अभी स्थिति में है। अभी आवागमन को हम लोग कंट्रोल करेंगे क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। 5 से 6 घंटे में ये पानी का भी फ्लो कम हो जाएगा तब फिर लोग आराम से सुरक्षित तरीके से आ जा सके।
5: आज मीरगंज के महैचा से भी एक बुरी खबर आई। यहाँ 24 घंटे पहले से लापता अंकित कुमार नाम के एक 10 साल के छात्र का शव दाहा नदी से बरामद हुआ। मृत छात्र महैचा गांव के मनोहर शाह का पुत्र बताया जा रहा है। घटना के बाद अंकित के परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि अंकित मेला देखने के लिए घर से निकला था और लापता हो गया था। 24 घंटों से लगातार परिजन इसे ढूंढ रहे थे, इसी बीच दाहा नदी से इसका शव मिला। इसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। इस घटना को लेकर अंकित की माँ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया,
9: बाजार में कहा था कि मम्मी रे हम आवो तनी मेला में से फुचका उचका खा के तो हम कही जो हल्दी वही है 11 ही बज गए हमार बाबू गायब हो गए बड़े न लाठी से न मार गए हमार बाबू के फांसी लगे के मुआ दिल बड़ सा मई नहीं आवा पड़ा तो देखे नहीं हमार बाबू के चप्पल लथी में रहा नदी में एगो बाना पड़ला देख तनी हमार बाबू मर गए बड़े नहीं हमार बाबू के ध्यान ला गई लटे चप्पल पानी में रहला एगो रहला बनवा पर खोजत रात हो
10: पुलिस में सूचना नहीं देते आप लोग पुलिस में
11: मेला में हो लड़का अभी देख लो तब हम कोनो कार्रवाई
12: क्या नाम था लड़के का
9: अंकित कुमार
12: कितने साल का था
9: 10 साल के बाद
12: कौन से क्लास में पढ़ता था
9: 2 में
13: आज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा। इस गाड़ी में 5 महिलाएं और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। 5 महिलाएं सवार थी। गाड़ी के अंदर 216 लीटर से अधिक विदेशी शराब रखी गई थी। उत्तर प्रदेश की तरफ से यह गाड़ी आ रही थी। भाटवा मोड़ के पास पुलिस ने इसे दबोच लिया। उत्पाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से 216 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इसके बाद पांचों महिला और एक ड्राइवर पुरुष सहित आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इन सभी लोगों को उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं जादोपुर की रहने वाली हैं और पुलिस इनके दूसरे आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 थीम में से थीम 2 स्वस्थ गांव के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला पंचायत संसाधन केंद्र गोपालगंज में 1 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड कुचायकोट के पर्यवेक्षकों एवं पंचायत स्तर पर कार्यरत WPU कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ गांव के निर्माण में विभिन्न हितधारकों के रूप में LSBA कर्मियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रयासों के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ पंचायतों के निर्माण को बढ़ावा देना था। प्रशिक्षण के दौरान स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा संग्रहण एवं सुरक्षा उपायों तथा ग्रामीण परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखने के संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। इसमें विजेता टीम को आज सम्मानित किया गया। मिंज स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 100 मीटर बालिका अंडर 14 आयु वर्ग में माझा की शिल्पी कुमारी, बालक वर्ग में पंचदेवरी के अभिषेक कुमार कुशवाहा, 100 मीटर बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में थावे की लूसी कुमारी, बालक वर्ग में गोपालगंज के आदित्य कुमार, 100 मीटर बालिका अंडर 19 में गोपालगंज की दीक्षा पाल, बालक में गोपालगंज के विशाल कुमार ने विजय हासिल किया। वहीं 200 मीटर अंडर 19 में हथुआ की रानी खातून, बालक में गोपालगंज के विशाल कुमार, 400 मीटर बालिका अंडर 14 आयु वर्ग में गोपालगंज की गरिमा कुमारी और बालक वर्ग में पंचदेवरी के फरहान अंसारी, 400 मीटर बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में हथुआ की अनामिका कुमारी, बालक में भोरे के निखिल कुमार, 400 मीटर बालिका अंडर 19 में बैकुंठपुर की रिंकी कुमारी और बालक वर्ग में बरौली के जहीर बैठा ने जीत दर्ज की। 600 मीटर में बालिका में 14 वर्ष आयु में गरिमा कुमारी और बालक में पंचदेवरी के अभिषेक कुमार कुशवाहा, 800 मीटर बालिका अंडर 17 में हथुआ की अनामिका कुमारी और बालक में भोरे के विवेक चौहान, 800 मीटर बालिका अंडर 19 आयु वर्ग में अफरीना खातून जो थावे की है, बालक में बरौली के शहबाज अली, 1500 मीटर बालिका अंडर 17 में पंचदेवरी की शिवानी कुमारी, बालक में गोपालगंज के नीतीश कुमार, 1500 मीटर बालिका अंडर 19 में रीता कुमारी जो गोपालगंज की है और माझा के समीर अली बालक हैं, 3000 मीटर बालिका अंडर 17 आयु वर्ग में गोपालगंज की पूजा और बालक वर्ग में गोपालगंज के नीतीश कुमार, 5000 मीटर अंडर 19 आयु वर्ग में माझा के समीर अली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता छात्रों को सम्मानित किया गया। अब इन्हीं छात्रों में से राज्य स्तरीय टीम का चयन भी किया जाएगा। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मिथिलेश यादव पिता वीरेंद्र चौधरी साकिन पिठौरी थाना थावे का रहने वाला है। आज इसे गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से अलग अलग मामलों में कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसमें हत्या के प्रयास, SC/ST एक्ट और NDPS एक्ट तथा शराब की तस्करी में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। उत्पाद पुलिस ने गोपालगंज शहर के बंजारी में शिव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर एक कार को पकड़ा। इस गाड़ी से 315 लीटर शराब मिली। इसमें उत्तर प्रदेश तमकुही राज्य के रहने वाले रईस अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थावे थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी आरोपी को भी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ गद्दी, जो स्वर्गीय ललन गद्दी का पुत्र है और नूरा हत्ता थाना बढ़हरिया जिला सिवान का रहने वाला बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: बॉलीवुड को अगर हीरोवुड या मेलवुड भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ एक्ट्रेसेस का रोल सेकेंडरी माना जाता है। मोस्टली हीरो के इर्द गिर्द घूमती कहानियों में हीरोइंस रोमांस, डांस और बाई चांस कहीं कहीं फिट की जाती है। लेकिन एक एक्ट्रेस ने इस प्रथा को तोड़ा और खुद फिल्म की हीरो बनी, और ये सिर्फ बाई चांस नहीं हुआ था। ये साबित करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई लीड रोल्स के साथ सुपर हिट्स डिलीवर की। यह आज के दौर में बॉलीवुड के सबसे सशक्त रोल निभा चुकी विद्या बालन।
10: हाय, मैं हूँ विद्या बालन और आप सुन रहे हैं ये है मेरी कहानी।
9: तो आइए जानते हैं विद्या बालन की कहानी बिल्कुल शुरुआत से।
10: मैं बॉम्बे में चेंबूर में पैदा हुई थी। मेरे घर के बहुत पास एक हॉस्पिटल है, वहीं पैदा हुई थी मैं। और मेरी सारी बचपन की यादें जो हैं चेंबूर से जुड़ी हुई हैं। मैंने स्कूलिंग जो है सेंट एंथनीज गर्ल्स हाई स्कूल में की। सारे दोस्त वहाँ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मंदिर है, सब कुछ तो वहाँ है। और वो जुड़ाव रहता ही है जहाँ आप बड़े होते हैं उस जगह से। केरला हम कभी कभार जाते हैं, पर हमारे सारे रिलेटिव्स जो हैं बॉम्बे में ही हैं, तो केरला कभी कभार बस हॉलिडे के लिए जाते हैं। ना घर है वहाँ, ना कुछ है, तो न जाने क्यों लोग सोचते रहते हैं कि मैं केरला में पैदा हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं। 5-6 लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, थोड़ा बहुत मलयालम, बंगाली और थोड़ी बहुत मराठी। मराठी तो यहाँ पैदा हुई, यहाँ बड़ी हुई हूँ, तो मराठी बोलती हूँ। एक्चुअली मैं मराठी बोल लेती हूँ, पर ऑन एयर या फिर कैमरा के सामने नहीं बोल पाती मैं, थोड़ी सी यू नो ऑकवर्ड हो जाती हूँ। पर तमिल घर पे बोलते हैं हम लोग। और हम लोग पालक्काड से हैं, वी हेल फ्रॉम पालक्काड, एंड पालक्काड इज इन केरला, बट इट्स द वन प्लेस वेयर टमिलियंस हैव सेटल्ड, सो वी स्पीक बोथ तमिल एंड मलयालम। और अंग्रेजी तो ऑब्वियसली। हिंदी का हमेशा से शौक रहा है मुझे, आई लव द लैंग्वेज। और बंगाली का हमेशा से शौक रहा है। मैंने सीखा है फिल्मों से, मैंने सीखा है दोस्तों से, जहां जहां किसी बंगाली को मैं

0: कहती कि अच्छा कुछ सिखा दो मुझे. तो उस तरह से ये लैंग्वेजेस मैंने सीखे हैं.
1: ये है मेरी कहानी विद्या बालन के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए.
0: यू नो, जब मैं एक्टर भी बनना चाहती थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यू नो, एक्टर का मतलब सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं होता, एक्टर का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, जिसके लिए फील करना होता है. तो आई थिंक जिंदगी में सभी कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है.
1: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को. अपने सशक्त किरदारों से विद्या कई फिल्मों में हीरो बनी है, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी खुद की लाइफ का सबसे बड़ा हीरो कौन है? आइए जानते हैं उनकी अपने इस हीरो के साथ की यूनिक इक्वेशन और अटैचमेंट के बारे में.
0: मेरी सिस्टर जो है मेरी हमेशा से हीरो रही है. हम दोनों के बीच 4 साल का अंतर है, वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं. एक्चुअली वो बड़ी शैतान थी, अब भी वो शैतान है. एक्चुअली उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ. बहुत ही बदमाश है वो. हमारे बिल्डिंग में दोपहर के वक्त सभी के घरों में जाके वो बेल बजा के आ जाती थी, सभी को उठाती थी. और ये सब जो आवाज बदल के बात करना, वो सब मैंने उन्हीं से सीखा है, क्योंकि वो फोन करती थी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और आवाज बदल के वो कुछ ना कुछ प्रैंक खेलती थी. तो वो बस मस्ती खो रहे. पर हाँ, हम दोनों बहुत क्लोज रहे हैं. शी इज ऑलवेज बीन इंडल्जेंट. झगड़े भी होते थे जैसे लड़कियों के बीच होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड हूं मैं, तो उस बात को लेके बहुत झगड़ा हो जाता था, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ पुल करके लेके चली जाती थी, बाकी सब कपड़े मेरे बिखर जाते थे. मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा. यू नो, जब मैं एक्टर भी बनना चाहती थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यू नो, एक्टर का मतलब सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं होता, एक्टर का मतलब एक्सप्रेस करना होता है, जिसके लिए फील करना होता है. तो आई थिंक जिंदगी में सभी कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है. और फिर जब उनकी शादी हुई तो मैं कहने लगी कि मेरे 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ दोनों. तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ अपनी फैमिली से, और एक बहुत ही मॉडेस्ट अपब्रिंगिंग रहा है मेरा, बट अ चाइल्डहुड आई'ड से वेयर आई फेल्ट कंप्लीटली अनकंडीशनली लव्ड एंड एक्सेप्टेड, और उस वजह से शायद ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है. टचवुड.

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-30992 या 97665-65750।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: ये है मेरी कहानी विद्या बालन के साथ, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
10: जब माधुरी को मैंने देखा 1-2-3 में, तब मुझे प्यार हो गया। मैं जूनियर माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी और तब से ये भूत चढ़ा है कि एक्टर बनना है।
9: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। एक्ट्रेस बनने के बाद विद्या बालन के बुलंदियों तक पहुँचने की कहानी तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि विद्या के मन में एक्ट्रेस बनने का ये बीज किसने बोया था? आइए जानते हैं।
10: बचपन में तो हम टीवी नहीं देखते थे और उस दौर में वो वीडियो रेवोल्यूशन चल रहा था, तो हम लोग थिएटर में भी नहीं जाते थे. मुझे याद है मेरी पहली फिल्म हिंदी फिल्म थी हाथी मेरे साथी, जो मैंने संडे इवनिंग मूवी के तौर से देखा था. और मॉम अलाउड अस टू वॉच इट बिकॉज इट वॉज अबाउट एनिमल्स एंड इट हैड अ हाथी एंड ऑल ऑफ दैट. तो फिल्मों का तब से शौक नहीं था, पर जब माधुरी को मैंने देखा एक दो तीन में, तब मुझे प्यार हो गया. मैं जूनियर माधुरी दीक्षित बनना चाहती थी और तब से ये भूत चढ़ा है कि एक्टर बनना है.
9: विद्या बालन के साथ.
10: एक्चुअली मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी एट द एज ऑफ 15 and a half. स्कूल से निकल के मैंने अपना पहला सीरियल किया, तो तब पेरेंट्स को लगता था कि अच्छा शौक है, पर टीवी क्लीन मीडियम है तो चलता है. पर मम्मी जो है हर जगह मेरे साथ आती थी. फिर उनको रियलाइज हुआ कि सब जगह अच्छे ही लोग हैं, ये आप पे निर्भर है कि लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं. तो फिर उनको जब वो विश्वास होने लगा, तो शी स्टार्टेड लेटिंग मी गो अलोन एवरीवेयर. एंड वो शो जो मैंने किया वो कभी निकला नहीं. फिर बालाजी में हम सब भेजे गए, 30 एक्टर्स थे, नए एक्टर्स इस शो में. तो हम सब बालाजी गए एक डेली सोप के ऑडिशन के लिए. वहां से मैं हम पांच के लिए चुनी गई. तो ये सिलसिला जारी रहा. तो मैं पहले से मैंने एक्टिंग की है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये चल रहा था. उस वजह से मेरे पेरेंट्स को लगा कि अच्छा एटलीस्ट पढ़ाई कर रही है. एक वक्त में मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो पढ़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है. एंड आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम दैट दे पुट डाउन दैट कंडीशन, बिकॉज जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कॉलेज लाइफ के, और जनरली पढ़ाई करके जो दिमाग जो खुल जाता है वो किसी और चीज से नहीं होता.
9: ये है मेरी कहानी विद्या बालन के साथ. बस थोड़ी ही देर में सुनिए.
10: मुझे बस परिणीता के होते होते मुझे लगने लगा था कि अगर ये नहीं होना है ना, तो भगवान मुझे किसी तरह से एक कोई साइन दिखा दो कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ.
9: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को. सिर्फ सपना देख लेना काफी नहीं होता, सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए होती है चाहत, डिजायर. विद्या की सपने बुनती आंखों में भी कई बार आंसू भर आते और रास्ते कुछ धुंधले धुंधले से नजर आते. वो कई बार लड़खड़ाई, कई बार गिरी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी.
10: बहुत जैसे कहते हैं जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी बहुत आसानी से आपको ब्रेक भी मिल जाता है, तो मुश्किलें बाद में भी आती हैं. लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, अभी भी स्ट्रगल्स होती हैं, तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब मुझे लगा कि शायद मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगी, शायद मैं एक्टर बनने के लिए नहीं बनी. तब तक मेरे साथ इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके थे साउथ में, जहां मैं फिल्मों से निकाली गई थी, मैंने बिना शूटिंग किए आई हैड बीन साइंड ऑन फॉर अ लॉट ऑफ फिल्म्स. कई कई फिल्मों में मैंने काम भी किया था, फिल्में रुक गई थी बीच में, मुझे जिंक्स लेबल किया गया था. निराश होती थी, मायूस होती थी. फिर जाके हमारे घर के पास एक साई बाबा मंदिर है चेंबू.

में मंदिर में जाके बहुत रोती थी और कहती थी कि आप मुझे यहाँ तक लाए हैं, आपकी जिम्मेदारी है मुझे आगे ले जाना। तो फिर कहीं ना कहीं से हिम्मत मिलती है और आई थिंक कहीं ना कहीं वो भूख, एक एक्टर की भूख होती है, वो मुझे प्रोत्साहित करता और उस वजह से मैंने अपना ये सपना जो है बरकरार रखा। मुझे बस परिणीता के होते होते मुझे लगने लगा था कि अगर ये नहीं होना है ना तो भगवान मुझे किसी तरह से एक कोई साइन दिखा दो कि ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं थक गई हूँ, पक गई हूँ। ये बस अपने आप को हमेशा एनकरेज करते रहना और टू पुट अ ब्रेव फेस टू इट, इट्स वेरी टायरिंग। पर आई थिंक मैं ये सब कहती भी थी पर कहीं ना कहीं अंदर ये भी मेरा विश्वास था या डिज़ायर था, मैं मुझे नहीं पता क्या था, कि मुझे एक्टर बनना ही है और अगर एक मौका मिला है तो चाहे वो 100 टेस्ट क्यों ना ले, एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और बस मैंने वही किया।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
9: ये है मेरी कहानी, बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
10: पहले मेरे साथ होता ये था कि अगर मैंने सुना कि कोई गुजर गया है तो मुझे हंसी आती थी। तो मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। कभी मेरी मम्मी कहती थी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यू नो, कोई गुजर गया, हंसने की क्या बात है इसमें।
9: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। भूल भुलैया में एक साइको की भूमिका निभा चुकी विद्या रियल लाइफ में भी खुद को कुछ मामलों में पागल मानती है। यकीन नहीं होता ना, तो खुद सुन लीजिए।
10: मेरा तो पहले मन करता था कि सारे BEST बसेस को एक होस पाइप लेके मैं साफ कर दूं। उस हद तक मैं क्लीनलीनेस की पागल हूँ। कोई भी चीज गंदी होती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे आई बिगिन टू फील वेरी अनकंफर्टेबल। ऐसा भी हुआ है कि मैं मीटिंग में बैठी हूँ और एक पेंटिंग वॉल पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और मैं बस सोच रही हूँ कि अच्छा आप ब्रेक ले तो मैं जरा जाके वो पेंटिंग सीधा कर दूँ। थोड़ा सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव हूँ।
9: विद्या बालन के साथ।
10: पहले मेरे साथ होता ये था कि अगर मैंने सुना कि कोई गुजर गया है तो मुझे हंसी आती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, नर्वस लाफ्टर। मुझे कैसे रिएक्ट करूं ये समझ में नहीं आता था। और उस वजह से कभी तो मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। एंड कभी मेरी मम्मी कहती थी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यू नो, कोई गुजर गया, हंसने की क्या बात है इसमें। एंड पर वो जब तक द फीलिंग सेटल्स, मैं हंसी थी, तो अब मैं थोड़ी सी पागल हूँ।
9: ये है मेरी कहानी रेडियो

0: रेडी 91.1 पर विद्या बालन के साथ। बस थोड़ी ही देर में सुनिए।
1: सभी कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से, पर आई थिंक एज एन एक्टर होता क्या है कि आप जो बचपन के दोस्त हैं स्कूल कॉलेज के वो सब तो रह जाते हैं, पर यहाँ दोस्त बनाना या फिर रिश्तों को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: सुनते रहिए ये है मेरी कहानी में विद्या बालन को। रियल लाइफ में कई रोमांटिक रोल्स अदा कर चुकी विद्या रियल लाइफ में भी काफी रोमांटिक है। इनफैक्ट वो कई लोगों की मदद भी कर चुकी है उनकी लव लाइफ में।
1: कॉलेज के दिनों में तो We used to do that all the time with each other. दूसरे लोगों ने मुझे मदद की, मैंने दूसरों को मदद की. But I do think that love is what makes the world go round and round. And I'm not just saying romantic love, all types of love. But हाँ, एक romantic love का experience जो है, feeling वो बहुत ही अलग है. And वो जब आप एक दूसरे को देखते हैं, जो होता है, वो feeling unparalleled है. So I do think I'm in love with the idea of all types of love.
2: Kahani, ye hai meri kahani.
0: Vidya Balan ke saath.
1: I think Filmfare Awards के स्टेज से उतर के मैं मिली, मुझे पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था पा के लिए, और मैं स्टेज से उतरी ही थी कि किसी ने मुझे सिद्धार्थ से इंट्रोड्यूस किया, तभी हमारी पहली मुलाकात हुई।
2: कहानी मेरी कहानी।
1: आई थिंक फैमिली सपोर्ट अगर हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब बाहर कभी कभी चीजें वर्क कर जाती हैं, कभी नहीं कर जाती, जब आप घर जाते हैं, व्हेन यू फील दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, यू आर लव्ड, दैट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, द करेज टू गो ऑन। सभी कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से, पर आई थिंक एज एन एक्टर होता क्या है कि आप जो बचपन के दोस्त हैं स्कूल कॉलेज के वो सब तो रह जाते हैं, पर यहाँ दोस्त बनाना या फिर रिश्तों को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक जो क्लोजनेस है फैमिली के साथ बढ़ जाती है। एंड आई एम अ होम बर्ड, तो मैं फैमिली के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताती हूँ।
0: ये है मेरी कहानी।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊँ, 15 साल शादी के

0: गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते

0: खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
3: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
4: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
5: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें

0: ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
2: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
1: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
2: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
1: कहाँ?
2: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए

0: गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
1: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
1: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
1: जानकारी है तो कॉल करें 62052-61112 पे।

0: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
6: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: सुनिए जी बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
8: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
7: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
8: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
7: कहाँ?
8: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-3586 या 95-99-27-982।

0: 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में क्षेत्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए विमान ईंधन पर वैट की दर 1% से घटाकर 0 करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 2,554 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। योजना के लिए 2,761,55,00,000 रुपए के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने कुशल युवा कार्यक्रम को संशोधनों के साथ लागू करने की भी स्वीकृति दी है। सरकार ने 30 वाटर कैनन और 86 ब्रज वाहन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए 26 करोड़ 40 लाख और 36 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन 3 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा है। कोसी स्नातक क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी एनके यादव ने नामांकन दाखिल किया। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार वीर मोहन कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के श्यामनंदन कुमार यादव ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अब तक 6 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर निर्धारित है। दिल्ली की विशेष अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्णय लिया है। न्यायालय इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ आरोपों पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 14 अक्टूबर तय की है। राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दीपक कुमार को बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव पद से वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त होने के बाद दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार प्रमाणीकरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को स्टेट प्रगति अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड कोलकाता में आयोजित आधार संवाद के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया गया। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश में नागरिक केंद्रित, सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। बुजुर्गों को आदर और सम्मान देने के संकल्प के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा है कि हम सबका कर्तव्य है कि बुजुर्गों की समुचित देखभाल की जाए। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में कहा कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिवेश में वृद्धजनों को अकेला छोड़ा जाना और उनकी उपेक्षा गंभीर चिंता का विषय है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग कर रही है।
3: वर्ष 1968 के बाद पहली बार भारत ने अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की पूरी संरचना को नए सिरे से तैयार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई संरचना प्रस्तुत की। अब शिक्षा की शुरुआत 3 वर्ष की उम्र से मानी गई है और 18 वर्ष तक की शिक्षा को एक निरंतर व्यवस्था के रूप में देखा गया है। पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया। 2020 में कम से कम कक्षा 5 तक और संभव हो तो आगे भी बच्चों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या घर में बोली जाने वाली भाषा रखने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
4: प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। ये बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गति बेहतर होती है। इसलिए जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है।
3: इस नीति ने कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच बनी कठोर सीमाओं को भी कम करने का प्रयास किया है ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर सके। बिहार के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं।
5: मैं डॉक्टर कुमारी मीना सिंह हिंदी की प्राध्यापिका हूं। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रखकर ज्ञान कौशल रचनात्मकता और व्यक्तित्व विकास से जोड़ना है। इसमें विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने के अधिक अवसर देने पर जोर दिया गया है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है।
6: मेरा नाम कुमारी निधि है। मैं NEP 2020 के तहत शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। मेरा मानना है कि NEP होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देती है। एक छात्र के रूप में मुझे लगता है कि ऐसी शिक्षा हमें सिर्फ एग्जाम रेडी नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में ले जाती है। इसके साथ ही यह वोकेशनल एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को महत्व देती है जिससे हम केवल पढ़ते नहीं बल्कि करके भी सीखते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस और मातृभाषा पर सीखने पर जोर देने से शिक्षा को अधिक सहज बनाने की कोशिश की गई है।
3: वर्ष 2021 में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को कक्षा 3 तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया। निपुण भारत और विद्या प्रवेश के माध्यम से देश भर में लाखों स्कूलों और करोड़ों बच्चों तक पहुंचाई गई है। समाचार कक्ष से सविता पारीख।
1: नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक, कोसी और बागमती सहित प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। गंडक नदी में तेज बहाव के कारण सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। सारण के मकेर और मनौर में तटबंध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पश्चिम चंपारण के बगहा, बैरिया और नौतन में तटबंध टूटने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के कई गांव में पानी तेजी से फैल रहा है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर रिंग बांध में रिसाव हो रहा है। शीतलपुर में रिंग बांध ध्वस्त होने की भी खबर है।
7: गंडक नदी में तेज बहाव के कारण बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर में आज रिंग बांध ध्वस्त हो गया। इसके कारण शीतलपुर, फैजुल्लाहपुर, नरवार, बहरामपुर सहित कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि अन्य स्थानों पर तटबंधों की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है।
8: मुख्य तटबंध से थोड़ा दूर है, ये रिंग बांध है। यहाँ पे कल हम लोग के द्वारा भी रात में इंस्पेक्शन किया गया था, थोड़ा सीपेज था लेकिन अचानक से आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये टूट गया है और इसको जो है और फर्दर ये ना टूटे इसको कंटेन करने के लिए यहाँ टीम अभी लग गई है और हम लोग इसको कंटेन कर देंगे। मेन बांध और इस बांध के बीच में भी और कुछ बांधे हैं, उसको भी हम लोग वहाँ पे प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, फोर्स मजिस्ट्रेट सबकी डेपुटेशन होगी ताकि उसकी सुरक्षा हम लोग निरंतर करें।
7: जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगाए हैं, सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही मेडिकल सहायता भी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मदेश कुमार तिवारी।
1: मुजफ्फरपुर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक नदी रेवा घाट पर उच्चतम स्तर पर है, जबकि कोसी, बागमती और घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इधर गंगा नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के मनेर, गायघाट, कंगन घाट और अन्य घाटों पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी सड़कों पर आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पश्चिम चंपारण और अन्य जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, नदियों के जलस्तर और सारण के मकेर में टूटे तटबंध का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के खाते में 9 अक्टूबर को 7,000 रूपये की बाढ़ सहायता राशि अंतरित की जाएगी। ये डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, साथ ही अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री, पशुओं के लिए चारा और आश्रय की व्यवस्था करने को कहा है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल और सहरसा के जिला पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि हर पंचायतों तक मौसम की चेतावनी दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री महापात्रा ने कहा कि शीघ्र ही पूर्णिया और दरभंगा में नए रडार स्थापित किए जाएंगे, इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल सकेगी। गया जी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष महासंगम के छठे दिन नियत कैलेंडर के अनुसार आज रुद्रपद, ब्रह्मपद और विष्णुपद वेदी स्थलों पर पिंडदान और तर्पण का विधान किया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में फार्म 6 से घोषणा पत्र हटा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार के 45,000 स्कूलों में घरेलू एलपीजी से बनेगा मिड डे मील। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने क्षेत्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए विमान ईंधन पर वैट की दर 1% से घटाकर 0 करने का फैसला किया। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक, कोसी और बागमती सहित कई नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही है वृद्धि। राज्य के 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों के खाते में 9 अक्टूबर को 7,000 रूपये बाढ़ सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुविधा। न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
12: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
12: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: Now pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
13: Pick it up,
14: hello.
13: Now pick your phone up,
14: hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
16: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
17: हेलो
18: जी, बहुत सर रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
17: थैंक यू, नमस्ते आपको।
18: जी नमस्ते,
17: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
18: जी अनिल जी, क्या हाल चाल है?
17: बढ़िया है, अपना बताइए।
18: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
17: गाना सुना दीजिएगा पवन सिंह का।
18: कौन सा बता दीजिए?
17: चांदना सुनर लागेला।
18: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
17: आपकी पूरी टीम को और जितने लिसनर सुन रहे हैं सबको।
18: अनिल जी वैसे क्या हो रहा था अभी?
17: काम पे हैं।
18: क्या करते हैं वैसे आप?
17: दवा दुकान में जॉब करते हैं।
18: अच्छा, मेडिसिन एजुकेशन लाइन में है। चलिए बहुत अच्छे की बात है। चलिए अनिल जी, तो आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
17: धन्यवाद
18: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: मैचेस में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं मैम, पहले भी किए।
0: अरे वैसे अपना नाम क्या बताया?
1: मिथुन शर्मा।
0: अच्छा जी,
1: बेंगलोर से जुड़े हैं।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। वैसे क्या करते हैं आप?
1: हम फर्नीचर का काम करते हैं मैम, और हम बराबर रेडियो सुनते रहते हैं। हमारा रोज रेडियो 9 बजे रात तक चलते रहता है। आपका सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
0: तो आप ये रेडियो से सुनते हैं या फिर ऐप के माध्यम से?
1: ऐप के माध्यम से, मोबाइल से सुनते हैं मैम।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, अभी रेडियो तो इधर नहीं है, मोबाइल के ऐप से सुनते हैं। गाँव में रहते हैं तो रेडियो पे तो आपका रेडियो नहीं, हमारे उधर चलता है।
0: जी जी।
1: तो मोबाइल से ही सुनते हैं, ऐप से।
0: चलिए ठीक ही बात है। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगता है रेडियो रिमझिम का?
1: अच्छा लगता है मैम। हेलो माई चॉइस में मैं कॉल कितने बार किए तो आप, जब मैम भारती मैम चेंज हो जाता है तो आपने मेरा गाना बजाते ही नहीं।
0: अच्छा जी, ऐसा नहीं है।
1: 2-3 दिन में भेजा मैसेज आपको गाना, सप्ताह में एक ही बार हम जुड़ते हैं मैम, फिर भी हमारा गाना नहीं बजा। आज भी मैं भेजा हूँ, आज भी बजेगा कि नहीं पता मैं।
0: नहीं नहीं, बारी बारी से सबका बजता है।
1: जी मैम, हेलो।
0: हाँ जी, जी बोल रहे हैं कि बारी बारी से सबका गाना बजता है।
1: 12 बजे से शो चालू होता है मैम, 12:05 तक भेजते हैं, तो 2:30 बजे 3 बजे तक तो बजना मांगता है ना, 2-3 घंटे में, तो उतने में भी नहीं बज पाता है ना। जब मैम चेंज हो जाता है, आप आ जाते हैं, तो फिर आप आगे पीछे हो जाते हैं, मैसेज तो देख नहीं पाते हैं, बजा भी नहीं पाते हैं। जो जुटता है उसको बजा देते हैं, जो पहले से जुटा रहता है उसको बजाने। मेरा नाम मैम मिथुन शर्मा है, बिहार के रहने वाले हैं।
0: अच्छा, तो अभी आप मैसेज किए हैं?
1: जी मैम, आपका आवाज आने में, बोलिए।
0: जी जी, तो अभी आप फरमाइश किए हैं? फरमाइश।
1: हाँ, हम हेलो मैं चॉइस में फरमाइश किए हैं।
0: अच्छा जी, चलिए।
1: तो अभी हमको बताया रिकॉर्ड हो रहा है, तभी मैं फिर कॉल लगाया, तो अभी एक ही बार में लग गया। उस दिन में लगाते रहा तो आधा घंटे से लग भी नहीं किया।
0: चलिए, और ये गाना जो बताया वो डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: मेरा दोस्त है यहाँ पे, सभी दोस्त और जितना सुनने वाले हैं, सभी दोस्तों के लिए।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं आपके गाने को।
1: ओके मैम।
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
9: सलाम अलैकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम
9: जी, हम जाकिर हुसैन बिहार गोपालगंज जादवपुर से।
10: जी जी, कैसे हैं आप?
9: मैं ठीक हूँ, अपना बताइए मैम।
10: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
9: जी मैम, तो गाना सुनना चाहते हैं मैम?
10: जी बिल्कुल, बता दीजिए
9: मैम। बहुत देर से कॉल लगा रहे थे, कॉल नहीं लगा।
10: जी जी, वो क्या है ना कि एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
9: अभी अभी कॉल किया है तब फिर भी कॉल आप नहीं उठाए।
10: चलिए कोई बात ना, लग गया ना, आज कॉल भी रही है।
9: हाँ मैम, गाना सुनना चाहते हैं, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, इतना नाजुक है मेरा दिल, तूने रिश्ता।
10: तो जाकिर जी गा के मुझे बताते दो लाइन तो बहुत ही अच्छा होता।
9: उतना तो मैम हमारा भी याद नहीं है, हिंदी गाना है, गा सकते हैं।
10: चलिए कोई बात नहीं, जितना याद है आप उतना।

0: याद नहीं है। ठीक है
1: दीदी, आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं।
0: अरे मैम दूसरा गाना बोलिएगा तो सुना सकते हैं, हमारी गाना वो तो याद नहीं।
1: चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं।
0: गाना तो मैम गाते हैं मगर संगीत उंगीत सब कर रहे हैं। मैम हम कहा दोनों आँख से तो ब्लाइंड है, कहाँ हमको दिखाई पड़ता है। दोनों आँख से 100% ब्लाइंड है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ दोस्त का नाम लेना चाहते हैं, मैं गाना सुना दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बता दीजिए।
0: तो फिर आलम है, यूसुफ अली है, मुन्ना अंसारी है, मेराज आलम और जितनेश शर्मा, गोविंदा, और इसमें हमारा जितना भी आपको रेडियो रंजन की जितना परिवार है उसको भी सबको सुनाना चाहते हैं। गाना कोई बात नहीं है, और अगली बार फिर भी हम सुना देंगे दूसरा आपको।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है
1: चलिए जाके जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम
0: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: रेहमान बोलतन पठान पठे
0: जी, कैसन बानी?
1: ठीक बानी, अपन बताई
0: जी। हमरो ठीक बा, काजी कितना लेट से फोन करते नहीं, का हो गई बा?
1: अच्छा लगे बल जी, लागत नहीं है का करी बताई।
0: अच्छा चली, इतना टाइम हो गई, हम तो कनी कर देले बानी फोन।
1: ना नहीं कर ले, बाकी रहनी
0: है। बढ़िया बा,
1: बनी दो।
0: हाँ ठीक बानी, अपन बताई की रहुआ कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी, ज्यादा लेट हो गा ना मैम।
0: तो बताई, बता दी फरमाइश, वैसे भी टाइम भी ओवर होता।
1: हाँ टाइम तो ज्यादा ओवर होता, हम तो कहते नहीं कि बात ना हो, टाइम खत्म हो गया बा, लेकिन तो लगाओ नहीं तो बिजी बताओ तो लगत लगी बात हो जाए। कल फोन ना उठाई हम, आ
0: कल फोन, अरे मैसेज इतना आ जाता की कॉल
1: रहो आए रहे तब लगाए, चीज भारती में रहे तब लगाए, लेकिन केहू जन उठेबे ना कैल हमारे फोन।
0: अच्छा अच्छा, रोल नंबर वही याद करके रख ले एक बार, ताकि जब भी एनु तो उठा लेन सब।
1: हाँ ठीक कहत नहीं, खाली दिल से याद करी, फोन पे ना याद करी ना।
0: हाँ हाँ पता नहीं,
1: मैसेज कोई लगन कल को तो कहाँ मैम देख ले भाई मैसेज हो, ऐसे मैसेज मोबाइल हम लगन आ रहा है, लेकिन नहीं कल हर भाई साहब को लग रहा है तो कभी कभी बोल रहा है घर तो मुझसे मैसेज कर देनी।
0: हाँ
1: तो कहाँ देख ले भाई?
0: हाँ
1: ठीक बानी।
0: हाँ हाँ ठीक बानी, तो बता दी फरमाइश, टाइम बहुत कम आपको।
1: हाँ बता देता नहीं, आज का दिन का रात है, पल भर के साथ है, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, हिंदी गाय नहीं वे बजा दे।
0: यही बात पे तो दू लाइन गा के सुना दी ना।
1: गा के सुना दी।
0: हाँ हाँ,
1: का दिन का रात है,

0: अपना बना लो।
1: सुन लो नहीं।
2: बहुत अच्छा बा, सुनवाई के भी चाहते नहीं क्यों के?
0: हाँ सुने मैम, सुने लो और रानी बाड़ी रखो से सुनियो, कल देख सुने के फोन कैले रही।
2: हाँ।
0: वो सुनियो न सिवान से जरवान वो सुनियो।
2: जी जी
0: हाँ बताई रहो नाम पता पूछ के सब प्रचार कर दे नीनू।
2: हाँ ना ऐसा मत ना, वो फेमस होता नहीं हमनी के साथे साथे।
0: हाँ ठीक है कह दे। हाँ सुने नी थोड़ा बंद कर देने आज के टाइम हो जाला। हाँ तो फिर जितना बाकी रहो सुबह सुन लेनी। तो चालू बा मैं।
2: हाँ चालू बा, चलिए तो फिर गाना प्ले करते नहीं।
0: हाँ ठीक बापा बजा दी
2: जी। सुनता सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी,
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: हेलो
9: जी, जी नाम बता दीजिए अपना।
10: परमात्मा कुमार, गोपालगंज।
9: जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
10: गोपालगंज से।
9: गोपालगंज में कहाँ?
10: कलामठिनिया।
9: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है अभी?
10: काम कर रहा है, बारिश आ रहा है बस।
9: अच्छा जी, बारिश हो रहा है इधर?
10: बारिश हो रहा है इधर भी पंजाब में।
9: अच्छा, तो अभी आप पंजाब में हैं?
10: हाँ जी, सोमवार को कॉल लगा था, आज सोमवार को फिर।
9: अच्छा, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
10: फरमाइश हमारा है इंदिरा का गाना जो नहीं है तो रेली वाला गाना है जो रेल का गाई हुई है
9: रेलिया वाला।
10: हाँ जी हाँ जी वो बजा दो।
9: अच्छा और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
10: सब जितना रेडियो रेडियो सुनते हैं उनको सबको और आपको भी और जितना है सब।
9: ओके परमात्मा जी तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
10: हाँ जी
9: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते।
0: कैसी हैं मैडम जी?
1: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो नेहा जी क्या हो रहा है?
0: आपका इंतजार पहचान गई मैडम जी।
1: हाँ जी,
0: और समाचार बताएं, तबीयत कैसा ना रहता?
1: सब ठीक बा।
0: अच्छा
1: हाँ जी, ऐसे नेहा जी कहाँ से बोलता नहीं?
0: भोरे से।
1: भोरे चली तो और बताई, खाना पीना रहा भैया?
0: हाँ खाना बन गया, अब दोबारा खाना है।
1: अच्छा चली बढ़िया बा। तो फिर बता दी आज की फरमाइश।
0: सारे नल के मेहरारू से केहू ना जीतल बा।
1: हाँ हाँ ये तो गाना तो बताइए बानी है भी। हाँ नेहा जी, गाना रुआ गा के बता सको तनी हम?
0: थोड़ा सा गाना ना गाइले,
1: दो लाइन गा दी थी तो ठीक रही।
0: थोड़ा लाइन गा दिखा मैं तो नहीं।
1: अच्छा तो नहीं सुना गाए, लेकिन तो हमके गा के सुन ले रहे रुआ।
0: ना ना हम नहीं की गाले कोई हो, फरमाइशी देने वाले।
1: अच्छा चले कोनो बात नहीं के, और ये गाना क्यों के सुनवाए के विचार तनी?
0: सबसे पहले आपको जितने रेडियो रंजन खाते हैं उसका रेडियो रंजन 200 सुनता है सबके साथ।
1: ओके नहीं अजी, तो फिर प्ले करते नहीं गाना
0: जी मैडम जी। नमस्ते
1: जी। नमस्ते मत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: ए जी, एक बात बताई,

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: और जी रोवा के नमस्ते, प्रणाम और राधे राधे। और कई सुनवानी दी रोवा
11: जी? नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। हम ठीक बानी, रहुआ बताई रोवा कई सुनवानी?
12: और रोवा हमारे इंतजार करते रहनी हम ठीक बानी।
11: जी बिल्कुल।
12: और बताई रोवा, नाश्ता वास्ता कर ले वानी?
11: हाँ हाँ, नाश्ता तो हो गई बा।
12: और बताई ठीक बानी ना रोवा?
11: जी बिल्कुल, रोवा बताई की रोवा कई सुनवानी?
12: जी जी, हम यही के रोवा के सुनते हुए और आवाज इतना अच्छा अच्छा सुनते हुए सब कोई झकास बानी, सब कुछ एकदम मस्त जबरदस्त, अब पूछी तो झकास। अब रहुआ बताई रहुआ कैसन बानी? और भारती दी कैसन बानी?
11: ठीक बानी
12: जी। अब वहाँ के शो शुरू हुई की ना, वहाँ हमें बुलाओ दिली, बोलो दोनों आदमी बुलाई तो हम जरूर आए।
11: हम तो मैंने कहते बानी हूँ के बोलता नहीं की कहीं रानी जी के शो में जुड़े के।
12: अच्छा, और दी पता बा, एक बार गुड न्यूज बा, आज में बार का फोन खरीदा जाये तब हम पर डे रोलो के बीच में जुड़े।
11: अरे वाह, बात बात, तब तो पार्टी बना था।
12: और रोवा करती तो पूरा पार्टी बना था, दोनों आदमी खाते।
11: जी जी।
12: और रोवा नाश्ता पूरा दोनों आदमी भरपूर करे, हम लोग ऐसे खाए सभी कोई रोवालो से बेकरार रहे ला बात करे खाते।
11: जी जी। तो और बताए परिवार में सबके ठीक बानो?
12: जी जी, सब कोई ठीक बा, रोवालो के दुआ बा। और दी एक बात बोली?
11: हाँ जी बोली।
12: और रवानो, जब भी कोई लिसनर अगर गाना बीच में से फरमाइश करे नीलो तो रवा डायरेक्ट पूछल करे कि कौना मूवी से गाना बा, और रवा कभी ऑन एयर माफी नत मांगे, अच्छा ना लगेला। और देखी रवा तो बताओ तनी, सबसे ज्यादा गलतियां हरकत हम लिसनर सब में होला, ठीक बा? कभी कभी हमने के का करे नी तो बीच में मैच कर देनी सा, कभी कभी अगर हम कहते नी जब हम मूवी के नाम देख ले बानी और जान पानी तो हम कहे ना उन मूवी के नाम धा के हम अगला के हम गाना बता दे की दी हम रहे मूवी से गाना सुनने के बारे, वो लोग के दिक्कत ना ना हो और वो ऑन एयर कभी भी माफी नत मांगे उतना मायूस नत हो क्या। और खास करके वो अंकल जी जो गाना खिलाफ मूवी से सुने के कहले रही वो जौना तरीका से बतैले रही गलत आचरण में के तो उन्हें केहू के मिस्टेक खा जाये और जीते बतैले रही रहो में कोनो भी गलती नहीं के रहो वो ही सोच के गाना बजैले रही बाकी जौन बिहान भैले वो गाना बतैले रही के खिलाफ मूवी से गाना सुने के बाद वे काम वो दिन कैले रहती रोवा भी दिक्कत ना हो और वो ऑन एयर कभी माफी नत मांगे और वालों में। और देखिए स्टार्टिंग में सबको ये थोड़ा बहुत दिक्कत होला दी और अच्छा ना लगे थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा जो माफी मांगे था हमके और अच्छा ना लगे।
0: अच्छा जी।
12: और देखिए और बार बार कह नहीं लो जी हमारे गाना कहिए बाजी हमारे गाना कहिए चली कभी भी रोवो से चाहे भारती दी से भी बात भई बात हम कभी भी हम अपन गाना मिस नहीं की कहले हमेशा सुनते आई बानी। और आज ना तो काल तो बाजिए जला एक दो दिन आगा देखा और सबसे अच्छा तो रोज शो में ये जो जरिया बा हमने का अगर सुबह में ना सुनी सा तो शाम के सुन सकता नहीं सा अगर शाम में ना सुन सकता नहीं सा तो सुबह में सुन सकता नहीं सा और रोवा में कोनो गलती नहीं की दी। और हमने और पता बा ये हम खुद एक लिसनर होकर हम बहुत जगह अगर चैनल से बात करेंगे तो हम बीच में से गाना बता देंगे तो वो तो आरजी पूरा कम्प्लीट बानी लो ढेर दिन से शो करता नहीं लो तो वहां लोग पता चल जला और चाहे गाना भी बतावे नहीं तो हम क्लियर बता देनी और रोवा में कोनो गलती नहीं की दी और उतना मायूस न तो क्या अभी नया बानी रोवा और हमने की फर्ज बांधता रोवा के पूरा सुहूर बिटोड़ के रोवा के ओर से आगे लेके चली सा और रोवा इतने दिन में बहुत सारी आई बानी रोवा लो दोनों आदमी के अगर जितने हमने की तारीफ करी के बहुत कम कर गई। और जो ओ जी गाना बीच में का वो मूवी के नाम पता बा अगर रख दे वहां लोग का दिक्कत बा और सबसे ज्यादा गलती है हम ये कर लिसनर सब ठीक बा रोवा में कोनो दिक्कत नहीं क्या रोवा कभी मायूस न छोड़े रोवा अपनी आवाज से जितने हमने के रोवा के आवाज से अगर हमने के तारीफ करी सब बहुत कम कर गई। और सुबह में डायरेक्टर सर के द्वारा कुछ लिसनर रोवा लोग के दोनों आदमी के बीच में मैसेज कहे रहनी आई लोग काफी अच्छा अच्छा उन्हें से रिप्लाई मिला रहा और डायरेक्टर सर ऊपर बहुत अच्छा अपने विचार रख ले बनी
0: जी साहब
12: जी। और देखिए और कभी भी अगर हम कहते नहीं हम तो बहुत ज्यादा मूवी देख ले बनी हिंदी में अगर बात करी तो हम डायरेक्ट तुम नाव रख देने के लिए मूवी के गाना पर बजा दे फिर वो आसान भी हुई सामने अलग भी आसान हुई हम ही आसान हुई सुनने में। और बाकी उमेर वो माफी मांगते रही तो थोड़ा सा बुरा हमके भी लगे भले बुरा क्यों के लागू चाहना बाकी सोचते रही कोई भी फोन रही एक दिन और शो करते रही वो में माफी मांग रही ऑनलाइन वाला शो में पूरा शो अंति पड़ाव पर हुए हम कहीं अच्छा कभी बात हुई तो बोले की इतना टेंशन न फिल्म अब चली और दिल वाले मूवी में देखी बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बात तो होती रहता है
0: जी जी लेकिन
12: और वह जो करी बहुत अच्छे से करी और वह आयुष आगे जान भी बहुत आगे जाए और सारी और रेशमा दी जो पहचान पुलिस से कॉल कर रही काफी कुछ हमारे बारे में बोल ले रही कई की तारीफ बोला तो दिल बड़ा गदगद बोला तो वहाँ के दिल से शुक्रिया रानी की तरफ से। और हम बात कहीं एक दिन हम अपने दृष्टि डाल के देखिए हम अपना नजरिया से हमारी जितना लिस्नर बानी लोन अपना जगह पर सबको एक से एक बढ़ के तो एक अगर तारीफ नाम डाल के नहीं के कर सको शब्द नहीं के वो सब कोई के। और सबसे अच्छा हमारा लगे हमारा अपने कॉल से ज्यादा लोग के कॉल सुने में बहुत अच्छा लगे उनको के कम नहीं की जब गाना गावे नहीं ना काफी अच्छा लगे चलिए आज बिना देरी की आज सॉन्ग बजा दी रोवा के हम पूरा थोड़ा सा हिट दे देते हैं और भोजपुरी में बात बोल बा बाकी हिंदी गाना सुना दी
0: बता दी
12: जी मूवी के नाम बा बेटा अनिल कपूर के है और ये गाना बा धक धक करने लगा हाँ गाना काफी खूबसूरत बा और ये गाना रोवा दोनों आदमी के हमारा तरफ से रानी के तरफ से और जितना रेडियो दोस्त बानी वो सबको के और रेशमा जी बानी पठानपटी से कैचा भर के हमने दोनों आदमी के हिसाब और कभी अपन लगन और मेहनत और इसीदत और विचार और सबसे बढ़कर रोवलो में दो आदमी में अर्जी तो बहुत लोग आई अगर एक नजरिया से हम देखी था बाकी जौन रोवलो की नेचर बा जौन रोवलो की विचार बा दोनों आदमी के बहुत अलग बा हम सौ लोग के बीच में ही बात बोल सकते नहीं रोवलो हाँ हाँ बहुत ज्यादा बाजी। और देखिए सारी बात एक तरफ कभी भी इंसान के अंदर ही इतना रखे के चाहे लिस्नर और अगर सामने वाला व्यक्ति बात करे तो दोनों आदमी फर्क ना पड़ोगी हम एक आरजे से बात करता नहीं दोनों आदमी के लागू तो लिस्नर लिस्नर से बात करता इमेज करे के चाहिए
0: जी एकदम
12: जी जी जी
0: हाँ
12: जी जी और गाना प्ले करी और लोग भी लागल हुई लाइन में
0: जी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो,
8: नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी, साथ में आपका भी स्वागत है कि हमको गाना सुनाइए।
7: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। नाम बता दीजिए अपना।
8: नाम बता दे, आप कौन बोल रहे हैं?
7: जी मैं मनोरमा।
8: अच्छा जी मनोरमा, तो बहुत दिनों के बाद आज मिली है।
7: जी जी,
8: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरा से। मनोरमा जी, आपसे शिकायत है।
7: हाँ जी।
8: एक बार हमने फोन किया था तो आप गाना हमारा बजाई नहीं, है ना, बहुत इंतजार किया। उसके बाद आपके ये जो है आरती जी, उनके बाद उनका नंबर आया तो उनके ना, जब गाना का उनसे हम रिक्वेस्ट किए तो उनका तो बजाया हुआ गाना सुन लिए, लेकिन उनसे एक दिन पहले आपका कॉल हमने किया था, वो गाना नहीं बजा मेरा।
7: गाना तो बजेगा, वो सबका कॉल जिन लोग का छूटा हुआ है, वो बारी बारी सबका बजता है।
8: वो गाना था मेरा, वो कैसा तो गाना था लेकिन वो बजा नहीं है। आज गाना तो सुना था मैडम, वो पवन झकोरा मेरे संग गाए के गुनगुन गुनगुन हवा चले, लता का गाना है।
7: जी जी,
8: है ना, तो वो गाना अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना हमने रिक्वेस्ट किया था ना, बहुत अच्छा।

0: मतलब अलग अलग करके ही चलाते हैं लोग, अब एक साथ तो होगा नहीं।
1: और बताइए मनोरमा जी, कैसे खरीदे तो है ना?
0: जी जी सब बढ़िया है। और आप बताइए कि आप ठीक ठाक है ना?
1: हाँ हम तो ठीक हैं, पर अभी मौसम थोड़ा बेईमान हुआ था, आज मौसम थोड़ा सही हुआ है, कल भी सही हुआ था। दो दिन तो ऐसा हुआ था कि मतलब मार्केट जाना आना एकदम पूरा बंद हो गया था ना।
0: बारिश हो रहा था ना?
1: हाँ बारिश हो रहा था, तो आपके यहाँ नहीं हो रहा होगा? और गोपालगंज में कितना दूरी का फर्क है?
0: जी जी
1: आपसे हम ज्यादा दूर है, मीरगंज तो 16 किलोमीटर है।
0: जी
1: आपको गोपालगंज जो चौक जो है हॉस्पिटल का, वहाँ से आपका रेडियो स्टेशन 2 किलोमीटर पड़ेगा।
0: हाँ जी।
1: और मीरगंज से हम इधर 1 किलोमीटर, 16 और 3 कितना हो गया, 19 किलोमीटर का फर्क है आपके और मेरे बीच।
0: जी जी
1: हाँ तो बारिश तो सब सब तरफ हुआ था, लेकिन बहुत ठंडा भी लगा।
0: बारिश हो रहा था तो बीच में ठंडा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ठंड का मौसम आ गया।
1: हाँ तो हम तो एक रात तो ऐसे ही कपड़ा वपड़ा पहन के हम सोए, बहुत ठंड लग रहा था। क्या बताया जाए। और सब ठीक है मनोरमा जी?
0: हाँ जी सब बढ़िया।
1: तो जो मेरा गाना आया ना, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो है मेरा सुनाया कीजिए मैडम जी।
0: जी जी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपका गाना बजे।
1: आप पूछती है ना कि आप रेडियो में गाना कब से सुनते हैं, आप गाना गाते हैं या नहीं है, है ना? ऐसे आप बात पूछती है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना
0: जी।
1: कोई भी कंज्यूमर से आप जैसे बात करती है ना तो हमको अच्छा लगता है। तो उसमें कोई कोई अलग अलग और भी टॉपिक जो है ना जोड़ कर पूछा कीजिए, ताकि भारती जी भी समझे कि हाँ मनोरमा जी क्या बातें कर रही है, है ना? जैसे होता है ना लोग पूछते हैं खाना खाए हैं, मौसम कैसा है, यही लोग ना पूछते हैं ज्यादातर।
0: हाँ।
1: तो आप तो पूछते हैं कि आप गाना गाते हैं या कब से सुन रहे हैं, आपको ये रेडियो रिमझिम कैसे लग रहा है ना, इसका सभी प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसी का सवाल को लेकर के टॉपिक बनाइए, ताकि सारे आदमी से पूछे के लिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और भी जो भी सुनेगा तो लोग कहेंगे मनोरमा जी अच्छा अच्छा सवाल करती है, ऐसा ही बनाइए। चलिए तो मैडम बहुत बात हो गया, आप गाना हो सुनवा दीजिए, पवन झकोरा मेरा संग आए, गुनगुन गुनगुन हवा चले, लता जी का गाना है।
0: जी जी और डेडिकेट भी है?
1: डेडिकेट आप ही को नाम में रहेगा और किसी का नाम में नहीं रहेगा।
0: चलिए चलिए तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके कीजिए।

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: हेलो,
10: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
11: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
10: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
11: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं अभी फोन लगाते हुए मैम।
10: अच्छा जी,
11: जी मैम, आऊँ, वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम आपके यहाँ?
10: यहाँ पे मौसम बता दूँ आपको तो धूप निकला हुआ है।
11: जी जी जी मैम
10: जी, और आपकी तरफ?
11: जी मैम, अभी तो 2-3 दिन पहले अच्छा बारिश हुआ था, आज तो थोड़ा धूप कड़ाके का है मैम, लग रहा अभी तो गर्मी से चालू हो गई मैम।
10: जी
11: मैम,
10: तो सुनील जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?
11: जी फिल्म फूल और कांटे का, और गाने के बोला जिसे देख मेरा दिल धड़का, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेमझेम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
10: ओके सुनील जी, वैसे क्या कर रहे हैं अभी आप?
11: अभी तो मैम बस बैठे हैं रेडियो रेमझेम सुनते हुए मैम, और फोन लगा रहे थे, और इससे पहले मशीन चला रहे थे मैम। जी
10: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं आप?
11: जैसे भी मशीन चलाते हैं।
10: अच्छा जी, जैसी भी मशीन, चलिए बहुत बढ़िया।
11: जी जी जी, अभी तो खाली बैठे थे, हम सोचे अभी टाइम हो गया है तो अभी फोन लगाते, नहीं तो शो का रिकॉर्डिंग का टाइम समाप्त हो जाएगा तो फिर फोन नहीं लगेगा मैम, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अभी शो में जुड़े हैं मैम। बाकी बहुत अच्छा लगता है रेडियो रिंगिंग सुनते हैं, दोस्तों के फरमाई का अपनी फरमाई दोनों शामिल हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है।
10: जी चलिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
11: जी जी धन्यवाद।
10: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: ओके मैम, धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा
1: जी। बिल्कुल बता दीजिए।
0: अजूबा पिक्चर का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: और गाने के बोल,
0: तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया
1: जी। ये गाना आप गा के बताएंगे दो लाइन?
0: ये तो मैम थोड़ा याद नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं है।
0: हम ओम साइकिल पर बोल रहे हैं, बंजारी रोड पुलिस के सामने, गोपालगंज से राघो जी।
1: जी जी राघो जी, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से आशीर्वाद चल रहा है।
1: जी जी, बहुत लेट से फोन
0: किया। कॉल 365 कॉल लगा दिए हैं एक साल का।
1: अच्छा।
0: सोचे कि आज बात नहीं हो पाएगी।
1: नहीं नहीं, देखिए बात हो गया ना, लेट से हुआ लेकिन हुआ।
0: एक दो कस्टमर भी छूट गए हैं फोन लगाने के चक्कर में।
1: अच्छा,
0: क्या बताएं, एक रेडियो रिम्यू से ऐसा में जुड़ा है कि
1: जी जी, वो क्या ना, हम लोग को भी आदत हो गई आप लोगों से बातें करके।
0: अब
1: कॉल नहीं आता है तो लगता है कि हाँ नहीं किया।
0: आइए कभी हमारे शॉप।
1: जी बिल्कुल आएंगे,
0: आप लोग का स्वागत है।
1: जी जी जरूर आएंगे लो, जब आपने बोल दिया तो जरूर आएंगे लो हम लोग। तो फिर चलिए इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। और डेडिकेट भी करना चाहेंगे
0: पहले तो आपको और मैम को और जितना रेडियो रिमझिम दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नाम रखने में ना कोई आदमी नाराज होते हैं, हमारा नाम नहीं रखते हैं, उनका नाम रखते हैं, इसकी वजह से सब आ रही है, सब आदमी को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी जी चलिए, तो इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले चलेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: हम थाना से बोल रहे हैं, रमा जी प्रसाद
14: जी। जी, क्या हाल चल रहा है?
13: हाल चाल ठीक बा, भगवान जरा वो दिन बना रहे, काल से आज बहुत बढ़िया दिन भज बा।
14: हाँ हाँ, दिन तो बहुत ही अच्छा भज बा।
13: तो जाना सुने बा,
14: बता दी
13: चटन मार डाली घींच के टमाटा, किसी किसी हंसा लगा प्रिंकिया का साथ।
14: हाँ हाँ, गाना तो बहुत ही अच्छा बाजी। और ये गाना कैसे सुनाए के चाहते नहीं?
13: शाली सुनिए, सुशीला देवी, सरल सुनिए, गीता देवी, रीता देवी, हम सुने, रोबा सुने, जितना रेडियो रिमझिम सुनते सब कुछ सुने।
14: चलिए तो रोबा ठीक बने न?
13: हाँ हम ठीक बने, सब भगवान का दया बा।
14: जी जी, चलिए तो बढ़िया बात है। और गाना सब प्ले करते
13: हैं। अपन नाम बता दी
14: जी? हमारा नाम मनोरमा।
13: चलिए ठीक बात, नमस्कार
14: जी।

0: हेलो मुन्ना जी प्रणाम।
1: जी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत बार रेडियो रिंकी 90.4 FM में। जी ठीक बानी, अपन बताए।
0: ठीक है बानी, सोचा नहीं दो दो मिनट बाद तो फोन लगाई, लागत है कि नहीं लागत।
1: अच्छा और देखी किस्मत लग गई ना
0: लगावे के सुना रहा, लेकिन मानत नहीं के दिलवे नहीं के मानत।
1: अच्छा तो काहे नहीं लगावे के मन करत, का हो गई बा
0: ऐसो ही? अच्छा
1: वो तो बराबर करत रहनी है, अभी बीच में ऐसा का हो गई बा जे फोन करे के मन नहीं करत रहुआ के।
0: पता ना दिन हिम से का हो गई बा,
1: पहले खाली दिल लगाई अच्छा लगी थी।
0: वे तो आदमी कोशिश कर नहीं कर, लेकिन फिर दिल ना मानल तो कहीं चार मिनट बाकी रहो तो कहीं रुको तनी करी लागत है कि ना भैया तक लास्ट कॉल बा। और सुनाई
1: और सब तो ठीक बा? रहो ठीक बानी
0: ना? ठीक है बानी, आज छुट्टी बानी। छुट्टी बा तो कहनी की फोन कर दी ना तो खानो ना खाई।
1: अच्छा
0: बहुत भीड़ चलत है गरीब में।
1: हाँ ना ना
0: यही से हम सोचे तनी की अब ज्यादा भीड़ होते तो भीड़ में ज्यादा धपियावला के जरूरी नहीं है। टेंशन फ्री रहे।
1: अच्छा बात नहीं के रहो, फरमाइश करी रहो पूरा करे।
0: तो अनु दुबे के बाद तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
1: जी जाना तो बहुत ही अच्छा बा।
0: तो तनी बजा देम।
1: जी बिल्कुल,
0: ये रिक्वेस्ट बारे रौड़ा के कार्तिक जी के और जितना हमारे नाम से जाने वाला है सबके, हम दानेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले कर देना और
0: गाना इंतजार है। चलिए चलिए फिर ठीक है।
1: चलिए ठीक है, तो प्ले कर देना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: हाँ जी, बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी वालेकुम अस्सलाम,
8: मैं हैदराबाद कर रही हूँ सूरत से।
9: जी जी, कैसी हैं आप?
8: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
9: जी मेरा भी बढ़िया।
8: नाश्ता पानी सब हो गया है ना?
9: हाँ जी हो गया, और आपका हुआ?
8: जी मेरा भी हो गया है, और रेडियो रिमझिम का पूरा टीम अच्छा है ना?
9: जी जी, सबको बढ़िया।
8: अरे अच्छी है,
9: बढ़िया है। तो जी ऐसा लगता है आपसे मुझे पहली बार बात हो रही है।
8: हाँ लग तो रहा है पहली बार बात हो रही है, लेकिन हम तो कॉल किए हैं, पहले ज्यादा कॉल करते थे लेकिन अभी कुछ समय से मतलब शादी जब से हुआ तो हम जरा कम कर दिए हैं।
9: अच्छा जी।
8: हाँ, तो अब थोड़ा बहुत ये 3-4 बार हो गया है लगातार हमको कॉल किए हुए।
9: अच्छा जी, तो इससे पहले भारती जी से बात हुई होगी?
8: हाँ, वो एक महीना से लगातार हम 4 बार कॉल किए हैं।
9: अच्छा,
8: 4 बार में 2 ही बार अपना सॉन्ग सुने हैं, 2 बार नहीं सुने।
9: तो जो रिकॉर्डिंग कराई होंगी तो जरूर बजा होगा।
8: बजा होगा लेकिन हम ना नहीं सुन पाए हैं, मतलब बजा नहीं है, मतलब हम रेडियो नहीं सुन पाए हैं। सॉन्ग तो बजा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बजा होगा। एक बार नहीं बैठा है तो दोबारा कोई सुन लेता है, दोबारा ऑप्शन मिलता है सुनने को सुबह में।
9: हाँ, सुबह में
8: नहीं, 9 से 10 के बीच।
9: 9 से 10 के बीच? हाँ, शायद
8: 9 से 10 बजे तक होता है और 11 से 10 के बाद 11 चलता है SMS फरमाइश, उसके बाद ये वाला चलता है।
9: जी जी।
8: तो आज सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम।
9: जी, तो ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
8: ये मैं दूसरा गाना गा सकते हैं, ये सॉन्ग है हमको दीवाना कर गए मूवी का, मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम, दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं।
9: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है।
8: तो आप कहिएगा तो दूसरा सॉन्ग आपको सुना सकते हैं।
9: जी बिल्कुल, सुना दीजिए।

0: इतना ही में
1: जी, आप तो बहुत ही अच्छा गाती हैं
0: जी। थैंक यू। आगे लाइन, आगे का लाइन भूल गई इसीलिए नहीं सुना पाए।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: बात करेंगे तो सुना देंगे।
1: जी जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा गा रही थी आपने।
0: थोड़ा बहुत गा लेते हैं।
1: जी जी बहुत ही अच्छा। और जो गाना बताई है वो गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
0: जी जी, आपको और नासबेन जी को और कुछ रेडियो दोस्त हैं, रहीना जी हैं, सफार जी हैं, सलेहा जी हैं, सजा है, ब्यूटी फरवीन, रोमीना नाज, अख्तरी जी और रानी जी और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, दिलीप राम दिल्ली से, और वीरेंद्र गुप्ता और समीर भाई और जितने जाने पहचानने वाले हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
12: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
11: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
12: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
11: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
12: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
11: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
12: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
16: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
9: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
16: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
9: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
17: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
17: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
17: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
17: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
17: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
17: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
11: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
17: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
11: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
17: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
18: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
19: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
17: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा।

0: सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम।
3: सुनो दिल।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: के लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और तब तक आप लोग अपना फरमाइश भेजिए, तब तक आप लोग मेरे पसंद की फरमाइश को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं ये मेरे तरफ से प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि बताइए लोग कि कैसा लगा है मेरे तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, यार यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिखे हैं भारती जी, गुड आफ्टरनून, मैं मनीष राजाक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती जी, मैं नए पारा भी रही से, और मुझे भी गीत सुनना चाहते हैं, और मेरा नाम बसंत कुमार ठाकुर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और आपके गाने को भी हम फरमाइश को भी हम पूरी करेंगे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है, मैं कमलेश जी डीलर सौव्या फील्ड से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मेरे प्रिय आरजे मनोरमा जी, ओपनिंग करने के लिए आपका स्वागत है, ऐसे ही लगे रहिए। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, तुझे देखकर ये जहां रंगीन नज़र आता है, तुझे देखकर ये जहां रंगीन नज़र आता है, तेरे बिना दिल को चैन कहां आता है, तू ही है मेरे इस दिल की धड़कन, तेरे बिना ये जहां बेकार नज़र आता है। और बहुत ही बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं,

बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है कि मेरा नाम अफरीन सभ्य है और घर धामा पाकड़ है और मेरा भी गाना का नाम मेरा भी गाना है बजा दीजिएगा। और गाने के बोल है तो हर बगिया के रहनी सुगनिया और बेहद ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में

0: परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72776 16 65। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हैं।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, चलिए इंतजार खत्म हुआ, मनोरमा मैम नमस्ते कैसी हैं, और मैसेज करने वाले हैं। एमडी सिद्धार्थ पासवान जी बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, मेरा तो गाना कल बजा था, आज नहीं बजेगा, फिर भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है, हाय मैम, महेश पासवान गिरधी झारखंड सारे ऐसे, और बोल रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, रानी मुखर्जी को प्यार भरा नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी, और आपने तो मेरा नाम ही रख दिया है रानी मुखर्जी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा आवाज़ रानी मुखर्जी की तरह। तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, जी मेरा भी गाना सुना दीजिएगा, और मैं मिथुन शर्मा बेंगलोर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं मैडम जी। और लिख रहे हैं कि मैं प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी हाजिरी लग चुका है। और जो कि लिख रहे हैं, आज मुझे एक सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, हाय मैं कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से, मुझे भी सॉन्ग सुनना है फिल्म जान मूवी से, और सॉन्ग सुनना है कैसे प्यार करेंगे। तो चलिए कमलेश जी, आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग। तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और

और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम जी गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं कमलेश जी सभ्य फिर से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पिट्टू भाई, मैं मीना बाजार से, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैडम जी नमस्कार, रहीम आलम बेंगलोर HS मॉडर्न लेडीज टेलर से, और सुरेश कुमार जम्मू कश्मीर से, विकी कुमार बिहार मोतिहारी, योगेश कुमार रसिया तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवर हिमाचल प्रदेश से, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि लिख रहे हैं मैडम जी गाना बजा दीजिएगा तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम, आई एम आफ्ताब आलम फॉर्म साके खास, जो कि लिख रहे हैं हाय मैम मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिए। तो चलिए आफ्ताब जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे प्यारा सा सॉन्ग।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हां कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।

तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो नमस्ते मैम जी, और मैसेज करने वाले हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और प्लीज़ आप नाम अपना मेंशन करिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण से जुड़ गए और हम भी जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना चल रहा दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, आपका पसंद लाजवाब है, और मैसेज करने वाले हैं अपना नाम मेंशन नहीं किया तो प्लीज़ आप नाम अपना मेंशन करिए, और लिख रहे हैं कि सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार हम रेडियो रिमझिम मैं जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मैं हर MP से सुनील कुशवाहा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, हेलो हाय मैम, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं मैडम जी। और मैं प्रीति रहदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए प्रीति जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंचिंग 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ जो कि

हाय मैम, रहीम आलम। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है। जो कि लिख रहे हैं जय किशोर प्रसाद जी, हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी। तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्ते, हम रवि कुमार तिवारी, सॉरी लिख रहे रवि कुमार और दिल्ली से, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवार हिमाचल प्रदेश से। और मैडम जी गाना बजा दीजिए। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं भूल जाए तुमको कोई इरादा नहीं है, भूल जाए तुमको कोई इरादा नहीं है, तेरे सिवा किसी और से वादा नहीं है, निकाल देते दिल से शायद तुमको मगर इस नादान दिल में दरवाज़ा नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं नमस्कार सलाम अलैकुम भारती में। और जो कि लिख रहे हैं कुवैत जोहर आलम, बस मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि गाने के बोल है गोरी है कलैया। चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे

जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए और सुनाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है मैम, नाम बता दीजिए अपना। तो मैं बता दूँ आपको, मेरा नाम मनोरमा, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हेलो मनोरमा दीदी, नमस्ते, मेरा नाम रानी कुमारी और मेरा घर है हरखुआ। कैसी हैं आप बताइए ज़रूर। मेरे तरफ से सारे रेडियो दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है रानी जी आपका भी। और लिख रहे हैं कि सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, जो कि लिख रहे हैं, देख मेरी आँखों में ख्वाब किसके हैं, देख मेरी आँखों में ख्वाब किसके हैं, दिल में मेरे सुलगते तूफान किसके हैं, नहीं गुजरा कोई आज तक इस रास्ते से होकर, फिर ये कदमों से निशान किसका है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली, सारी गली उनके पीछे निकली। इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से, और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब से निकली। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग भारती दीदी कहाँ बानी। तो भारती दीदी भी अपन काम में लागल बानी। और मैसेज करने वाले हैं गणेश जी पिपरा नारायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे हम मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, हाय। और मैसेज करने वाले हैं शंकर सिंह जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हैं जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी चौवन से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्कार, रहीम आलम बेंगलोर मॉडर्न टेलर लेडीज टेलर से, और सुरेश कुमार जम्मू कश्मीर से, बिक्की कुमार बिहार मोतिहारी, और योगेश कुमार, और लिख रहे हैं कि एमडी मीनू बेंगलोर से, दिलीप कुमार मोतिहारी से, और मेरा भी गाना सुना दीजिए। और गाने के बोल हैं रूठ के उस भूल जाने लगे। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं रहीम जी, और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया रहीम जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय हेलो डियर मनोरमा जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जो कि लिख रहा है ज़बरदस्त ओपनिंग सॉन्ग जितेंद्र बरौली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी हाजिरी लग चुका है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है विक्रम यादव गोपालगंज से, हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैडम जी, मुझे भी गाना सुनना है तो प्लीज़ सुना दीजिएगा। और गाना सुनाना चाहते हैं अनिल भाई, दिलीप राम, प्रमुख भैया, मुकेश यादव और मुझे पहचानने वाले सभी को। मैडम जी गाना बजा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं मैडम जी। और जो कि लिख रहे हैं मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी दरगाह, डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू सो मच मैडम जी गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है और लिख रहे हैं कि नहीं बता रही हैं कि मेरा फरमाइश बजेगा कि नहीं, तो ज़रूर बजेगा, आप अपनी फरमाइश भेज दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं मनीष राजा फाजिल नगर से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो दीदी नमस्ते, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, सोनी बर्नवाल देवरिया से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिर लग चुकी। और जो कि लिख रहे हैं हमको भी गाना सुनना है तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची।

से कुछ दिया जो लिख रहा है, राधे राधे मैडम जी, मैं देवराज कुमार रेशम नगर भगाया से और आज के प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हेलो दीदी नमस्ते, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और मेरे गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग। और गाने के बोल है हमको हमें से चुरा लो, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू दी गाना बजाने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं विषय क्षमा प्रार्थना पत्र, जो कि हाय न्यायमूर्ति देवी मनोरमा मैम जी, मेरी गलतियों को मेरे सामने प्रकट करें ताकि मैं माफ़ी मांग सकूं। हाँ, आप माफ़ कर सकती हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यह भी सुना है कि माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा माफ़ी मांगने वाले से भी ज़्यादा जो कि लिख रहे हैं माफ़ी मांगने वाला से ज़्यादा अच्छा इंसान माफ़ करने वाला होता है। और लिख रहे हैं कि और उसके बाद मेरे फरमाइश किए हुए गाने में जो भी त्रुटि रुकावट आ रही है उसे आगे निरंतर बढ़ाया जा सके। और मैसेज करने वाले सोनी सोदी और अपिया से, तो चलिए कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है और इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं क्या सुपर सॉन्ग चलाया मनोरमा जी, आपको धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि नया पारा धीरई जिला बलोच छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, सर रज ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी हाजिर लग चुका है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम कैसे हो आप, अहमद अली सरे अवार्ड नंबर 1 से गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि तनी हमरो मैसेज पर ध्यान दी मैम, तो जी सबके मैसेज पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि मैं भोला कुमार बेतिया जिला से बोल रहा हूँ, और लिख रहे हैं कि दुर्गा जी के मंदिर से आप मेरी एक गाना बजा दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप भक्ति गाने की फरमाइश नहीं होती, आप कोई दूसरा गाना बताइए, मैं जरूर बजाऊंगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं विक्रम यादव गोपालगंज से, जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैडम जी, मुझे भी गाना सुनना है और गाने के बोल हैं साम है धुआं धुआं, और बहुत ही बेहद गाना है और जो कि डेडिकेट करना चाहते हैं दिलीप राम प्रमुख भैया और मुकेश यादव और मुझे पहचानने वाले सभी को। तो चलिए विराट जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: क्यों बनाते हो तुम रेत के ये महल?
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:19 हो गए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, जो कि लिख रहा है, मैडम जी गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद। मैडम जी मेरा नाम विराट यादव है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो दीदी गुड आफ्टरनून, मैं करिश्मा कुमारी पीपरा नारायण से। और लिख रहे हैं का हलवा मनोरमा दीदी, रानी दीदी नमस्ते, रेशमा दीदी के भी नमस्ते बा, गणेश जी के भी नमस्ते बा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पीपरा नारायण से, जो कि लिख रहे हैं बहुत ही अच्छा शो चल रहा है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा दीदी आप कैसे हैं, मुझे भी सॉन्ग सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि आप मेरे मैसेज नहीं देख रही हैं मनोरमा दीदी, क्या बात है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबके मैसेज को देख रहे हैं और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि जब आप मेरा सॉन्ग और लिख रहे हैं कि आप जब मेरा सॉन्ग बजाइएगा तो मैसेज डाल दीजिएगा तो जी ज़रूर। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि अब तो बजा दीजिए मनोरमा दीदी,

और मैसेज करने वाले हैं मनीष राजा फाजिल नगर से। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट करिए लो। बारी बारी सबके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मोहब्बत के खर्चों में बड़ी लंबी कहानी है, मोहब्बत के खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी फिल्म दिखानी है तो कभी शॉपिंग करानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे कि मुझे छुरी पटानी है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैं भोला कुमार बेतिया जिला से बोल रहा हूँ और मेरा भी गाना बजा दीजिए जो कि। और लिख रहे हैं कि खेसारी लाल की आवाज़ में है तो प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: कर शिकार कि जंगल में रात खेले पड़ी लगता रे खुनरे के होली पाप को के हाथ लागे गंगा जी में धोली।
1: अरे घरे गुंडा बनल बड़े
2: छोड़ा दो
1: छोड़ा दे।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4
2: आमज़। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

हमारे यहाँ पे मैसेज पहुँचिया जो कि लिख रहा है मोतिहारी से, एमडी मीनू मैडम जी एक घंटा हो गया मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा नमस्ते मैडम जी, मैं मुकेश खरवरा हिमाचल प्रदेश से और मेरा भी गाना बजा दीजिए जो कि लिंक के माध्यम से है। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट करिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरे राज बाबा के नगरी से और भारती जी गुड आफ्टरनून मैम एक गाना सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और आप लिख रहे हैं कि मेरा एक और जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी हमारा गाना और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी हमारा गाना के तिजोरी में बंद के लिए वानी का तो ना ऐसा बात नहीं है और गाना के भी हम प्ले करें। और लिख रहे हैं डेडिकेट है खेसारी भोला जी के और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। और मैसेज करने वाले सोनू सऊदी अरबिया से, तो सबके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्कार मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले लिख रहे हैं कि मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा पता हनुमान खेत बरू पूर्व सागर और मुझे गाना सुनना है धड़कन मूवी का। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्कार मेरा गाना बजा दीजिए। तो चलिए विनोद जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि गाने के बोले तुम दिल की धड़कन में। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 95.4 FM।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और मैसेज पोस्ट किया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहे हैं कि सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, और बोलेंगे दीदी दीदी बोल दीजिएगा करिश्मा जी को नमस्ते मेरे तरफ से और बताइए वो कैसी हैं, और लिख रहे कि बड़ा नीक भोजपुरी सॉन्ग बा। और मैसेज करने वाली हैं रानी जी हरकुआ से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम नमस्ते प्रणाम राजू सोनी हारपुर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हाय हेलो नमस्ते अजीत कुमार निषाद मैं यूपी देवरिया पटनी से, मेरा भी एक फरमाइश है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम मैं आजमगढ़ जिला से संजय प्रजापति बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी ठीक हूँ और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि मैं रेडियो रिमझिम में पहली बार जुड़ा हूँ और मुझे एक गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रही हैं बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं करिश्मा जी, और जो कि लिख रही हैं फूल में गुलाब नशे में शराब प्रोग्राम में ताली मजाक में साली धातु में सोना दुख में रोना प्यार में गम और आपके दिल में हम, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं करिश्मा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो मनोरमा जी कैसी हैं आप, और मैं भी सोच से जुड़ गया हूँ मैं रोहित देहरादून से, और लिख रहे हैं गम के समंदर में डूब मत जाना किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना जिंदगी के सफर में महसूस होगा कभी अकेलापन तो मैं अभी जिंदा हूँ भूल मत जाना। और बहुत ही अच्छी लाइन मतलब बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी आलमराज बिहार मोतिहारी जिला से, और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, तो चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और गाने के बोले तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे अल्फराजा के गाना है, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: युवा संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है, थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हाय बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, और लिख रहा है कि बहुत ही अच्छा गीत चल रहा है, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर सिंह जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मनोरमा जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि दशहरा पूजा आने वाला है, ऐसे करिए ना कि भक्ति सॉन्ग का गाना सर से रिक्वेस्ट ले लीजिए, आप डायरेक्टर सर से आदेश ले लीजिए, और प्लीज़ दीदी मेरे मैसेज को डायरेक्टर सर के पास पहुंचाइए प्लीज़ मनोरमा जी। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार त्रिपुरा नारायण से, तो मैं बता दूं कि आपको हमारे डायरेक्टर सर से ही बात करना पड़ेगा इस विषय में। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो नमस्ते नमस्कार क्या हाल चाल है। और मैसेज करने वाले हैं मनीष जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल चाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, और लिख रहे हैं कि आपको और सभी आरजे को।

सोच रहे हैं कि आज मुझे भी गाना सुनना है, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और लिख रहे हैं कि, और मैसेज करने वाले हैं दीपक चौहान फ्रॉम सूरत से, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे दीपक जी, बस कुछ देर और वेट कीजिए। और इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, मैं मुकेश हरवाल हिमाचल प्रदेश से, और मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रेंज 90.4 FM पे, प्यारा सा सॉन्ग। और गाने के बोले जीता था जिसके लिए।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं मुकेश खरवर हिमाचल प्रदेश से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हम उबानी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है आपने हमें पहचान लिए धन्यवाद जी। और मैसेज करने वाले हैं मनीष जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम कैसे हो, हम अहमद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से, और गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा। और लिख रहे कि मेरा गाना कब बजेगा, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं हम भी जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम में, और हमें भी एक गाना सुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और प्लीज़ आप नाम मेंशन करिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा दीदी अभी तक हमारी फरमाइश को पूरी नहीं किए, कब तक इंतजार कर रहे हैं। और मैसेज करने वाला नायपारा धीरई जिला बलोच छत्तीसगढ़ से, बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, इसे पप्पू ठाकुर, और ये गाना सुनना चाहते हैं जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है चूड़ी मजाना देगी। और फरमाइश करता बसंत ठाकुर, सरोज कुमार ठाकुर, इसे ठाकुर, राजू ठाकुर और प्राची के साथ। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रेंज 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल था चूड़ी मजा ना देगी कंगन ना मजा देगा। और यहाँ पे मैं

0: पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा दीदी, आपने हमारे सॉन्ग को प्ले कर किए हैं। जो कि लिख रहे हैं नए पारा भी रही से बसंत कुमार ठाकुर, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी को, मेरे तरफ से नमस्ते बा। और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हेलो जी, मैं भी जुड़ गया हूँ अरसाद लुधियाना पंजाब से। और जो कि लिख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। जो कि लिख रहे हैं भोजपुरी में अर्ज कैले वानी, लिख रहे हैं कि बोतल में पानी भरला से कबो दारू ना होई, बोतल में पानी भरला से कबो दारू ना होई, कि बोतल में पानी भरला से कबो दारू ना होई। और एगो लड़की के चलते तू दोस्त छोड़ला, बाबू ध्यान रहे वो कबो तुहार मेहरारू ना हो। और मैसेज करने वाले हैं अरसाद जी लुधियाना पंजाब से, जो कि लिख रहे हैं मेरा भी हाल, मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं अब तो बजा दीजिए मनोरमा जी, मेरा मैसेज जल्दी देखती नहीं है। तो ऐसा नहीं है सबके मैसेज को हम देखते हैं, लेकिन बारी बारी सबका गाने को हम प्ले करेंगे। तो चलिए मैसेज करने वाले हैं मनीष अजाक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम पे ये सॉन्ग।
1: पत्थर की रे

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
6: इसी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं मनीष रजाक फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं हमार फरमाइश नहीं चलेगा मैडम जी क्या, तो जरूर चलेगा, ऐसा नहीं है, सबके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं करिश्मा जी नमस्ते कैसे हैं आप। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत शो चल रहा है मैडम जी, और तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि काम में मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, तो सबके गाने को हम प्ले करेंगे और दोपहर नहीं उसके बाद, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, तो प्लीज़ गुजर नहीं हुई गालो, आप सभी के गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण से मेरा भी गाना बजा दीजिए। और लिख रहे हैं कि मनोरमा जी हमारे गाना का तिजोरी में रख दिले वानी क्या था ना, बिल्कुल ना, चली रहा गाना के हम प्ले करता नहीं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि डेडिकेट तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं, प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंजन 90.4 FM के लिए प्यारा सा सॉन्ग।

0: 26 India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा

0: करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवोभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशियंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान

0: के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
4: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
3: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
4: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देशभर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
7: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
14: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
15: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
16: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
17: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
16: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
19: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
20: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
19: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
20: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
19: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
21: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
22: रेडियो रिमझिम।
21: सुनो दिल

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप राम जी की तरफ से यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। बहुत बहुत स्वागत है, पर अब मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती क्योंकि मंडे के दिन आपके गाने को मैंने प्ले किया था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, का हाल बा, खाना कहाँ भाग जाता नहीं रहुआ। और मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हम कहीं भागे नहीं हैं, हम भी यहीं पर हैं, और मेरा भी हाल ठीक है। आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ये मोबाइल कंपनी वाले रिचार्ज ख़त्म होने के 5 दिन पहले ही ऐसे हड़बड़ाने लगते हैं जैसे यदि मैंने टाइम पर रिचार्ज ना कराया तो उनकी कंपनी डूब जाएगी। भारती जी नमस्कार। और रोहित देहरादून से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैडम जी मैं जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से गाना सुनना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं कि मैसेज पहुंचा हुआ है और लिख रहे हैं कि मैं रेडियो रूम जिम से पहली बार जुड़ रहा हूं और मुझे गाना सुनना है धड़कन फिल्म से, और यहां काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और गाने की बोल है दिल ने ये कहा है दिल से, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना धड़कन मूवी से, दिल ने ये कहा है दिल से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, और लिख रहे हैं कि हाय मैम मुझे भी गाना सुनना है, मैं लिंक भेज देता हूं। और बबलू जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ पंजाब से, गोविंद कुमार, और मुझे भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैम, हमारा गाना नहीं चलेगा क्या, चला दीजिए प्लीज़, और हरियाणा सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके गाने को मैं कल प्ले करूँगी क्योंकि कल आपके गाने की बारी है और एक दिन तो सब्र कर ही सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है और प्रदीप सहानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं और इनकी तरफ से गाने की बोल पहुंची हुई है, इतिहास मूवी का गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल है दिल की कलम से और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:06 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं प्रदीप सहानी दिल्ली से, थैंक्स गाना बजाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि जिधर जाओ बेबी के ही किस्से हैं, कोई ला के रो रहा है, कोई लाने के लिए रो रहा है। और मैसेज करने वाले हैं देहरादून से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं पाजी UP 54 से कि क्यों कोई मेरा इंतजार करेगा, अपनी ज़िंदगी मेरे लिए बेकार करेगा, हम कौन सा किसी के लिए खास हैं, क्या सोच कर कोई हमें याद करेगा। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है, और बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, नमस्कार, राधे राधे जी, मुझे भी एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और सुजीत कुमार प्रेमनगर पस्त्रा राजा लालगंज मिर्जापुर UP 63 से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश मैं कल पूरा करूंगी, क्योंकि कल आपका दिन है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, बहुत सुंदर सॉन्ग बज रहा है। और विजय कुमार मैसेज करने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम जी मेरा गाना बजेगा कि नहीं। तो जी बिल्कुल आपका गाना बजेगा। और जितेंद्र धाकड़ जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, 12:12 का मैसेज किए हुए हैं, अभी तक गाना प्ले नहीं हुआ है। और लिख रहे हैं कि मेरी फरमाइश टाइम देख लीजिए, दोनों आरजे को बोल रहा हूँ और प्लीज़ पूरा कर दीजिए। और दीपक चौहान फ्रॉम सूरत से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, चलिए बिना देरी की आपके गाने की फरमाइश को पूरा करते हैं। और गाना है आज फिर तुम पे प्यार आया है, और सिंगर है अरिजीत सिंह। तो गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, आज फिर तुम पे प्यार आया है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स भारती मैडम जी गाना प्ले करने के लिए। और दीपक चौहान जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रवि जी की, सुरेश कल मेरे घर लुटेरे घुस आए, नरेश फिर क्या हुआ, सुरेश वो चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, मैंने कह दिया किसी भी कमरे में सो जाओ, फिर उन्होंने मुझे जमकर कूटा। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है रवि जी की तरफ से, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सॉन्ग है और मुझे भी गाना सुनना है, जितेंद्र धाकड़ जुड़े हुए हैं, तो जी बिल्कुल आपके गाने को प्ले करूंगी। पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सिर्फ शादी ही एक ऐसी दुर्घटना है कि चोट लगने से पहले आपको हल्दी लगा दी जाती है, और क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, और आपकी बात भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जावेद धनबाद से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, हम मस्कट ओमान से, आप कैसे हैं, और हमें आपके तरफ से एक हिंदी गाना सुनना चाहते हैं जो कि गाना है, और कृपया करके आज ये गाना प्ले कर दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है। और जी आपके गाने को प्ले करूँगी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। और यहाँ पर अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, पल्लव भैया लव गुरु जी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है, जिसका लिंक भेज रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, और आपके गाने को मैं मंडे को प्ले की थी इसीलिए आज प्ले नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे भारती जी मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, लिंक भेज दिए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मंडे को आपके गाने को प्ले किए थे, फिर आज मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि आज गुरुवार है। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास अगले गाने की जो फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि गाना सुनना चाहते हैं,

और महेश पासवान झारखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज कर रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है, और हमारा गाना आज नहीं बजेगा क्या? तो जी बिल्कुल, आज आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा, और इनकी गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँच हुई है। और गाने की बोल है मच्छरदनिया ए राजा, और माही श्रीवास्तव सृष्टि भारती का गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं मैसेज करने वाले धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और काफ़ी मज़ेदार जोक पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं कि घर के बाहर पति काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। पति: अरे और कितनी देर लगाओगी? पत्नी: चिल्ला क्यों रहे हो, आधे घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या? और काफ़ी मज़ेदार लाइन है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं: भारती मैम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हम

हमने भी मैसेज कर दिया और गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से जुड़े हुए हैं किशोर सबलानिया, सवित्री सबलानिया, सुमन सबलानिया, बेटी अंशु रानी के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं जितेंद्र धाकड़, जुड़े हुए हैं और गुना जिला से और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है। वो हसीना और गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना ओ हंसनी, और मैसेज करने वाले थे जो कि इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है जितेंद्र धाकड़ जी की तरफ से, और लिख रहे हैं थैंक यू मैम जी मेरा गाना बजाने के लिए। और यह मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि पड़ोस के दादी के पास बैठ के हंस कर हाल चाल पूछ रहा था, किसी ने फोटो खींच कर डाल दिया, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, बड़े नीच आदमी हैं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है रोहित जी की तरफ से, और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं, और बबलू जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है और इनकी तरफ से जो गाने की लिंक पहुंची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, जिसे तो ये लिंक आपका प्ले नहीं हो रहा है, अगर आप कुछ गाने की बोल लिख के भेज दें और लिंक बढ़िया सा भेज दें तो मैं आपके गाने को प्ले कर दूंगी। और इसी के साथ यहाँ पे जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, मस्कट ओमान से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, पीले पीले ओ मेरी जानी, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और यहाँ हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:36 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हमारा गाना नहीं चला जी, प्लीज़ इससे। और इससे पहले शुक्रवार को गाना हमारा चला, अब तो चला दीजिए, जशवंत कुशवाहा हरियाणा से। तो जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते बाद सबकी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाता है, और कल आपका एक हफ्ता पूरा हो रहा है, तो मैं आपको गाने को कल बजाऊंगी। और आज जो गुरुवार के दिन का गाना है, अभी काफ़ी सारा फरमाइश मेरे पास बचा हुआ है और टाइम भी कम है, तो इन लोगों की तो फरमाइश को भी तो पूरा करना ज़रूरी है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ था, पर अभी जस्ट कॉल कट हो गया, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, पति अजी सुनते हो, हमारी शादी करवाने वाले पंडित जी का देहांत हो गया, पति एक ना एक दिन तो उसे अब उसके कर्मों का फल मिलना ही था। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल चाल है? तो जी मेरा हाल ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: आपका भी स्वागत है मैम
6: जी। नाम बता दीजिएगा अपना।
7: और
6: क्या आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ते हैं?
7: जी जुड़ते हैं।
6: तो मैं आपको बता दूं, या तो आप व्हाट्सएप से या तो कॉल के माध्यम से इसमें अपने गाने की फरमाइश करें, क्योंकि कुछ ही एक दो दिन पहले ही मैंने आपके गाने को प्ले किया था व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं आज आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती हूँ। जी जी, एक हफ्ते में एक बार ही अपने गाने को सुन सकते हैं आप इस शो में। जी जी, मेरा सब ठीक है।
7: बाढ़ के
6: जी, इधर तो बाढ़ चरम सीमा पे है। जी जी अभी मुझे कॉल कट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे गाने प्ले करना है। जी और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं जो कि मैसेज करने वाले हैं गोविंद कुमार पंजाब से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं बादल फिल्म का कोई सा भी गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए बादल मूवी का आज आपके लिए गाना प्ले करती हूँ और गाने की बोल है तुझे देख के दिल मेरा डोले। तो चलिए बिना देरी के गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

गाना सुन रहे थे बादल मूवी से तुझे देख के दिल मेरा डोले। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है गोविंद जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना बजाने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पीले पीले वो मेरी जानी मेरा गाना नहीं बजा। तो जी आप किसी भी हमारे लिसनर से पूछिए, अभी एक गाने इस गाने से पहले मैंने इसी गाने को प्ले किया था और आपने कैसे नहीं सुना, अब ये आप ही बताएंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमेशा दो बातें याद रखना, पहले हर इंसान बुरा नहीं होता जितना पैन कार्ड और आधार कार्ड में दिखता है, दूसरा बात इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखता है। और रोहित जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है शमशेर मुंबई से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि अहमद अली सारे अवार्ड नंबर 1 से जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से मैसेज किए हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनका आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। पर यहाँ एक पहले मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मोतिहारी से एमडी मीनू, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल है खाई के पान बनारस वाला, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुली जाए बंद अकल का

दिखी गोरी गोरी उठी की दिखी छोरी बाबा कैसी गोरी गोरी बोटी की दिखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपरहिट प्रोग्राम चल रहा है रेडियो रमजिम पर, और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकड़ जी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि इन आंखों में जब तेरी दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो लेकिन तैयार हो जाता है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए लिख रहे हैं, मुगले आजम मूवी का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिएगा, और मेरा नाम मोहम्मद। नजावल अंसारी मुंबई से, और मैं काम करते हैं और बंका जिला का मैं रहने वाला हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जिंदगी में आपकी अहमियत बता नहीं सकते, दिल में आपकी जगह दिखा नहीं सकते, कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं इससे ज़्यादा आपको समझा नहीं सकते। और लिख रहे हैं कि आप पे गुस्सा बहुत दिनों से आ रहा है मैम जी, सच बता रहा हूँ। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से, तो ये भी बता दीजिए कि गुस्सा आपको किस बात पे आ रहा है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मेरा गाना कब चलेगा, पूजा सोनी स्वान से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए प्ले करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
9: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली सरिया वार्ड नंबर 1 से। कैसी हैं मैम? हम लोग तो अच्छे हैं, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, मेरा तो वॉइस का टाइम हो गया है, इसलिए कृपया करके बजा दीजिएगा। गाने का बोल है, मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला जैसे मिलती है चंदा से चांदनी। और सुनाना है सबसे पहले आपको राघव जी को, कमरान भाई को, दिलीप भाई को, अख्तरी को, और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को। ओके मैम, बाय।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफी बेहद खूबसूरत सा गाना कृष्ण अवतार मूवी से, और गाने की बोल है मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर से बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं अहमद अली सारिया वार्ड नंबर 1 से। तो जी अभी थोड़ा बहुत मनोरमा जी से इधर उधर हो जा रहे हैं कॉल्स, और लाइन बाय लाइन नहीं बजा पा रही हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है, पर वो भी जल्दी ही बजाना सीख जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बाय बाय भारती जी, फिर मिलेंगे कल, नमस्कार। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, और आपको भी मेरी तरफ से बाय बाय। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिखूँ तो लफ्ज हो तुम, सोचूँ तो ख्याल हो तुम, मांगूँ तो दुआ हो तुम, सच कहूँ तो मोहब्बत हो तुम, ना चांद चाहिए ना सितारे की फरमाइश है, बस तुम मेरे साथ रहो इतनी सी ख्वाहिश है, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता, खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता, दर्द और जज्बातों वाली शायरी। और लिख रहे हैं कि सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, जब अपने याद करना छोड़ दे मौत तो उसे कहते हैं, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस कोई समझने वाला होना चाहिए, तन्हाई भी क्या चीज़ है जब अपने ही याद बनकर सताने लगे। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, नजाउल अंसारी मुंबई से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंच गया है रवि जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं बाय बाय भारती जी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। और अभी हमारा टाइम हो चुका है शो की समाप्ति का, तो श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम की समाप्ति का। और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं बता दूँ, यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट एक जो फरमाइश मेरे पास पहुँची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रही हैं और मैसेज करने वाली है पूजा सोनी सिवान से, और गाने की बोल यहाँ पहुंची हुई है, और गाने की बोल है याद आए हमारी तो रोना नहीं, और देशभक्ति गाना है। और इसी गाने के साथ आज मैं लूंगी आप सभी से विदा, और आप सुनते रहें ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ रेडियो रमझिम 90.4।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले चलेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए

0: 9006607231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

राम नाम आधार बा एह जीवन में यही से कवि कहतड़े देही का कहतड़े राम नाम रस पिया राम नाम रस पिया भैया हँसी हँ।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-7-14-86-165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470-10-30-9-92 या 9765-65-750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते
1: मैम, मुझे एक गीत सुनना था।
2: बिल्कुल, पहले नाम बता दीजिएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
2: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
2: बाबू का, अर्चित बाबू का बर्थडे है ना?
1: हाँ हाँ हाँ जी है, उसी लिए तो मैं फोन लगाया हूँ। तो उसके लिए कोई बढ़िया सा बर्थडे गीत चला दीजिएगा और सुनाना सभी लोगों को, जितने भी हमारे निम्न श्रोता है सभी लोग।
2: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है, नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, कॉल किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने की गम, ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने की गम, वो वक्त गुजर गया जब तेरे दीवाने थे हम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून
1: जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, रेडियो रूम बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी अच्छा हूँ, मैं कमरान रफीद।
1: हाँ जी,
0: पकड़ी सुल्तान से फिलहाल दिल्ली में हूँ। और आपका?
1: जी मेरा नाश्ता हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ मेरा भी हो गया, तबियत ठीक है?
1: जी तबियत ठीक है,
0: बहुत बढ़िया। रखिए काम, इधर तो धूप हुआ है, हवा भी चल रहा है।
1: हाँ दिल्ली में?
0: हाँ दिल्ली में, दो दिन तीन दिन पहले बारिश हुई थी।
1: अच्छा
0: जी, बारिश हुआ था 26 तारीख, और उसी दिन मेरा पेपर था बैंक का।
1: अच्छा,
0: गया था पेपर देने बैंक का, SBI का
1: पेपर गया कि नहीं?
0: हाँ पेपर अच्छा हुआ है मेरा, तो सर रिगनी में थोड़ा छोटा है, ज्यादा नहीं छोटा है।
1: अच्छा।
0: पर अच्छा हुआ, हाँ बहुत है। और सब बढ़िया है, उधर का मौसम कैसा?
1: जी हमारे यहाँ तो हल्की धूप है, हल्का हवा चल रहा है, काफी मतलब सुहाना मौसम बना हुआ है।
0: सुहाना मौसम है? नहीं इधर तो खूब सुहाना नहीं बोला जाएगा, मतलब ठीक है, सही है इधर का मौसम। जी जी
1: जी,
0: तो आज मेरे दोस्त है उमा शंकर भाई, उनका लड़की का जन्मदिन है। नाम है जी जी, तो उसी का बर्थडे गाना सुनूंगा। वो गाना है ना, मेरा भी नाम होता डब्लू बब्लू मैं खाता
1: हूँ।
0: हाँ ठीक आवाज है, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। डेडिकेट उसी को है और आपको है। और चलिए ठीक है, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
8: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: क्या कर रहे हैं?
2: जी हमारा खैरियत तो सही बार हुआ, बताए रहो कैसे बने?
12: अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक बनी। तुम नाश्ते के टाइम खत्म, खाना होना हो?
2: लंच हुए 2 बजे के बाद।
12: अच्छा वो ऐसा कब तक चले लगे?
2: कौन योर वॉइस योर चॉइस के सो?
12: हाँ
2: ओके स्टार्ट हो गए ना।
12: अच्छा और सब?
2: और सब ठीक बावे।
12: और गाना सुनेंगे?
2: बिल्कुल बता दी कौन सा गाना सुनेगा?
12: वादा किया हंसाने का तूने रुला दिया, जल सजना तुझको बुला दिया।
2: ओके और गाना किसी को सुनवाएंगे?
12: सबसे पहले आपको और सुनने वाली ऑल लिसनर।
2: ओके जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजिम 91.4 FM।
12: थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।

0: मैम
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
0: मैम मैं फिर भी बोल रही हूँ।
1: जी प्रभु जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: हाँ
1: कैसी है आप?
0: ठीक हूँ, अपना बताइए।
1: मैं ठीक हूँ, आप पर आप ठीक नहीं लग रही है।
0: मैं भी ठीक ही हूँ।
1: और सर आपकी बहन कहाँ है, वो ठीक है?
0: वो तो ठीक है। मनोरमा मैम कैसी है?
1: वो भी ठीक है।
0: तो आप ठीक है ना? तो सॉन्ग सुनना है हमको।
1: बिल्कुल बताइए।
0: जो भी नटियाल की आवाज में तेरी मीठी मीठी मैं तो गर्ल सुनिया।
1: फिर और बोलिए।
0: तेरी मीठी मीठी मैं तो गर्ल सुनिया।
1: और
0: डेडिकेट है आपको, मेरी बहन को, मनोरमा मैम और सोनू सर और जितने भी लिसनर है हम सभी को।
1: प्रभु जी आपके गाने को प्ले करते हैं।
0: तो मैम थैंक यू,
1: वेलकम। सुनते रहिए रेडियो 91.4 एफएम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
8: Break ke baad aap sabhi ka ek bar phir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Aap sabhi is show se judna chahte hain to pratyek somvar, budhwar aur shukrwar ko subah subah 11 baje se call karke apne gaane ke farmaish ko record kara sakte hain. नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: सलाम में।
9: वालेकुम अस्सलाम।
10: रेशमा बोल रही हूं, खान पुलिस।
9: हां जी, क्या हाल चल बा?
10: ठीक बा,
9: हम नहीं होंगे ठीक बा वे।
10: कहां रहो तुम? जी बात नहीं करो, बात नहीं करो। आप नाश्ता पानी का बोल रहे?
9: हां हां, हमने के नाश्ता पानी हो गई बार होगा, बताएं। अभी कहां होता
10: है? अभी कहां होता बता दो, दक्षिण कहां से लगे?
9: बता दी ना, हंसते हैं।
10: उधर आप लोग?
9: अच्छा, तो कहां हो गई गुदरा? ये हो तो बिछावल एकदम सील जरूरी बावे। सब सर
10: अभी सब तो ठीक बावे।
9: हाँ, और सब ठीक बावे।
10: सब तो ठीक बा।
9: हाँ हाँ, सब ठीक बा।
10: अपन तबियत ठीक बन रहा हूँ।
9: हाँ, हमारे तो तबियत ठीक बा रहा, बताए रहा लोग सब के ठीक बन लो ना।
10: आज कुछ मिलाप कर के साथ उसने को अपन कहाँ बात तो छोड़ रहा हूँ।
9: चलिए, कौन बात ना, तो बता दिया आज कौन सा गाना सुने?
10: आज गाना काम से है, मैंने
9: कौन सा
10: गाना आ गया मैंने उसी बाबा से पूछो, बाकी नदियों से पूछो, उनको पता है मेरा नाम।
9: हाँ हाँ है।
10: गाना
9: के रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: नमस्ते
1: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: गोपाल भैया बोल रहा हूँ, ग्राम का गवासा, जिला गुना।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, फसल की कटाई चल रही है मक्का की।
1: अच्छा जी, फसल तैयार है?
0: और वहाँ सही आया है, और वो क्या है, नवरात्रि आने वाले हैं और धूप धूप भी बहुत तेज पड़ रही है।
1: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं।
0: और क्या,
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
0: दिल फिल्म का सुनना है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए यार ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल को हुआ ये वाला गाना।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: हमारे दोस्त है सुनील साहु जी, ज्योति साहु जी मकसूदनगढ़ से, जीतन धाकड़ जी, और आपके लिए भी अरे दीजिए।
1: बिल्कुल, तो गाना आपका प्ले करते हैं
0: जी। कब तक आएगा जी गाना?
1: ये आपको आज शाम को नहीं तो कल शाम को मिल जाएगा।
0: ठीक है,
1: ओके। रेडियो रमेश में कॉल की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
7: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
14: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 असम में।
16: हाँ मैम, आपका भी बहुत स्वागत है जी।
17: जी नाम बताइए अपना।
16: मेरा नाम
17: जी
16: अजीत कुमार शाह और फिकर बिहारी हरियाणा से।
17: जी क्या हाल चाल है अजीत जी?
16: हाँ बढ़िया है मैम, अपना बताइए जी।
17: मेरा भी ठीक है। हाँ खाना हो गया।
16: और सब बताइए?
17: और सब समाचार तो ठीक बानी सब बताइए।
16: और वो ठीक है बानी बाबा।
17: गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
16: गाना सुनने के बाद गाना था मेरा बहुत दिन का करीब रहता है, मैं सुनता हूँ हमेशा उसको, कयामत कयामत कयामत।
17: गाना काफी बढ़िया है। तो आप गाना ये किसी को सुनवाएंगे जी?
16: हाँ सुनवाएंगे,
17: बता दीजिए।
16: आपकी मैम मुरन्ना मैडम जयकर कुशवाहा पूरे हिंदू परिवार को।
17: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
16: अभी बजाओगे?
17: नहीं नहीं, अभी तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, गाना सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल, पहले अपना नाम बता दीजिएगा।
0: सोला देव बोल रहे हैं पार्ल दादा से।
1: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हिंदी गाना सुना दीजिए, या तुझे पता है बिल्कुल मेरे दिल पर आने वाला
1: है। अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: गाना मेरा लड़का है उन्हें का सुनना है।
1: अच्छा,
0: बड़ा लड़का है गुलशान, अच्छा लड़का है राजा, एक मेरी बेटी है सांजना।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम, ठीक है ना?
1: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है?
0: हाँ, हम लोग तो ठीक है, बैलेंस नहीं था इसलिए नहीं कर रहे हैं।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
0: तब खाना वाना खा लिए?
1: हाँ, हम लोग का हो गया है।
0: चलिए, आप लोग का सब लोग ठीक है ना?
1: जी जी, सब कुछ ठीक है।
0: चलिए, हम भी ठीक है।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
0: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 99393-65923।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
13: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
15: जी क्या हालचाल है आपका?
14: बस बढ़िया है, सोयाबीन कट रही है और आप रेडियो सुन रहे हैं।
15: अच्छा
14: जी,
15: तो कौन सा गाना आज सुनिएगा?
14: जी मैडम जी, शिखर का नाम है बादल।
15: और गाने की बोल?
14: और गाने के बोले, तुझे देख दिल में डोले, मेरे दिल की धड़कन डोले।
15: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
14: जी मैडम जी, भाटी मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझाजी है, जितेंद्र कड़ती, अमर सिंह भील है, इन सभी और हमारे छत्नारायण गहलोत है उज्जैन से, ये सभी गाना उनको डेडिकेट रहेगा।
15: जी तो आपका गाना,
14: ये गाना मैडम जी,
15: ये आपको गाना आज शाम को नहीं तो कल शाम को सुनने को मिलेगा।
14: जी
15: जी, रेडियो रूम जी में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: राम राम साहब गुना से
1: जी।
0: और गाना
1: बिल्कुल बताइए, कौन सा गाना?
0: ये गोटे डाल लेगा।
1: कौन सा
0: गोटे डाल लेगा जब निकलू जब डाल के,
1: समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए।
0: धर्म काटा फिल्म का।
1: हाँ
0: हाँ यही गाना, ये गोटे डाल लेगा।
1: अच्छा अच्छा और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सबको सुनवाना, मैं तो हिंदुस्तान जीते जीते।
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: जी नमस्कार, क्या हाल चल रहा जी?
10: जी हमारे तो ठीक पर हुआ, बताइए रोगा की
11: संभाल तो हम नहीं है ठीक रहा हमारा।
10: अच्छा जी, तब अभी
11: कहा तो सवारी तो नहीं है महाराज।
10: अच्छा
11: तो हम कौन ही कहा है ना, तो ट्राई महाराज अब विचार मेरा कहीं भारती जी चक्कर आ जाये।
10: अच्छा जी,
11: अरे कभी आई महाराज घूमे न करी, आप खाली घोषाले का जो रहे,
10: कभी मौका मिली तो जरूर आये जी।
11: आयल बनी की ना कहू ये कारोबार?
10: दिल्ली?
11: जी
10: ना, कभी दिल्ली तो नहीं ही आये।
11: कहीं हो सका था कि किसी रीजन से आयल होके मैंने करी, ऐसा कुछ नहीं है?
10: ना ना ना, दिल्ली कभी नहीं की गई। दिल्ली बढ़िया हो तो जो बता दिया कौन सा गाना सुने?
11: गाना गाते महाराज साइया भाई बद्दू मरी के है फूल, मैंने गायिका के नाम हमारा ऐसी होता है की सबरे सहेलिया के भैया सैया भाई लड्डू मरी के फूल, ऐसे ही कुछ गाना बताते जानने।
10: हाँ
11: गुलरी के फूल,
10: हाँ
11: गुलरी के फूल
10: गाना बा।
11: हाँ मैंने अभी याद हुआ था लेकिन जैसे भोजपुरी को ज्यादा ध्यान दे देने हम तो 11 साल से पहले रोजा के डेडिकेट हुआ वार्ता उनको मनोरमा जी के, रानी मुखर्जी के, सब कोई को सुना दे जी के, सगीर भाई के, अहमद भाई के, और अख्तरी जी, कमरान भाई, रुबीना जी, सलनम जी, उसके बाद मुकेश भाई बारे, गाटा भाई बारन, सन्यासी बाबा बारन, सभी समीर भाई बारन, सोनू भाई बारन। आजकल सोनू भाई के थोड़ा अथी हो गल बा, माथा के पास नहीं खन जाते माता रानी के दरबार में, तो सब कोई को सुना दे हैं और गाना प्ले करी ताकि हम इनका जगह पर निकल जाये।
10: गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहे रेडियो रंजन 91।
11: जी नमस्कार।
10: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसे
1: ठीक बने। डेढ़ दिन हो गए बतिया बतिया।
0: अच्छा जी,
1: कोनो दिक्कत?
0: ना ना, कोनो दिक्कत नहीं। हम के कहे दिक्कत होगी?
1: ठीक
0: शुरुआत वाला मनोरमा जी रिकॉर्ड पे नहीं आए वाला हम करता है। सब हाल चाल बताई और सब ठीक बा? चलते बा मनोरमा जी, शुरू कैले बानी। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी बा। जन रो वाला चुटकुला भेजे नी, बहुत मजेदार होला। मस्ती मजाक ना होके तो उसको
1: कैसा
0: बिल्कुल बताई। आज कौन से गाने के फरमाइश?
1: आज खुशबू सिंह के नया एल्बम
0: गाना के बोल बता दी।
1: आज छोड़ दे कविता सागर सुशू सिंह के बजा दिया भारती जी के मनोना जी के। हमारा नाम जितना लोग जानते हैं सब से, हमारा नाम अनिल कुमार मित्रा दिल्ली।
0: ठीक ही बा, गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो 90.4 एफएम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-6650।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी नमस्ते मैडम।
7: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 91.4 असम में।
6: गाना सुनना है
7: मैडम। बिल्कुल, अपना नाम बता दीजिएगा जरा।
6: हम इतना बार से कॉल कर रहे हैं, मेरे से नहीं पहचानते हो क्या मैडम? बुला गए खाले से बोल रहे हैं सुमन कुमारी।
7: अच्छा,
6: क्रिंगर वाला।
7: जी जी,
6: बोलिए मैडम। आइए मैडम रिकॉर्ड खाने।
7: हम बिल्कुल खाइए, आप हम भी आ ही रहे हैं रास्ते में।
6: मैडम आज अपने पसंद के गाने सुना दीजिए।
7: अपने पसंद से तो रोज सुनाती ही है।
6: हाँ, अपने पसंद के आज गाना सुना दीजिए।
7: हम मतलब अपने पसंद से, आप सबको तो रोज सुनाते हैं, जब रोज शुरू करते हैं तो अपनी पसंद का एक गाना तो जरूर बजाते हैं आप लोग के लिए।
6: हाँ, उसी समय से कॉल करते करते और भी लगा
7: है।
6: ठीक है मैडम,
7: पसंद का गाना सुनिएगा। आज मेरी पसंद का गाना सुनिएगा।
6: हाँ, आज मैं आज तेरी पसंद का गाना
7: सुनिए। फिर ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम,
0: जी नमस्कार।
1: कैसी हैं मैम?
0: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आरजे लोग कैसे हैं?
0: जी जी सारे आरजे भी ठीक हैं।
1: हाँ मैम, गाना सुनवा दीजिए। रब रब कर प्यार ही हो जाए, ऐसा कोई गाना?
0: जी जी है गाना, रब करे तो जो भी प्यार हो जाए।
1: जी जी यही गाना सुनवा दीजिए। और मैं पप्पू कुमार साहब बोल रहा हूँ, पड़ा रहना बड़ा रिया सर।
0: जी जी और गाना ये आप किसी को सुनवाएंगे जी?
1: गाना सुनवाएंगे, सन्यासी बाबा जी हैं, उत्तम रोनी जी हैं, कमरान जी हैं, उमा शंकर जी हैं, और अनीश जी हैं, गुड़िया है, सविता है, और ये रानी बहन जी हैं, शबनम बहन जी हैं, और सारे जितने भी रेडियो महोदय है सभी सुनाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी मैम। थैंक यू मैम।
0: वेलकम, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
4: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
3: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
4: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
3: कहाँ?
4: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
5: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
6: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
5: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
6: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
5: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
6: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80 03 35 8 76 या 95 999 27 982।
7: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
6: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
6: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
6: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
6: अभी कॉल करें 92899 22567 या 97714 8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, चैन पट्टी, गोपालगंज।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
13: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो मैम नमस्ते।
16: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 92.7 में।
15: इसके लिए दिल से धन्यवाद। हम तो सुनील कुशवाहा बात कर रहे हैं मैम RMC से। बस बैठे हैं मैम फोन लगाते हुए। मैम वहाँ का मौसम कैसे हाल चाल है मैम?
16: अभी तो यहाँ मौसम सुन रहा है, काफी सुहाना हो रहा है मौसम
15: का। जी जी जी जी मैम, हमारे यहाँ भी क्या अभी तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था, अभी 3 दिन से नहीं हो रहा है, तो कड़ाके का धूप है मैम और गर्मी है ही है मैम। तो बस बैठे थे रेडियो रिंगिंग में फोन लगाते हुए मैम। तो आज एक फरमाइश है फिल्म है बंजारन और गाने के बोल है मेरे दिल की गलियों में तू दिल की आबाद है मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
16: आपके गाने को प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.7।
15: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 9.4 FM में। नमस्ते।
0: और सब बताइए।
1: जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: भारती मैम बोल रहे हैं कि मेरा नाम है।
1: जी मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: गाना सुनना?
1: बिल्कुल बता दीजिए रवि जी, कौन सा गाना सुनिएगा? आपकी आवाज कट रही है। हेलो।
0: हाँ हेलो।
1: हाँ बोलिए।
0: बोल रहा हूँ कौन सा गाना बजा दीजिए। अच्छा
1: कोई सा।
0: हाँ
2: दोनों आदमी है साथ में?
0: दोनों आदमी है।
1: कौन कौन?
0: हम दिनेश कुमार मिश्रा।
1: ऐसा भी? तो वो भी साइड से हैं।
2: मुझे भी बात करना है आपसे आज।
1: कीजिए कॉल, जरूर बात होगा। तो अपने मन से सुनाया, आप लोग नहीं बताइएगा आज?
0: आप नहीं मन से बात गायती करिए, बजाइए।
1: वैसे तो दोस्तों हम तो अपने मन से आप लोगों को पहला गाना सुनाते ही हैं।
0: बहुत दिन के बाद कॉल किया है। ताज अपने मन से सुनाइए।
1: तो ये गाना आप किसी को सुनाएंगे?
0: यहीं पे है दिनेश कुमार मिश्रा जी और आप हैं मनोरमा मैम। मैं
1: चलिए फिर देखा, तब आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 9.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: श्रोता लोगिन नमस्कार। रवा सभी सुनत बानी आपन बोली के पहचान यानी कि रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम राउर दोस्त आज फिर से रेडियो रिमझिम पर हाजिर हो गल बानी लेके अपना माटी के सुगंध से सरोबोर कार्यक्रम भोजपुरी बिरहा। तो चलिए आज के कार्यक्रम के हमने के आगाज कर जाओ और सुनल जाओ ये बिरहा।

0: अच्छा बाबूजी, हम करंट मैटर विधायक आए कर्मेश यादव और अपने पूरी पार्टी के आवाज में एमडी में गाजीपुर चैनल के सौजन्य से एक करंट विधायक, जब भी आप लोगों ने न्यूज पर देखा, मीडिया के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा, उत्तर प्रदेश जिला संत कबीर नगर खलीलाबाद के अंतर्गत एक जाने माने पहलवान ब्रह्मानंद यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर इस मानव को हो क्या गया? मालिक से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपने इंसान को बनाया, आज वह इंसान हैवान का रूप धारण कर लिया है। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ईर्ष्या और जलन ये अपने आप को ही खा जाती है। आइएगा कहानी को विराह के माध्यम से पूरा सुनिएगा, सुनने के बाद रूहें कांप जाएंगी। चार लाइन कवि ने भूमिका में भाव लिखा है मास्टर।
1: अए खुदा कुछ रकम कर सको तो करो, अब मनौता ही जड़ से दफन हो रहा, हाथ सीने पर रख कर तो सोचो जरा, मरने वालों को कम अब कफन हो रहा, खुद से इंसान

यह दुख उससे पूछा जाए जिसकी दुनिया ही उजड़ गई। छोटे छोटे मासूम बच्चों के सर से जिस पिता का साया उठ गया हो, आखिर क्या बीत रही होगी। लेकिन एक थे गजल का अंदाज लगल है मास्टर।

0: कहानी प्रजरा गौर करिहन। उत्तर प्रदेश जिला संत कबीर नगर।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: थाना खलीलाबाद के अंतर्गत एक गांव, जोना गांव का नाम भगठहन गोसाईपुर बतावल गई। वहीं का एक परिवार यादव परिवार, बड़का भैया का नाम रमाकांत यादव, एक भाई का नाम श्रीकांत यादव, एक भाई का नाम रमानंद यादव और सबसे छोटे वाला भाई का नाम ब्रह्मानंद यादव रखल गई। ए भैया, परिवार में सब कुछ सही चल रहा बा और बचपन से ही ब्रह्मानंद यादव यह विचार रहल कि हम पहलवानी करब, पहलवानी कई के अपने परिवार जिला जवार का नाम रोशन करब। यही लक्ष्य के रख के ब्रह्मानंद और डेली बाई डेली अखाड़े पर जाकर के निंगोटा कस करके और रियाज मारना, ये डेली बाई उनका काम रहा। धीरे धीरे पहलवानी में निखार आवे लगल, चर्चा का विषय हो गई, बढ़िया बढ़िया दंगल जाए के लड़क काम ब्रह्मानंद यादव करे और जीत भी हासिल करे। यही बीच में ए भैया शादी जो हो गई, परिवार के लोग बढ़िया रिश्ता ढूंढ करके, पूजा नामक दुल्हन से रिश्ता तय हुआ, शादी हुई, कुछ दिन बीतल, माली खुश भेलन, गोद में एक बेटा का पैदाइश भेल, बेटवा का नाम अंश रखलन और एक बिटिया भी मालिक दिहलन। अब तो परिवार में कोनो दिक्कत नहीं बा, पूरे परिवार में समरसता बा, संयुक्त परिवार बा, बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा बा। लेकिन बारे ब्रह्मानंद यादव जी इतना मेहनत से लड़ा, कम ही दिन में और चर्चा काफी है। कबीर जी बड़ा सुंदर ब्रह्मानंद यादव मेहनत और रियाज पर लिखलन, पहलवानी पर लिखलन, एक लाइन गीत लगल मास्टर

परिवार के भी सपोर्ट बा, जवन भी खर्चा लागी, लेकिन ब्रह्मानंद आपको केवल पहलवानी करना है, नाम रोशन करना है, तब अरे कई दंगल जीत करी के परिश्रम लहराए

ब्रह्मानंद यादव को कुश्ती में रंग आइल है बाबू। आज बढ़िया कुश्ती लड़े लगलन, जिला खेसरी के उपाधि मिल गई। अपने गौए में ब्रह्मानंद यादव और अपने नाम से ही ब्रह्मानंद एकेडमी शुरू किया, जहां डेली बाई डेली प्रतिदिन 40 बच्चों को कुश्ती सिखाने

0: ए भैया सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा बा, धीरे धीरे सकुशल समय बिता के लोग 2026 में लोग सब लोग प्रवेश कैले है। लेकिन
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई

0: रखी ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कौनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
4: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
3: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
4: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
3: कहाँ?
4: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
5: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
6: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
5: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
6: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
5: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
6: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
8: अभी जी विदेशिया में भाव लिखलन है मास्टर।

0: कि मई 2026 पाटी तारी में भी बाता भाईल अकेले समझो ता लेकिन बनल नहीं बतिया। ए भैया चुनावी रंजिश को ही लेकर के और ब्रह्मानंद के पटीदार से ही और कुछ बात बात में विवाद हो गई। गांव के सब लोग जुटल कि बहुत अच्छा परिवार बा, ये सब ठीक नहीं बा। लोग समझौता करा देहल कि आपस में मिल मिला के रहले के काम है, फिर से सब कुछ सही हो गई। लेकिन कि धीरे धीरे दुश्मनी
1: अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना की मदद मांगी, कहा राज्य के लिए अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी शताब्दी समारोह को किया संबोधित, कहा प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 30% हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा बिहार में 3,88,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा निर्माण। और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद, मरम्मत कार्य के चलते 3 महीने का लिया गया है मेगा ब्लॉक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और गंगा समेत सभी प्रमुख नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्य में वायुसेना की मदद मांगी है। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि राज्य की विभिन्न नदियां अभी उच्चतम स्तर पर प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे बिहार के लिए काफी संवेदनशील हैं।
2: लेकिन चिंता बना हुआ है, स्वाभाविक है। इतने चाहे गंगा का पानी हो, HFL पूरी तरह बदल गया, हाईएस्ट लेवल पर पानी चला गया और इसके साथ साथ गंडक में भी नया HFL आ गया। इससे ज्यादा आज तक पानी न गंगा में आया न गंडक में आया। सोन में भी हाईएस्ट लेवल पर पानी गया, इसलिए और जबकि बिहार में 32% कम बारिश हुई तब ये स्थिति है। इसलिए चिंता का विषय है, पूरी तरह सरकार मुस्तैदी से लगी है किस तरह सभी को राहत मिल सके।
1: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच विभिन्न स्थानों पर तटबंध टूटने से निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। हमारे सारण संवाददाता ने बताया कि मकेर प्रखंड में 2 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
3: मकेर प्रखंड में 2 स्थानों पर तटबंध टूटने के कारण प्रखंड की सभी पंचायतें तथा अमनौर प्रखंड की कुछ पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। पानी का तेज बहाव परसा प्रखंड की ओर से भी हो रहा है। बाढ़ के पानी के कारण NH-722 पर आवागमन प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ पानापुर प्रखंड में भी 1 स्थान पर तटबंध टूटने के कारण बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह।
1: गोपालगंज में भी गंडक नदी तबाही मचा रही है, एक रिपोर्ट।
4: गोपालगंज सदर, बैकुंठपुर, कुचायकोट, मांझा और सिद्धवलिया प्रखंडों की 20 से अधिक पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। बैकुंठपुर के सीतलपुर और पकहा के बीच गंडक के उफान से एक जमींदारी बांध टूट गया। इसके बाद सीतलपुर और आसपास के इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। मुख्य सारण तटबंध में मुंजा मटियारी के पास पानी का भारी दबाव बना हुआ है। कई स्थानों पर तटबंध से रिसाव भी हो रहा है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में लगी हुई है। वहीं 200 से अधिक होमगार्ड जवानों को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। गोपालगंज से मधेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
1: वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया कि लालगंज में रिंग बांध से हो रहे रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है और बांध पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में नारायणी गंडक नदी का पुराना तटबंध टूट गया, जिससे नए इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इधर बागमती और कोसी नदी में पानी का दबाव बढ़ने से दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
5: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 30% हो गई है, जो समाज में महिलाओं की बदलती स्थिति को दिखलाता है।
5: हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बिहार में 3,88,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराया जाएगा। आज पटना में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बिहार के महत्वाकांक्षी राम जानकी पथ का निर्माण कार्य 87% और गौतम बुद्ध सर्किट का काम 90% पूरा कर लिया गया है।
6: 2014 में 4,615 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था, अब लगभग 1.5 गुना बढ़ा है, 6,500 किलोमीटर हुआ है। जो ब्रिजेस है, हमने 8 प्रोजेक्ट जो 26 किलोमीटर 13,000 करोड़ के पूरे किए हैं। इसमें से बिहार में जो रिलीजियस प्रोजेक्ट है, राम जानकी मार्ग 440 किलोमीटर 5,044 करोड़, जो नवंबर 2028 में पूरा होगा, 87% इसका काम पूरा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध का सर्किट 1600 किलोमीटर का मार्ग है, 22,000 करोड़ का, 90% पूरा हुआ है, मार्च 28 में इसका काम पूरा होगा।
1: समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार अपने स्तर से कई एक्सप्रेस वे का निर्माण करवा रही है।
7: हमारे यहाँ भी आज कई एक्सप्रेसवे की कल्पना हो रही है, चाहे वो हल्दिया से रक्सौल हो, चाहे वो सिलीगुड़ी से गोरखपुर हो, या पटना से पूर्णिया का हो, और बक्सर से भागलपुर, लगभग काम आपने पूरा कर दिया है। कुछ स्टेट बचे हैं, हम लोग अलग से भी एक पीपीपी मोड हम लोगों ने बनाया है, जो अलग से जमुई के रास्ते एक नया स्वरूप, हम लोग नए सड़क के स्टेट को भी बनाने का काम राज्य स्तर पर शुरू कर रहे हैं।
1: बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल थे। समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की ओर से लंबित प्रस्तावों को मंजूरी देने और नई परियोजनाओं को स्वीकृति देने का आग्रह किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम की शुरुआत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास के सामने स्वयं स्वच्छता अभियान में भाग लेकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। श्री चौधरी ने लोगों से अपने घर, कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। इधर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों और विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने दानापुर के फक्कर महतो घाट पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया और स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आकाशवाणी पटना में आयोजित स्वच्छता अभियान में केंद्राध्यक्ष ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मियों ने परिसर की साफ सफाई की। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: हर भौगोलिक क्षेत्र की अपनी एक खास पहचान होती है। कोई फसल, कोई हुनर या कोई खास उत्पाद, अगर इस स्थानीय पहचान को बाजार से जोड़ा जाए तो यह उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। इसी सोच के साथ शुरू हुई एक जिला एक उत्पाद पहल सेवा संकल्प अभियान में आज इसी पहल की कहानी।
2: साल 2018 में शुरू हुई एक जिला एक उत्पाद पहल ने देश के विभिन्न जिलों की स्थानीय खासियत को विकास का आधार बनाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य सिर्फ उत्पाद को पहचान दिलाना नहीं बल्कि उसे बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
3: हमारे हर जिले के पास एक प्रोडक्ट है और हर प्रोडक्ट की अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी एक कहानी है। हमारे आदिवासी अंचलों में भी बेहतरीन आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, ऐसे अनेक हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ऐसे अनेक उद्योग हैं जो पारंपरिक हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए जा रहे हैं और यही मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विचारों के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
2: मधुबनी जिले के रहने वाले कपिल देव झा मखाना उत्पादन से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि मखाना की मांग बढ़ने से किसानों को इसका फायदा मिल रहा है।
4: मैं मधुबनी जिला का प्रगतिशील किसान कपिल देव झा। जब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा एक जिला एक प्रोडक्ट और उसमें मधुबनी जिला को मखाना के लिए चयनित किया गया, तब हमने उसकी खेती शुरू की। पहले तो हम तालाब में ही इसकी खेती करते थे, लेकिन उसके बाद हमने खेत में भी इसका खेती शुरू कर दिया। जब से NRC मखाना दरभंगा में हुआ और उसकी ट्रेनिंग हम किसानों को देना शुरू हुआ, तो उसका फायदा ये हुआ कि अब हम लोग उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उससे किसान को काफी फायदा हुआ है।
2: जब किसी जिले की स्थानीय पहचान को बाजार मिलता है तो उसका फायदा सिर्फ उत्पाद तक सीमित नहीं रहता, इससे किसानों, उत्पादकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर बनते हैं। एक जिला एक उत्पाद स्थानीय ताकत को बाजार की ताकत में बदलने की एक पहल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: पूर्व पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने आज मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में आयोजित समारोह में श्री कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद हो गया है। क्षतिग्रस्त स्लैब के अस्थायी पुनर्स्थापन के लिए 3 महीने का मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान टूटे स्लैब को बदलने के साथ 3 अन्य स्लैब को दुरुस्त किया जाएगा। सेतु बंद रहने के दौरान भागलपुर और नगछिया के बीच नदी मार्ग से फेरी सेवा शुरू की गई है। 6 घाटों से यात्री और मालवाहक जहाज का परिचालन शुरू हुआ है। फेरी सेवा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक या सूर्यास्त से पहले तक चलेगी। विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अनुज सिंह के साथ मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह भी मौजूद थे। गौरतलब है कि अनंत सिंह ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अनुज सिंह का समर्थन किया है। इधर तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपना पर्चा भरा। इसके अलावा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निवर्तमान एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने भी पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और आईआईटी मद्रास के बीच इस संबंध में आज पटना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सुपौल की उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के एक मामले में दोषी सिकंदर यादव को 5 साल कारावास और 1,00,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीतामढ़ी, रोहतास और बेगूसराय जिले में आज से विद्यालय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वायुसेना की मदद मांगी। कहा, राज्य के लिए अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 30% हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बिहार में 3,88,000 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा निर्माण। और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद। मरम्मत कार्य के चलते 3 महीने का लिया गया है मेगा ब्लॉक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

देखा दिन रतिया। ए भैया इधर से तो सब कुछ सही बा, लेकिन उधर जो पटीदार थे बाबूजी, सामने से तो नहीं लग रहा था कि ये ढंग का लोग होई, लेकिन जब से भी बात भई तब से ही लोग और उस परिवार के बारे में गलत सोचना घात खोज रहल बड़ा लोग। लेकिन केहू के काम मालूम बा कि लोग ऐसनो करी, लेकिन 2200 सितम

ए बाबू 22 सितंबर को जो है वह नीच कमीना पापी घात लगा करके और इंतजार में लोग हैं, लेकिन घरवा ब्रह्मानंद यादव दो चार ठे बढ़िया भैंस रखल बड़ी भैया कलन की चोकर खत्म हो गई, बाजार के तनी बाजार से चोकर लिया था। वह पहलवान जिला केसरी पहलवान ब्रह्मानंद यादव बुलेट उठौलन और गिठनी बाजार के तरफ चोकर लेवे बदे चलन है, लेकिन जैसे घरवा से कुछ ही दूर पहुंचलन ए बाबू ने का मालूम रहल कि ऐसा घटना घटे वाली है। जैसे पटीदारन के घर के तरफ से रास्ता जात बा, जब वहां पहुंचलन लेकिन बारे इंसान का मानसिकता कि मिर्चा वाला पाउडर उनके अरे अखियां में फेंकी दी वाला

कुछ लोग वहाँ वीडियो भी बना लिए थे। जब हम लोगों ने वीडियो देखा, कुछ लोग डंडा लेकर के इंतजार कर रल बरन, लेकिन उनके घर की जो औरतें थी बाबूजी, जैसे वहां पहुंचे, ये पहले से प्लानिंग थी। और मिर्चा का पाउडर ला करके एकाएक और ब्रह्मानंद पहलवान के आंख में फेंक दे ले, जिससे आंख में मिर्चा कही ले बाबू। और वही ब्रह्मानंद यादव जी घिर पड़लन, ए भैया गाड़ी कहीं और फेंका गई। ब्रह्मानंद यादव जी घिरल हुन और यही आवाज दे रहल हुन कि अरे कोई हो तो मुझे बचाए, तब तक ए भैया। वही पटीदार डंडा गोजी लेकर के ब्रह्मानंद पहलवान के ऊपर टूट पड़ते हैं, हाथ जोड़ के कह रहे ब्रह्मानंद पहलवान के, रे भैया हम कौन इतनी बड़ियार कसूर कैली, कौन इतना बड़ियार गलती कैली जौना कही हमें सजा देत हुआ लोग। हम तो बचपन से ही सोचत रही कि बढ़िया से पहलवानी करके अपने खानदान के नाम रोशन करब, लेकिन आज ही लोग का कर रहा बड़ा। लेकिन कवि जी सरंगा में भाव लिखलन है,

ए बाबू, जैसे गांव के लोग वहां जुटे, उससे पहले नीच कमीना कसाई और वहां से फरार हो गए। सांसे चल रही है, जहां जहां खबर लगल तो लोग ब्रह्मानंद का नाम सुन करके वहां पहुंचे। बाबूजी, एम्बुलेंस बुलाया गया। इसके बाद प्रशासन को भी खबर दी जाती है, लोग हॉस्पिटल लेके गई लेना। हॉस्पिटलवा में जैसे पहुंचलन ए बाबू आनंद फानन में, स्टेशन पर लेके जब लोग अंदर गईलन, डॉक्टर साहब आए और जब चेकअप किए बाहर निकल के और नम आंखों से कहते हैं, ब्रह्मानंद पहलवान इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूटल बा। ए भाई, तीनों भाई रो रहल बड़न की अरे मालिक, ये कौने गलती के सजा देला जो ना आज हमन के चारों भाई में से एगो भाई के जोड़ा फोड़ देला। कहा मालिक, आज इंसान का इंसानियत एकदम मर गई है। तेरी में कविजी भाव लिखलन है, अरे जीवन की हो, जीवन की धारा रोकी दुश्मनी।

माझी लिया समाधि झंखैला किनारा जीवन की धारा रोकी दुश्मनी। ए भैया जे लोग ये खबर के सुनल कि जिला केसरी ब्रह्मानंद पहलवान ने दुनिया में नहीं रहलन, पैर के तले से जमीन खिसक जा रहल बा ए बाबू, खाली लोगन के आंख में आंसू रहल कि का मालिक एक ही ब्रह्मानंद पहलवान जो अपने गांव का अपने जिले का नाम रोशन कर रहा था और ये भी आंख का लोगों की किरकिरी बन गया। सब लोग उन नीच कसाई पापी को और ही धिक्कार रहे हैं, लेकिन वहां से प्रशासन के लोग लाश को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे बाबू। पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार को लाश सौंपी गई। अलसिया जब दुआरे पहुंचल लोगों का जहन सैलाब, वो ब्रह्मानंद पहलवान के अंतिम दर्शन करे बदे लोग जुटल। सब लोग बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहल बा ए बाबू, लेकिन जे धर्म पत्नी बा जिस साथ में जिंदगी बितावे के कसम खैले रहल वादा कैले रहल, उनकर धर्म पत्नी पूजा अपने दुध मुहा बिटिया के लेके और अपने बेटा के लेके पास में कैली, जब चेहरा देखलिन हो बाबू रो रो करके और अपने पति देव से कलर बनी, का स्वामी जी आखिर हमसे कौन त्रुटि भइल, कौन गलती भइल कि आज हमार बीच धारा में छोड़ के हमें चल गई। उठान स्वामी कुछ तो बोल दा स्वामी, देखान कितना लोग तोहरे दरवाजे आई हूँ, रो रो के कह रही बनी।

0: ए स्वामी उठाना दिखाना है तुहार बेटवा अंसरो रहल बा स्वामी, एक बार आँख खोल के देखला कुछ तो बोल दा स्वामी।
1: कवने कसुर का दिया।

एक बार तू खोल के मुंह बा अधेबा

0: ए बाबू लोग समझा रहल बड़न बड़का भैया उन अंश बेटा के गोदी में लेके ये करल बन कि मत रो बेटा, ये हमारा भाई ब्रह्मानंद यादव, ये जब तक धरती आसमान रही और ये नाम गुजत रही।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: ए भैया सब लोग समझा रहल बा लेकिन लाश को कफन दे करके और लोग शमशान के घाट के तरफ लेके चले कर जब तैयारी कैलन, ए बाबू सब लोग बारी बारी से कंधा दे रहल बड़न, तकबीर जी भाव लिखलन,

अंतर्राष्ट्रीय पहलवान देवरिया से साधु यादव जी वहां पहुंचे बाबू जी, और मीडिया वाले वही पूछ रहे हो, यशो साहब भी बैठे वही कह रहे कि आखिर कई न कई लोगों की पहले से प्लानिंग थी, अगर प्रशासन के लोग सख्त होते तो हो सकता था कि ऐसा न हो, कहीं ना कहीं इसकी अच्छे से जांच हो और जितने लोग दोषी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यशो महोदय बोले, वहां डीएम महोदय एसपी महोदय सब लोग पहुंचे, लेकिन एसपी महोदय उनके भाई से बोले कि आखिर किसके ऊपर शक है, जो भी आपको या एफआईआर जिनके नाम से देनी है आप दे सकते हैं, उसमें मैं उचित कार्रवाई करने का काम करूंगा। परिवार के लोगों ने अपने पटीदार के लोगों पर नामजद या एफआईआर किया है बाबूजी, और मैं यही कहना चाहता हूं प्रशासन के लोगों से कि जो लोग भी दोषी हैं उन्हें पकड़ करके और कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि दूसरा कोई ऐसा घिनौना काम करने का दुस्साहस न करे। ए भैया, लेकिन वही लोग जिला के श्री पहलवान ब्रह्मानंद यादव जी को पंच तत्व विलीन के लेना, लेकिन लोगों के एक थे ये है आवाज है ये प्रशासन से और सरकार से, कहा मास्टर

उसका और परिवार की ओर से यही मांग है कि जो लोग ब्रह्मानंद यादव जी का हत्या किए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए, जितने लोग उसमें शामिल हैं सबको और सरकार प्रशासन के लोग पकड़ करके उचित कार्रवाई करने का काम करें। नहीं, अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तो ये घटना रुक नहीं सकती। आज अपराधी खुले आम घूम रहे हैं और प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं विरह के माध्यम से जिला केसरी पहलवान ब्रह्मानंद यादव जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मालिक से प्रार्थना करता हूं, ऐसे महान आत्मा को मालिक अपने श्री चरणों में उच्च स्थान देना, परिवार को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करना। कहना है

0: तो श्रोता लोगिन ई रहल रेडियो रिमझिम पर आज के बिरहा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि आज के बिरहा रवा सभी के बहुते अच्छा लागल होई। तो अगर रवा सभी चाहत बानी ए पर अपन सुझाव या शिकायत हमनी तक पहुंचावे के तो हमनी के व्हाट्सएप नंबर बा 98527888291 और ईमेल आईडी बा radiorimjhim@gmail.com और हमनी के खत के पता बा रेडियो रिमझिम बंजारी मोर गोपालगंज पिन कोड 84 14 28। रोज सभी कोनो भी माध्यम से अपन सुझाव या शिकायत हमनी के लगे भेज सकत बानी। तो चलिए अब हमके जाए के दी इजाजत, नमस्कार और इस सुनत रहे अपना बोली के पहचान रेडियो रिमझिम 90.4।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो

0: जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड में उप प्रबंधक का एक, सहायक प्रबंधक BIS ग्रेड M2 का एक और सहायक प्रबंधक फायर एवं सेफ्टी ग्रेड M2 का एक पद रिक्त है। इसे भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.tngclonline.com। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में ये पद रिक्त हैं उपनिदेशक प्रशासनिक एवं लेखा, उपनिदेशक कार्यक्रम, सहायक निदेशक कार्यक्रम, सहायक निदेशक प्रशासनिक एवं लेखा, आशुलिपिक ग्रेड 1, कार्यक्रम अधिशासी, सहायक, सहायक इंजीनियर सिविल, सहायक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, प्रलेखन अधिकारी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, सहायक कार्यक्रम अधिशासी, प्रदर्शनी सहायक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2। विवरण और आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट का पता है szccindia.org। वेबसाइट का पता फिर से सुनिए szccindia.org। इसके अलावा 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कृषि विज्ञान केंद्र सूर्यपेट जिला तेलंगाना में वरिष्ठ वैज्ञानिक और विषय मामला विशेषज्ञ पशुधन उत्पादन का एक एक पद रिक्त है। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट www.saird.org। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इंजीनियर रिक्तियों की संख्या 12, उपप्रबंधक रिक्तियों की संख्या 38, प्रबंधक रिक्तियों की संख्या 9 और वरिष्ठ प्रबंधक रिक्तियों की संख्या 2। विस्तृत विज्ञापन के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट का पता है www.engineersindia.com। engineersindia.com पर जाकर आप करियर्स और उसके बाद ओवरव्यू और फिर अपॉर्चुनिटीज को क्लिक करें तो आपको आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में सचिव का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.dohe-education.gov.in। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक अंग्रेजी, TGT अंग्रेजी और काउंसलर के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी की आधिकारिक वेबसाइट अथवा आवश्यक जानकारी हासिल करने के लिए आप लिख सकते हैं इस पते पर recruitmentcells@gmail.com। रोजगार समाचार पत्र के 19 से 25 सितंबर 2026 के अंक में भी उपलब्ध है। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमर रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
5: We are very, very proud of the bravery and the courage.
6: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और के परिवार के साथ खड़ा है।
5: We are very, very grateful and we are really, really extremely proud of it.
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
7: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
9: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
10: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहाँ पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
9: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
11: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
9: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long.
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजीम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
15: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
14: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
15: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
14: कहाँ?
15: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
16: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
17: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
16: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
17: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
16: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
17: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95 999 27 982।
18: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
17: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
18: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
17: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
18: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
19: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
17: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
18: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
17: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
18: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
17: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
18: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
17: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
18: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 5790।
20: ठक ठक।
21: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
26: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
27: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
28: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
29: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
28: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
29: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
28: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
29: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
28: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
27: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
30: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बाढ़ पीड़ितों की मदद में अफसर, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सहित NDRF की टीम ने संभाला मोर्चा। हथुआ महावीरी अखाड़ा मारपीट के मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। बाढ़ में सर्पदंश की बड़ी घटना, एक व्यक्ति की सांप काटने से हो गई मौत। रात में तटबंधों की हो रही है सख्त निगरानी, तटबंधों पर पुलिस और पदाधिकारी लगातार कर रहे हैं पेट्रोलिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। इधर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरे दिन घूमते रहे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की स्वयं मदद की, पुलिस टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में मदद किया, प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, दवा और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई गई। आपात स्थिति में गोपालगंज पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, यह नंबर है 9031872299। इस पर संपर्क कर पुलिस पदाधिकारियों से बात कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में सारण तटबंध के टूटने के बाद से लगातार इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, कई गांव पानी में डूब गए हैं, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन कई जगहों पर कम्युनिटी किचन भी चला रहा है, इसके बावजूद भी कई जगहों पर बांध में लीकेज की खबरें आई। आज गम्हारी में भी सारण तटबंध पर रिसाव की सूचना मिलने पर प्रशासन अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी समीर सौरभ और पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। प्रशासनिक और तकनीकी टीमों ने ग्रामीणों के सहयोग से रिसाव वाले हिस्से की तत्काल मरम्मत कराई, तटबंध की लगातार निगरानी और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए। फैजुल्लापुर में सामुदायिक रसोई का भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वच्छ और पौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी का भी बोरी उठाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैल गया। बताया जा रहा है कि एक जगह बांध का रिसाव शुरू हो गया था जिसमें पुलिस अधीक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे और खुद बोरी उठाकर बांध के रिसाव को बंद करने में जुट गए। पुलिस अधीक्षक को बोरी उठाता हुआ देखकर स्थानीय लोग भी इस अभियान में हाथ बटाने लगे और जनता के सहयोग से पदाधिकारी और मजदूरों ने मिलकर वहां रिसाव को तुरंत बंद किया। पुलिस अधीक्षक के बोरी उठाने वाले वीडियो और फोटो को लोग सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पुलिस अधीक्षक की बड़ी तारीफ कर रहे थे। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसको लेकर आज गोपालगंज के एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन ने भी इलाके में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच दवाएं और खाद्य सामग्री इत्यादि का वितरण किया। मुखिया रमावती देवी और धर्मराज प्रसाद ने भी जरूरतमंदों में राहत सामग्री का वितरण किया। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह पिछले दो दिनों से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं। एमआईएम के नेता अनस सलाम भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आज गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर जरूरतमंदों की मदद में लगे रहे। जदयू पार्टी की तरफ से भी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल और तमाम पार्टी के नेता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जरूरतमंदों के बीच सहायता पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में शीतलपुर बांध टूटने के बाद गंभारी में भी घरों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। सैकड़ों लोग घरों में फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम आज पूरे दिन लगातार लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही थी। एनडीआरएफ के जवान लोगों को किसी देवदूत से कम नहीं लग रहे हैं। जो लोग इस भीषण बाढ़ में अपने छतों पर फंसे हुए हैं या कहीं ऊंचे स्थान या पेड़ इत्यादि पर चढ़कर शरण ले रखे हैं, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। वहीं गोपालगंज के सांसद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपदा राहत की यह राशि 9 अक्टूबर तक लाभुकों के बैंक खाते में भेजे जाने की बात उन्होंने कही। सांसद ने कहा कि प्रभावित परिवारों और अधिकारियों से उन्होंने हालात की जानकारी ली है और हर संभव सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही है। सरकार स्तर पर भी लगातार कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम के साथ ही जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। आरोप है कि पुलिस के वहां से हटने के बाद दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। अब इसमें थानाध्यक्ष के बयान पर 10 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। थानाध्यक्ष मोहम्मद सोएब आलम की ओर से दर्ज स्वलिखित बयान के आधार पर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद कर केस दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में विकास कुमार, धनु कुमार सिंह, संदीप कुमार सिंह, धीरेंद्र कुमार सिंह, धीरज कुमार सिंह, सुरेश कुमार सिंह, आजाद सिंह, सचिन सिंह, अभिजीत कुमार और यशवंत सिंह का नाम शामिल है। सरकारी कार्य में बाधा और विधि व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में पुलिस ने इन आरोपियों पर केस दर्ज कर और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इधर हथुआ में महावीरी अखाड़ा के जुलूस की तैयारी के दौरान हथुआ थाना क्षेत्र के सुहागपुर मोड़ के पास मंच तैयार करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते मामले में मारपीट हुई और घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में हथुआ थाने में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस के अनुसार 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि 27 सितंबर की रात में महावीरी अखाड़ा जुलूस के बाद 28 सितंबर को मेला का आयोजन होना था। इसी को लेकर मंच के पास कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2026-27 के अंतर्गत विभिन्न खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं उत्साहपूर्ण एवं खेल भावना के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों के बालक और बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन भी किया। खो खो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। बताया जा रहा है कि खो खो में बालक और बालिका वर्ग के अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। बालक वर्ग अंडर 14 में डीएवी पब्लिक स्कूल थामे प्रथम और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगमलवा थामे द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर 19 में थामे हाई स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग अंडर 14 में सुल्तानपुर हाई स्कूल प्रथम तथा डीएवी पब्लिक स्कूल थामे द्वितीय। अंडर 14 में मुखी राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थामे प्रथम तथा डीएवी पब्लिक स्कूल थामे बालिका द्वितीय स्थान पर रहा। अंडर 19 में डीएवी पब्लिक स्कूल थामे बालिका प्रथम तथा एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज द्वितीय स्थान पर रहा। गंडक नदी से आई भीषण बाढ़ के साथ अब पहाड़ी सांपों का कहर भी शुरू हो गया है। अब तक दर्जनों लोग सांपों के शिकार हो चुके हैं। आज इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के बांसघाट मसूरिया गांव में 72 वर्षीय धर्मनाथ राय को पहाड़ी सांप ने डस लिया। तुरंत परिजनों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन और लोगों ने भी सांपों से बचने की अपील की है और सर्पदंश के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाने की राय दी गई है। सर्पदंश की घटना से भी लोगों में दहशत का माहौल है। पानी में बहकर आ रहे सांप जहां कहीं भी सूखा स्थान या सुरक्षित स्थान घर इत्यादि देखते हैं उस पर चढ़ जाते हैं और घर में रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत बताई जा रही है। सारण तटबंध की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा देर रात्रि तक सघन अनुश्रवण एवं स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के साथ तटबंध के विभिन्न संवेदनशील स्थलों और ढालों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान तटबंधों की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया गया। इस क्रम में जहां कहीं मामूली सीपेज अथवा बाइलिंग की स्थिति पाई गई वहां तत्काल फ्लड कंट्रोल डिवीजन की टीम को आवश्यक सुरक्षात्मक एवं मरम्मती कार्य कराने के निर्देश दिए गए। इसके आलोक में टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित स्थलों पर आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। प्रशासन द्वारा तटबंध की सतत निगरानी बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों और तकनीकी टीमों को निर्देशित किया गया है कि तटबंध की स्थिति पर लगातार नजर रखें। किसी भी प्रकार की असामान्य स्थिति अथवा जल दबाव से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य मुख्य तटबंधों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखना है तथा संभावित जोखिम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। देर रात तक प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं संबंधित विभागीय टीम के द्वारा तटबंध के विभिन्न हिस्सों का अनुश्रवण किया जा रहा है। गोपालगंज के प्रसिद्ध राजा दल को भव्य बनाने के लिए लगातार मजदूर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार राजा दल ने अमेरिका के राम नारायण मंदिर का संरचना तैयार करना शुरू कर दिया है। दिन रात यहाँ कारीगर मंदिर को बनाने के लिए काम में जुट गए हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य तरीके से राजा दल नवरात्रि में लेकर राजा दल दुर्गा पूजा कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इस बार अमेरिका के प्रसिद्ध राम नारायण मंदिर को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सुरक्षा और अन्य लिहाजों से भी इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है ताकि सुरक्षित तरीके से श्रद्धालु आए और दर्शन कर सुरक्षित रास्तों से यहाँ से निकल सके। पुलिस दीदी अभया ब्रिगेड की टीम के द्वारा लगातार शैक्षणिक संस्थाओं एवं हॉस्टलों इत्यादि के आसपास निगरानी रखी जा रही है। पिंक कलर की स्कूटी और हेलमेट लगाए अभया ब्रिगेड की पुलिस दीदी लगातार शैक्षणिक संस्थानों के आसपास जाकर बच्चियों छात्राओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। इस दौरान आज महाविद्यालय कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के पास दर्जनों अभया ब्रिगेड की पुलिस दीदी टीम पहुंची और छात्राओं महिलाओं से बातचीत की, उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें आश्वस्त किया और किसी भी तरह की समस्या पर पुलिस से सहयोग करने के लिए हेल्पलाइन नंबर इत्यादि की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर नगर थाना क्षेत्र के बसडीला पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, उनके हितार्थ, सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न योजनाएं जैसे वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, बिहार माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007, नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 और सामुदायिक मध्यस्थता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के कार्यालय में भी जन सुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में साइबर डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने उपस्थित जनता की समस्याओं को सुना और उसे संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। हथुआ में महावीरी जुलूस के दौरान हिमांशु यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी राजकुमार गुण है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। इस कांड में आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। अन्य आरोपी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। रिफॉर्म उत्सव के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में हिंदी पखवाड़ा 2026 का समापन हुआ। इस दौरान हिंदी दिवस पर समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने की। कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र कुमार यादव माननीय सदस्य हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री यादव ने विकसित भारत में राजभाषा हिंदी का योगदान विषय पर अपने सारगर्भित व्याख्यान में राजभाषा हिंदी के महत्व तथा विकसित भारत के निर्माण में हिंदी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बाढ़ पीड़ितों की मदद में अफसर, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सहित एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। हथुआ महावीरी अखाड़ा मारपीट के मामले में 10 लोगों पर केस दर्ज।

0: 51 केडियर लेन मेन रोड गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
10: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:27 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी भी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक आप भी अपना कार्यक्रम की शुरुआत करें मैसेज टाइप करने का। मैसेज में अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम, 3 लाइन टाइप करना है और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे सेंड करना है। कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम सुनाएंगे और आप सुन पाएंगे। पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है अनवारुल हक जी का, माझागढ़ से। कहते हैं कि मुझे दगाबाज फिल्म का गाना सुनना है। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि क्या हाल है भैया जी, मुझे सॉन्ग सुनना है रितेश पांडे का। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोले जाने दो मुझे जाना है। बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन कहाँ जाना है, रास्ते का पता है कि नहीं। दिलीप जी आप बने रहे हमारे साथ, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर सर जी, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल बढ़िया हैं। और इस मैसेज को करती हैं साझा विलेज मंगल बरेचा से। बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, आपकी लिंक पहुंची है तो गाने का नाम बता दें। गाने का नाम बताती हैं तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, आपकी फरमाइश सुनाने में हमें आपकी फरमाइश पूरा करने में सहूलियत मिलेगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो सर नमस्कार, मनीष रजक फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। हम भी SMS फरमाइश में जुड़ चुके हैं, हमें भी गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर नमस्ते, ओम प्रकाश गुप्ता पुणे से जुड़े हुए हैं, पुणे महाराष्ट्र से। सॉन्ग की फरमाइश करते हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मधुसरिया से राजू कुमार यादव जी का, कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे और आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश जी विलेज मुगल ब्रिज सॉरी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से, मुझे सॉन्ग सुनना है पवन सिंह का। बिल्कुल आपका भी गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गुजराती शाम की तरफ हम ढल चुके थे, तन्हाई की राहों पर निकल चुके थे, जज्बातों की हार से बदल चुके थे, उन्हें एहसास तब हुआ मुझे खोने का जब वो आग बुझाने आए और हम जल चुके थे। सुन भाई नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल है, सब मस्त है ना? बिल्कुल आप सभी की आशीर्वाद से मैं मस्त बिंदास झकास आप सभी के बीच उपस्थित हूँ कार्यक्रम को लेकर और कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहेगा तो कार्यक्रम बेहतरीन होगा, बस आप लोगों की साथ की आवश्यकता है। रोहित जी आप बन रहे हमारे साथ देहरादून से, रेडियो रिमझिम के सुन रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर हमारा गाना सुना दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और एक एक करके, अभी गाने के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा सब्र करेंगे तो आपका भी बारी आ जाएगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, राधे राधे भाई कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है, सुपर गाना चल रही है,
सबीता चौहान भोजपुरा से जुड़ी हैं। तो अभी तो गाने अभी हम सभी सुने नहीं हैं, लेकिन आप कहाँ से सुन ली थोड़ा सा बताएं। सबीता चौहान, आगे बढ़ते हम गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं अनवारुल हक जी का दगाबाज फिल्म से।

रेडियो एम सी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे काफ़ी प्यारा भोजपुरी गाना सुन रहे थे हम सभी, ओल्ड इज गोल्ड। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अगले गाने के फरमाइश किए हुए हैं हमारे श्रोतागण हैं दिलीप जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, जाने दो मुझे जाना है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी कुछ मैसेज पहुँचे हुए, फिर हाल मैसेज देख लें, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सोनू जी, मैं भी शामिल हो गई हूँ प्रोग्राम में। मेरा नाम है रेखा पांडे, सरियावार नंबर 5 से, और मेरा गाना है शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़। मैं बहुत दिन के बाद शामिल हुई हूँ इस प्रोग्राम में, मेरा तबीयत खराब हो गया था। ओहो, क्या हो गया था? चलिए, अच्छी हो गई है कि नहीं पूर्ण रूप से। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि भाई सुने नहीं है, बाकी कमेंट किया है अपना चैनल रेडियो रिमझिम पर, अच्छा गाना चलता है। ओहो, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर, मैं मिन्नू हीरा पाकड़ गोपालगंज से, और हमें ऊंची ऊंची है डगड़िया सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर, मैं निशु फ्रॉम झीरवा से, और मुझे सॉन्ग सुनना है चिनरी चिनरी। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय रिक्वेस्ट सॉर। तो बिल्कुल आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान से, और गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है? मेरा भी वेलकम कीजिए, और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा सलाम बोल लीजिएगा। शबीना खातून फ्रॉम डंगसी मुसहरी बाजार से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहा हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो सर, मैं रामा जी यादव मधुसरिया से, और हमको गाना सुनना है प्रमोद प्रेमी क्या भक्ति। तो पुराने गाने के फरमाइश करें, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगा। नए गाने के फरमाइश करेंगे तो हम नहीं सुना सकते हैं, क्लियर आप सभी से हम बता देते हैं कि आप जब भी गाने के फरमाइश करें कोई भी, तो आप पुराने गाने के फरमाइश करें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमाल के सॉन्ग हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि नाम नहीं शामिल किए मेरे डेडिकेटेड दोस्तों को, तो बिल्कुल आपकी नाम हम शामिल कर देते हैं और इस गाने को डेडिकेट करते हैं सगीर जी को, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया जी, निशा जी, रोशनी और उमा शंकर जी को और समीर भाई को, सभी दोस्तों को सुना दीजिएगा। बिल्कुल सभी दोस्त सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप भी झूमते रहिए।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद में आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे मैसेज रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। एक एक करके फरमाइश पूरी हो रही है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए मैसेज दिखले फिर गाने को प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि लाजवाब सॉन्ग सहनसा मूवी से रेडियो रिमझिम सुनने वाले सारे दोस्तों को बस यूं ही सुनाते रहिए। MT97 दरभंगा भाजीतपुर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, मुझे गाना सुना दो परदेस जाके परदेस या भूल न जाना पिया। तो बिल्कुल आज तो नहीं कल, क्योंकि आज आपकी फरमाइश सुना चुके हैं। और एक नंबर से दो दो श्रोतागढ़ जुड़ रहे हैं तो एक दिन में दो श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दो व्यक्ति की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय का यह कार्यक्रम है। सो कल आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मधुसरिया से राजू कुमार यादव कहते हैं। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं और आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रितेश पांडे की आवाज़ में। और गाने की फरमाइश से जाए चंदा लियावा खबरिया कैसन बाड़ी मोरे जान। इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं दीपक एंड जेलर जी, तो बिल्कुल आप एंजॉय करें अपने गानों के साथ।

कमाल के शॉन्ग संडे, आप सब रेडियो रेमछेम 90.4 FM पे बने हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग, सैड सॉन्ग, और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग न बजाइएगा क्या सर? बिल्कुल बजेगा, थोड़ा सा सब्र करना है। और आगे बढ़ते हैं, कल की श्रोतागण की फरमाइश, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल भी मेरा सॉन्ग नहीं सुनाए, तो चलिए मीनू जी आपकी फरमाइश हम आज पूरी करते हैं। आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमछिम 90.4 FM पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 97665750।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे मैसेज किया जा रहा है कि सर मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो बिल्कुल कोशिश है आपकी फरमाइश हम प्ले करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कमलेश जी की तरफ से कि मेरा संग बज गया कि नहीं, तो कमलेश जी आप गाने का फरमाइश किए हुए तो सुनते रहें, कहीं आपका संग बज गया रहता है तो। कहते हैं कि मेरा सॉन्ग अभी नहीं बजाए हैं, और हम कहते हैं कि हम बजा दिए हैं लेकिन अभी बजाए नहीं हैं। और यदि आप फरमाइश किए हैं लो तो सुनते रहें, कभी भी आपका सॉन्ग बज सकता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, तो एक ही करके फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्थिर रहें तभी तो आपकी बारी आएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, हम भी जुड़ चुके हैं, कैसे हैं, मौसम का क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया है हम, और मौसम भी ठीक ठाक है। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल नेपाल बॉर्डर से, और आपसे जानना चाहेंगे कि उधर पानी का क्या हाल है, जो नेपाल बराज से छोड़े गए पानी, उनका स्थिति क्या है आप सबके तरफ, और थोड़ा सा जानकारी दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। इस गाने की फरमाइश करते हैं हमारे श्रोता हैं म मनीष रजक फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और गाने के फरमाइश किए हुए हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। बिल्कुल, कोशिश की जाती है तो अक्सर एक कामयाबी मिल ही जाती है, वादा नहीं करना चाहिए। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो 4 FM सुन रहे हैं आप सब। और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है। हेलो सर, नमस्ते, प्रणाम। मैं संदीप प्रजापति, बंदीपुर जिला, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, यूपी 45 से, और मुझे एक सॉन्ग सुनना है। फिल्म का नाम है दलाल। तो आज तो नहीं सुना पा रहे हैं क्योंकि समय जो है समाप्ति के करीब है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक और गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मिलने को तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। सुपर लाजवाब सैड सॉन्ग। और माना कि हसरत कुछ और है, वक्त की चाहत कुछ और है, कौन जी सकता है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मिसेस करती हैं निशा भारती और आगे मिसेस पहुँचे हुए हैं। तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और अगले गाने की फरमाइश सुनते हैं हम सभी रेडियो रेमछिम 4 FM पे। और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं रामा जी यादव मधुसरिया से और गाने की फरमाइश किए हुए हैं शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सुनते हैं।

फोर एफ एम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं। लिखा गया है कि शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सुपर लाजवाब सैड सॉन्ग माई बेस्ट सॉन्ग। मत करो प्यार जो पा ना सको, मत करो वादा जो निभा ना सको। अरे इस दुनिया में किसका प्यार पूरा हुआ है, और प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, अधूरा होता है। प्रेम वह नहीं जो लफ्जों में बयां हो, प्रेम वह नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, प्रेम वह है जो खामोशियों में भी समझा जाए। प्रेम ओह नहीं जो वक्त के साथ बदल जाए, प्रेम वह है जो हाल में साथ निभाए। और इस मैसेज को करती हैं निशा भारती, और आपके द्वारा कहे गए बातें भी अच्छी है। आगे मैसेज पहुंचे हुए लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा का सर। और इस मैसेज को करते हैं राजू जी, आज तो नहीं बज पा रहा है, कल कोशिश रहेगा क्योंकि समाप्ति के समय जो हो गए हैं और समाप्ति से कुछ आगे निकल गए हैं हम, तो एक और मैसेज

कहते हैं कि मदद की ही आगे उम्मीद है, बिल्कुल। और कहते हैं कि सोनू बाबू, हमारे इस बॉर्डर के ईस्ट चंपारण में ना कोई बराबर फ्लोड आते हैं, हम सब यहाँ कुशल हैं, आप सब की कुशलता चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन इधर सुनने को आया है कि गोपालगंज ज़िले के उत्तरी क्षेत्र में जो निचले इलाके हैं उसमें पानी आ चुके हैं, और ज़िला प्रशासन की तरफ से भी राहत सामग्री और जनप्रतिनिधि की तरफ से भी जायजा लिया जा रहा है और मदद भी की जा रही है, ये सूचना आया हुआ है। आगे मिसेस पहुँचे हुए तो मैं इसे शामिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि समय जो है हमारा समाप्त हो रहा है और समाप्ति से आगे कुछ निकल चुके हैं। अंतिम गाने प्ले करते हुए अंतिम गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, प्लीज़ सर सुना दीजिए। निशु मैसेज करती हैं, पहली बार जुड़ी हैं, तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। गाने की फरमाइश प्यारा सा पहुँचा हुआ है, चिनरी चिनरी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि वाह बहुत खूबसूरत, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। मैसेज करते हैं रंजन जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनम भाई और आप और सभी दोस्तों को गुड नाइट, कल मिलते हैं। बिल्कुल कल मिला जाएगा, अंतिम दौरान में हम सभी हैं और कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं अंतिम गाने प्ले करते हुए। फिलहाल आज सब आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहें रेडियो रमछिम 90.4 FM, जो हमेशा कहते हैं सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

अरे मुर्गा निकल गया मेरा दरबे को छोड़ के। तो पड़ोसन

0: सौ सुनार की और एक लोहार की।
1: बस्ती हजरत निजामुद्दीन में सूफी संत हजरत के 723वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। उर्स के दूसरे दिन की तकरीबात का आंखों देखा हाल बराहे रास्त सुनवाने के लिए अब हम आपको बस्ती हजरत निजामुद्दीन उर्स महल लिए चलते हैं। तो आइए उर्स महल चलें।
2: में सब लाए थे महशर में इबादत, मैं लाया था लिखा हुआ महबूबे इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ महबूबे इलाही। अमाल में सब लाए थे महशर में इबादत, मैं लाया था लिखा हुआ महबूबे इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ, मैं लाया था लिखा हुआ महबूबे इलाही। अमाल में सब लाए थे महशर में इबादत, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही, मैं लाया था लिखा हुआ महबूब इलाही। बांटेगा इसके पंजतन पाक की दौलत, बांटेगा इसके पंजतन पाक की दौलत, जो आपका हो जाएगा महबूब इलाही, जो आपका हो जाएगा महबूब इलाही। बांटेगा इसके पंजतन पाक की दौलत, जो आपका हो जाएगा महबूब इलाही। जो हो गया है दिल से निजामी और नियाजी, जो हो गया है दिल से निजामी और नियाजी, हक उसको नजर आ गया महबूब इलाही, हक उसको नजर आ गया महबूब इलाही। करने लगी तवाफ मेरे दिल की धड़कने, करने लगी तवाफ मेरे दिल की धड़कने, जब तुम पे फिदा हो गया महबूब इलाही, जब तुम पे फिदा हो गया महबूब इलाही, जब तुम पे फिदा हो गया महबूब इलाही। मकता पेश है कि राजी है नियाजी भी फरीदी भी इसलिए, राजी है नियाजी भी फरीदी भी इसलिए, दामन को भर के जाएगा महबूब इलाही, दामन को भर के जाएगा महबूब इलाही, दामन को भर के जाएगा महबूब इलाही।
3: जनाब रजी मियां नियाजी से उनका मनकबती कलाम आप सुन रहे थे। अब मैं दावत कलाम दे रहा हूं जनाब यूसुफ हुसैन फहमी साहब को। जनाब यूसुफ हुसैन फहमी।
4: हजरते गिरामी, बारगाह महबूब इलाही में एक चार मिसरे पेश कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएं, आपकी तवज्जो का तालिब हूं। कि दिल में हसरत है कि एक बार जियारत हो जाए, कि दिल में हसरत है कि एक बार जियारत हो जाए, उनके कदमों से लिपट जाऊं करामत हो जाए, उनके कदमों से लिपट जाऊं करामत हो जाए। ऐ खुदा मेरी निगाहों को तहारत दे दे, उनके चेहरे को जो देखूं तो इबादत हो जाए, उनके चेहरे को जो देखूं तो इबादत हो जाए। ऐ खुदा मेरी निगाहों को तहारत दे दे, उनके चेहरे को जो देखूं तो इबादत हो जाए। और एक चार मिसरे पढ़ने की और इजाजत चाहता हूं कि देखिए हमारा, मैं खानकाह नियाजिया का अंदा तरीन गुलाम हूं। हम निजामी है मियां जान लिए जाते हैं, हम निजामी है मियां जान लिए जाते हैं, या अली कहते ही पहचान लिए जाते हैं, या अली कहते ही पहचान लिए जाते हैं। और इतना आसान नहीं होता है निजामी होना, इतना आसान नहीं होता है निजामी होना। यार नजराने में ईमान लिए जाते हैं, यार नजराने में ईमान लिए जाते हैं, यार नजराने में ईमान लिए जाते हैं। एक नई मनकबत पेश कर रहा हूं। हमारी कोशिश रहती है कि उस महल में जो मुशायरा होता है उसमें कुछ शेर हम नए पढ़ें। हुजूर वाला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि सुनिएगा कि चरागे दीद के अश्कों को छोड़ आए हैं, चरागे दीद के। एक मरतबा दूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दरे निजाम पे आंखें बिछाए बैठे हैं कि दरे निजाम पे आंखें बिछाए बैठे हैं, चरागे दीद के आंसू सजाए बैठे हैं, चरागे दीद के आंसू सजाए बैठे हुए हैं। हुजूर कुछ तो मिले, हुजूर कुछ तो निगाहे करम की भीख मिले, कि हुजूर कुछ तो निगाहे करम की भीख मिले। गुलाम आपके महफिल सजाए बैठे हैं, गुलाम आपके महफिल सजाए बैठे हैं, इन्हें खबर है कि दस्ते करम उठेगा जरूर, कि इन्हें खबर है कि दस्ते करम उठेगा जरूर। फकीर देर से सर को झुकाए बैठे हैं, फकीर देर से सर को झुकाए बैठे हैं। और तुम्हारा नाम तो मुश्किल कुशाए आलम है, कि तुम्हारा नाम तो मुश्किल कुशाए आलम है, तुम्हारे नाम को दिल से लगाए बैठे हैं, तुम्हारे नाम को दिल से लगाए बैठे हैं। और दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, कि दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं। दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं। और इसीलिए तो करम से नवाजते हैं निजाम, कि इसीलिए तो करम से नवाजते हैं निजाम। गमे हुसैन में आंसू बहाए बैठे हैं, गमे हुसैन में आंसू बहाए बैठे हैं, इसीलिए तो करम से नवाजते हैं निजाम। गमे हुसैन में आंसू बहाए बैठे हैं। दरे निजाम की जो धूम है जमाने में, अली के नाम के डंके बजाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
3: जनाब। यूसुफ हुसैन फहमी अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं जहमत दे रहा हूं जनाब असलम वारसी सिवानी साहब को। जनाब असलम वारसी सिवानी मनकबती कलाम पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं।
5: मोहम्मद से दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हक सिर्फ स्टेज वालों का नहीं है, आपका भी हक है कि आप भी कुछ दावत ऐसी नवाजें और कम से कम अपने लोगों को जो पिछले सुबह में लग गए हैं। मैं मतलब हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: जोलो।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मेरे किरदार को जाने का हो।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: हमनी के मिलन अब नहीं हो सकत, कुछ मजबूरी बा जेकरा कारण हम तो उसे ना मिल सकीला।
2: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज आंसू पोछत अनि एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते
1: मैम, मुझे एक गीत सुनना था।
2: बिल्कुल, पहले नाम बता दीजिएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
2: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
2: बाबू का, अर्चित बाबू का बर्थडे है ना?
1: हाँ हाँ हाँ जी है, उसी लिए तो मैं फोन लगाया हूँ। तो उसके लिए कोई बढ़िया सा बर्थडे गीत चला दीजिएगा और सुनाना सभी लोगों को, जितने भी हमारे निम्न श्रोता है सभी लोग।
2: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है, नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने की गम, ना तेरी आने की खुशी ना तेरी जाने की गम, वो वक्त गुजर गया जब तेरे दीवाने थे हम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।
1: जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी अच्छा हूँ। मैं कमरान रफीद।
1: हाँ जी,
0: विदेश बकरी सुल्तान से फिलहाल दिल्ली में हूँ। और आपका?
1: जी मेरा नाश्ता तो हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
0: हाँ मेरा भी हो गया, तबियत ठीक है?
1: जी तबियत ठीक है,
0: बहुत बढ़िया। रखिए काम, इधर तो धूप हुआ है, हवा भी चल रहा है।
1: हाँ दिल्ली में?
0: हाँ दिल्ली में। दो दिन तीन दिन पहले बारिश हुई थी।
1: अच्छा
0: जी, बारिश हुआ था 26 तारीख और उसी दिन मेरा पेपर था बैंक का।
1: अच्छा,
0: हाँ गया था पेपर देने बैंक का, SBI का।
1: पेपर गया कि नहीं?
0: हाँ पेपर अच्छा हुआ है मेरा। तो सर रिजनी में थोड़ा छोटा है, ज्यादा नहीं छोटा है।
1: अच्छा।
0: पर अच्छा हुआ, हाँ बहुत हुआ है। और सब बढ़िया है, उधर का मौसम कैसा है?
1: जी हमारे यहाँ तो हल्की धूप है, हल्का हवा चल रहा है, काफी मतलब सुहाना मौसम बना हुआ है।
0: सुहाना मौसम है? नहीं इधर तो खूब सुहाना नहीं बोला जाएगा, मतलब ठीक है, सही है इधर का मौसम। जी जी
1: बढ़िया है।
0: जी तो आज मेरे दोस्त है उमा शंकर भाई, उनका रखी का जन्मदिन है। नाम है
1: आशीष।
0: हाँ जी जी, तो उसी का बर्थडे गाना सुनूंगा। वो गाना है ना, मेरा भी नाम होता डब्लू बब्लू मैं खाता हूँ। हाँ रफी का आवाज में ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। डेडिकेट उसी को है और आपको है। और चलिए ठीक है, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
7: क्या खैरियत है
6: जी? हमारे खैरियत तो सही बार हो, बताए रहो कई संभाल।
7: अलहमदिल्ला हम ठीक बनी। तुम नाश्ते के टाइम खत्म, खाना नहीं हो?
6: लंच हुई 2 बजे के बाद।
7: अच्छा, वो कब तक चले लगे?
6: तो नियर वॉइस योर चॉइस के सो।
7: हाँ,
6: वो तो स्टार्ट हो गई बा ना।
7: अच्छा, और सब?
6: और सब ठीक बावे।
7: और के गाना सुने बावे? वो
6: बिल्कुल बता दी, कौन सा गाना सुनेगा?
7: वादा किया हंसाने का, तूने रुला दिया, जा सजना तुझको बुला दिया।
6: ओके, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
7: सबसे पहले आपको और सुनने वाली ऑल लिसनर।
6: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमजिम 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।

0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
1: मैम मैं फिर भी बोल रही हूँ।
0: जी प्रभु, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाँ
0: कैसी है आप?
1: ठीक हूँ, अपना बताइए।
0: मैं ठीक हूँ, आप पर आप ठीक नहीं लग रही है।
1: मैं भी ठीक ही हूँ।
0: और सर आपकी बहन कहाँ है, वो ठीक है?
1: वो तो सब है। मनोरमा मैम कैसी है?
0: वो भी ठीक है।
1: तो आप ठीक है ना? तो सब सुनना है हमको,
0: बिल्कुल बताइए।
1: जो भी नटियल की आवाज में तेरी मीठी मीठी मैं तो गर्ल सुनिया।
0: और बोलिए आपको,
1: तेरी मीठी मीठी मैं तो गर्ल सुनिया।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनाएंगे?
1: और डेडिकेट है आपको, मेरी बहन को दीप्ति और मनोरमा मैम और सोनू सर और दूसरे से लिसनर है हम सभी को।
0: तो प्रभु जी आपके गाने को प्ले करते हैं।
1: तो मैम थैंक यू,
0: वेलकम। सुनते रहिए रेडियो 91.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone kende bajti hai to kehte hai hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: सलाम दुखमे।
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: हाँ
6: जी, क्या हाल चल बा?
7: ठीक बा,
6: हम यो भी ठीक बावे।
7: कहाँ रहते हैं? बात नहीं हो।
6: हाँ हाँ, हमने के नाश्ता पानी हो गई बार हुआ, बताए। अभी कहाँ होता है?
7: अभी कहाँ होता बता दो, कहाँ से लगी?
6: बता दी ना, हंसते
7: हैं।
6: अच्छा, तो कहाँ हो गई गुदरा? यो तो बिछावल एकदम सील जरूरी वावे।
7: हाँ,
6: सब का
7: अभी सब कुछ हुआ।

0: नमस्ते
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: गोपाल भैया बोल रहा हूँ, ग्राम का गवासा, जिला गुना।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, फसल की कटाई चल रही है मक्का की।
1: अच्छा जी, फसल तैयार है?
0: और हाँ, तैयार है। और वो क्या है, नवरात्रि आने वाले हैं और धूप भी बहुत तेज पड़ रही है।
1: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं।
0: और क्या,
1: तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
0: दिल फिल्म का सुनना है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए यारा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल को गाजी वाला गाना।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी मकसूदनगढ़ से, जीतन धाकड़ जी, और आपके लिए भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल, तो गाना आपका प्ले करते हैं
0: जी। कब तक आएगा जी गाना
1: ये? आपको आज शाम को, नहीं तो कल शाम को मिल जाएगा।
0: ठीक है,
1: ओके, रेडियो रमेश में कॉल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजान 90.4 FM में।
5: हाँ मैम, आपका भी बहुत स्वागत है जी।
6: जी नाम बताइए अपना।
5: मेरा नाम
6: जी
5: अजीत कुमार शाह उर्फ हिटलर बिहारी हरियाणा से।
6: जी क्या हाल चाल है अजीत जी?
5: हाँ बढ़िया है मैम, अपना बताइए जी।
6: मेरा भी ठीक है।
5: हो गए?
6: हाँ हाँ, खाने पीने हो गया।
5: और सब बताइए?
6: और सब समाचार तो ठीक बा। कैसन बानी रुआ सब बताइए?
5: अब ठीक है बानी बाबा।
6: गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
5: गाना के बाद गाना था मेरा बहुत दिन का करीब रहता है, मैं सुनता हूँ हमेशा उसको, कयामत कयामत कयामत।
6: गाना काफी बढ़िया है।
5: हाँ,
6: तो आप गाना ये किसी को सुनवाएंगे जी?
5: हाँ सुनवाएंगे,
6: बता दीजिए।
5: आपकी मैम मुरंगा मैडम जयकर कुशवाहा पूरे रिमझिम परिवार को।
6: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
5: अभी बजाओगे?
6: नहीं नहीं, अभी तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, हमको गाना सुनना है।
1: बिल्कुल, पहले अपना नाम बता दीजिएगा।
0: सोला देव बोल रहे हैं, पारनादा से।
1: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हिंदी गाना सुनवा दीजिए, या तुझे पता है बिल्कुल मेरे दिल भर आने वाला।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: गाना मेरा लड़का है, उन्हें सुनना है।
1: अच्छा,
0: बड़ा लड़का है गुलशान, छोटा लड़का है राजा, एक मेरी बेटी है संजना।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम, ठीक है ना?
1: जी जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है?
0: हाँ, हम लोग तो ठीक है, पहले से नहीं था इसलिए नहीं कर रहे हैं पता।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
0: तब खाना वाना खा लिए?
1: हाँ, हम लोग का हो गया है।
0: चलिए, आप लोग का सब लोग ठीक है ना?
1: जी जी, सब कुछ ठीक है।
0: चलिए, हम लोग ठीक है।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
3: जी क्या हालचाल है आपका?
2: बस बढ़िया है, सोयाबीन कट रही है और आपका रेडियो सुन रहे हैं।
3: अच्छा
2: जी,
3: तो कौन सा गाना है सुनिएगा?
2: जी मैडम जी, शिखर का नाम है बादल।
3: और गाने की बोल?
2: और गाने के बोले तो जो धड़के दिल में डोले, मेरे दिल की धड़कन डोले।
3: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
2: जी मैडम जी, भाटी मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेंद्र कर दी, अमर सिंह भील है, इन सभी और हमारे छत्नारायण गहलोत है उज्जैन से, ये सभी गाना उनको डेडिकेट रहेगा।
3: जी तो आपका
2: गाना का ये गाना मैडम जी,
3: ये आपको गाना आज शाम को नहीं तो कल शाम को सुनने को मिलेगा।
2: ठीक
3: जी, रेडियो रूम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बताइए कौन सा गाना,
1: ये गोटे डाल लेगा।
0: कौन सा
1: गोटे डाल लेगा जब निकलू जब डाल के,
0: समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और बताइए।
1: धर्म काटा फिल्म का,
0: हाँ
1: यही गाना, ये गोटे डाल लेगा।
0: अच्छा अच्छा, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: सबको सुनवाना, मैं तो हिंदुस्तान जीते जीते
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार

0: और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार, क्या हाल चल रहा जी?
2: जी हमारे तो ठीक पर हुआ, बताइए रोगा की
1: संभावना ठीक रहा तो हम नहीं होगा ठीक रहा हमारा।
2: अच्छा जी, तब अभी
1: अभी तो सवारी तो नहीं है महाराज।
2: अच्छा
1: तो हम कौन ही अभी कहा है ना महाराज, अब विचार मेरा कहीं भारती जी टकर आ जाये।
2: अच्छा जी,
1: अरे कभी आई महाराज घूमे है ना करी, काफी खाली घोषालेगंज में रहे।
2: कभी मौका मिली तो जरूर आएंगे।
1: आयल बनी की ना कभी कल बार
2: दिल्ली?
1: जी
2: ना कभी दिल्ली तो नहीं की आयल।
1: कहीं हो सकता था कि किसी रीजन से आयल होते मैंने करी, ऐसा कुछ नहीं है।
2: ना ना ना दिल्ली कभी नहीं की गई, खाली बढ़िया हो तो वो बता दिया कौन सा गाना सुने।
1: गाना गाते महाराज साइया भाई लड्डू मरी के फूल, मैंने गायिका के नाम हमारा ऐसे होता है की सबरे सहेलिया के ऐसे ही कुछ गाना बते जाने।
2: हाँ
1: गुलरी के फूल
2: गाना
1: बा। हाँ मैंने गाना अभी याद हुआ था लेकिन स्टेप ऐसा नहीं है, जैसे भोजपुरी को ज्यादा ध्यान देवे नहीं हूँ हम। तो ग्यारह साल से पहले रोजा के डेडिकेट हुआ वार्ता उनको मनोरमा जी के, रानी मुखर्जी के, सब कोई को सुना दे जी के, सगीर भाई के, अहमद भाई के, और अख्तरी जी, कमरान भाई, रुबीना जी, सलनम जी, उसके बाद मुकेश भाई बारे, गाटा भाई बारन, सन्यासी बाबा बारन, सभी समीर भाई बारन, सोनू भाई बारन। आजकल सोनू भाई के थोड़ा अथी हो गल माथा टेकत नहीं खन जाते माता रानी के दरबार में, तो सब कोई को सुना दे हैं और गाना प्ले करी ताकि हम इनका जगह पर निकल जाये।
2: गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहे रेडियो रंजन 91।
1: जी नमस्कार
2: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, हम तो ठीक बने रहो, बताए रहो कैसे बात।
1: ठीक बने, डेढ़ दिन हो गए बतिया।
0: अच्छा जी,
1: कोनो दिक्कत?
0: ना ना, कोनो दिक्कत नहीं, हम के कहे दिक्कत हो जी।
1: ठीक
0: का उम्मीद बा?
1: कुछ ना,
0: शुरुआत वाला मनोरमा जी रिकॉर्ड पे नहीं आए, एबरा वाला हम करते हैं। सब हाल चाल बताई और सब ठीक बा? तो चलते बा मनोरमा जी, शुरू कर ले बानी।
1: बदलाव भी जरूरी?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी बा। जन रो वाला चुटकुला भेजे नी, बहुत मजेदार होला। बिल्कुल बताइए, आज कौन से गाने के फरमाइश का?
1: आज नया आई गाना।
0: गाना के बोल बता दी।
1: आज फोन कोई छोड़ दे कविता सागर करला, अभी खुशबू सिंह का आई बात, खुशबू सिंह के बजा दिया।
0: जी
1: डेडिकेट रही भारती जी के, मनोना जी के, हमारे नाम के जितना लोग जानो सब से। हमारा नाम कुमार मित्रा दिल्ली।
0: ठीक ही बा,
1: चले
0: गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ठीक।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी नमस्ते मैडम।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिन 91.4 असम में।
5: गाना सुनना है मैडम।
6: बिल्कुल, अपना नाम बता दीजिएगा जरा।
5: हम इतने बार से कॉल कर रहे हैं, मेरे से नहीं पहचानते हैं क्या मैडम? बुला गए हारे से बोल रहे हैं सुमन कुमारी।
6: अच्छा,
5: क्रिमिनल।
6: जी जी
5: बोलिए मैडम, आइए मैडम रिकॉर्ड खाने।
6: हम बिल्कुल खाइए, आप हम भी आ ही रहे हैं रास्ते में।
5: मैडम आज अपने पसंद के गाने सुना दीजिए।
6: अपने पसंद से तो रोज सुनाती ही है।
5: अपने पसंद का गाना सुना दीजिए।
6: हम मतलब अपने पसंद से, आप सबको तो रोज सुनाते हैं, जब रोज शुरू करते हैं तो अपनी पसंद का एक गाना तो जरूर बजाते हैं आप लोग के लिए।
5: हाँ, उसी समय से कॉल करते करते और भी लगा है।
6: पसंद का गाना सुनिएगा। आज मेरी ही पसंद का गाना सुनिएगा।
5: हाँ, आज मैं आज तेरी पसंद का गाना।
6: चलिए फिर ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम,
0: जी नमस्कार। मैं
1: कैसी हैं मैम? जी
0: तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। जी
1: मैम, हम भी अच्छे हैं। और सब आरजे लोग कैसे हैं?
0: जी सारे आरजे भी ठीक हैं।
1: मैम गाना सुनवा दीजिए। रब कर प्यार ही हो जाए, ऐसा कोई गाना?
0: जी जी है गाना, रब करे तो जो भी प्यार हो जाए।
1: जी, यही गाना सुनवा दीजिए। और मैं पप्पू कुमार साहब बोल रहा हूँ, पड़ा रहना बड़ा रहिएगा।
0: जी, और गाना ये आप किसी को सुनवाएंगे जी?
1: गाना सुनवाएंगे सन्यासी बाबा जी हैं, उत्तम रोनी जी हैं, कमरान जी हैं, उमा शंकर जी हैं, और अनीश जी हैं, गुड़िया है, सविता है, और ये रानी बहन जी हैं, शबनम बहन जी हैं, और सारे जितने भी रेडियो है सभी सुनाएंगे।
0: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी मैम, थैंक यू मैम।
0: वेलकम, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के

0: थी तो दो तीन दिन पहले बारिश हुआ था, अभी तीन दिन से नहीं हो रहा है। तो कड़ाके का धूप है मैम और गर्मी आई है मैम। तो बस बैठे थे रेडियो रिंगिंग में फोन लगाते हुए मैम। तो आज एक फरमाइश है फिल्म है बंजारन और गाने के बोल है मेरे दिल की गलियों में टूट गई की आबाद है मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: आपके गाने को प्ले करती हूँ, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.0।
0: धन्यवाद मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 9.4 FM में। नमस्ते।
0: और सब बताइए।
1: जी मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: भारती मैम बोल रहे हैं।
1: जी मैं तो भारती बोल रही हूँ।
0: गाना सुनना है?
1: बिल्कुल बता दीजिए रवि जी, कौन सा गाना सुनिएगा? आपकी आवाज कट रही है। हेलो।
0: हाँ हेलो।
1: हाँ बोलिए।
0: बोल रहा हूँ कौन सा गाना बजा दीजिए। अच्छा
1: कोई सब।
0: हाँ
2: दोनों आदमी है साथ में?
0: दोनों आदमी है।
1: कौन कौन?
0: हम दिनेश कुमार मिश्रा।
1: अच्छा जी, तो वो भी साइड से हैं।
2: मुझे भी बात करना है आपसे आज।
1: कीजिए कॉल, जरूर बात होगा। तो अपने मन से सुनाया, आप लोग नहीं बताइएगा आज?
0: आप नहीं मन से बात गए थी, करिए बजाइए।
1: वैसे तो रोज तो हम तो अपने मन से आप लोगों को पहला गाना सुनाते ही हैं।
0: बहुत दिन के बाद कॉल किया है। आज अपने मन से सुनाइए।
1: ये गाना आप किसी को सुनाएंगे?
0: यहीं पे है दिनेश कुमार मिश्रा जी और आप हैं मनोरमा मैम है।
1: चलिए फिर ठीक है, तब आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 9.4 FM।
0: ठीक है।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: संसार से सुनर सिंगार सहज सुहाला, तू जब ताके लो तत्व से मोहब्बत।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: त तू जरे जेबो।
1: ठीक बा चलो।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें।

0: To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmi Gaane channel.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान.
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
1: सुनो दिल से.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmi Gaane channel.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान.
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
1: सुनो दिल से.